0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स. मेरा नाम केतन है. वेल, चलिए बात करते हैं होम सिक रेमेडीज में. क्या मैसेज आया है? एक मैसेज मैंने यहाँ पे पिक किया है. वो कहते हैं, वॉक इन टू अ फैंसी लोकल कैफे इन माउंट ईडन, शिवरिंग दिस मॉर्निंग एंड ऑर्डर अ चाय लाटे फॉर $7, एक्सपेक्टिंग अ हॉट स्पाइसी कप ऑफ टी. What they served me was a mug of lukewarm frothed milk sprinkled and cinnamon. Not even a single tea leaf involved. Boiling fresh crushed ginger plus cardamom and strong tea leaves on the gas stove until whole house smells amazing. This is what how we used to make back home. Paying $7 for a sweet warm milk while sitting in a quiet cafe just broke my spirit and made me miss home so badly. How do you survive in a city where everyone drinks espresso and nobody knows how to boil real tea? Baji, aapko hai na ghar pe karna chahiye try. I mean, you just need to make a good friend who prepare amazing tea. उसके साथ ही आपको बहुत ही बढ़िया लगेगा. I'm pretty sure उसके बाद आप miss भी ना करेंगे. सो यस, बट कनिष्क भाई ने ये मैसेज भेजा है. बहुत बहुत शुक्रिया कनिष्क भाई. एंड आप ऐसे ही सुनते रहिए. इनफैक्ट यू नो, आई नो देयर फ्यू प्लेसेस ओवर हियर, वन इन सेंडिंग्राम, वन इन माउंट रॉस्किल, वन इन पापाटोटो एज वेल. यहाँ पे मतलब ऑब्वियसली और भी जगह है, लेकिन ये जो तीन जगह है यहाँ पे वी मोस्टली जाते रहते हैं टू हैव अ टी. बहुत ही अमेजिंग चाय बनाते हैं. आपको भी एक बार जाना चाहिए. यस, गूगल करना, आपको मिल जाएगा एड्रेस. लंच बॉक्स विद केतन. मुझे पसंद है लड़का.
1: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन. प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी. हम फिजी भजन्स, दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म. डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन्स.
2: Reliance Ventilation System.
3: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
2: Moisture और ventilation का problem लगता है.
3: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
2: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
4: Contact Reliance Ventilation System on 0800-787-111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.

0: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो।
1: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
2: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279 439 और विजिट legalassociates.co.nz।
3: सुनो, आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया, घर बेचने को कह रहे थे।
4: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं, लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं। डेवलप करना बेहतर लगता है, पर पैसों का डर है।
3: इसीलिए NZPMI से बात कर लो, वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं।
5: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं, आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है। आज ही NZPMI के पॉल से बात कीजिए। NZPMI, टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस। कॉल पॉल ऑन 0800-4NZPMI।
6: The kids depend on us for everything. Meals, rides, band-aids, bedtime stories. But who do we depend on?
7: Hi, I'm Nitesh Hira from Assure One. School holidays remind us how much our families rely on us. My job is making sure reliance never becomes a risk. Helping you understand your options so your family is covered whatever happens. Call Assure One on 0800-77-HIRA or visit assureone.co.nz. North and Vale Advisory Limited. Trading as Assure One is a licensed financial advice provider.
8: Non-stop Bollywood.
9: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
8: हम playing Bollywood's biggest hits.
10: Lunchbox with Ketan.
11: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
10: हम office shout out.
12: Office shout out के सेगमेंट में आपका स्वागत है और ये रहे दो मैसेज जो मैंने शॉर्टलिस्ट किए हैं। At the office today. And I bought burrito for lunch. ये इन्होंने मैसेज किया है। And my favorite cuisine is Mexican. अंजलि का मैसेज आया। Thank you so much, Anjali. And I also love this burrito because last couple of weeks पहले मैंने शूट किया था एक लोकल बिजनेस का। बरीटो बनाते हैं, एक्चुअली एक ही दिन में दो, और दोनों अमेजिंग बनाते हैं। एक तो सेंट्रल यानी सिटी की तरफ और एक साउथ की तरफ उनका बिजनेस है, बहुत ही बढ़िया था। लाइक लिटरली मैं ये नहीं कह सकता कि यार ये दोनों सिमिलर टेस्ट हैं, वो दोनों एक से बढ़कर एक थे। एक दिन तो वो पता नहीं नाम भूल गया, बट इट्स समथिंग लाइक ना थोड़ा पापड़ जैसा होता, पापड़ के ऊपर एकदम फिलिंग करके इन्होंने दी थी, इतना टेस्टी लग रहा था। एंड दूसरा वाला भी अमेजिंग यार, रैप खाई थी वहाँ पर मैंने, बहुत ही अमेजिंग था, बहुत ही टेस्टी था। Working from home today, my dad made fish curry with rice for lunch. My favorite cuisine is Fiji Indian. अरे वाह, sorry, Fijian Indian, है? वो तो लोगों को बोलते ना, खाने को भी ये बोलते हैं क्या? रोहन भाई बताइए। Fish curry, मैंने fish curry try की, हाँ पहले करता था, अभी तो of course मौका नहीं मिलता है। But yes, amazing यार। Thank you so much for sending all the messages and thank you so much to those as well जिन्होंने भेजा है। But of course, एक message और पढ़ लेता हूँ। इन्होंने लिखा है, I love Indian दाल चावल। अरे that's so cute यार, that's so cute। ये सही है, मतलब आप किसी भी देश का कुछ भी खा लो, दाल चावल is like favorite। वो मतलब कहीं पे भी किसी भी situation में बैठ सकते हैं, संभल सकते हैं, right?
8: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

Well, history of New Zealand में आज की बात कर लेते हैं. Actually, history of New Zealand, sorry, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ. But एक नई बात लेके आया हूँ, नया लेटेस्ट खबर लेके आया हूँ, वो पढ़ लेता हूँ पहले मैं. वेस्ट ऑकलैंड के न्यू लिन में पुलिस को येलो लाइंस पर एक चोरी की हुई कार मिली है, और इन्वेस्टिगेशन के बाद नियर बाय हाउसेस में एक आदमी बेड के नीचे छुपा हुआ मिला. पुलिस ने घर सर्च किया और एक मॉडिफाइड 12 गॉज शॉटगन भी एक गिटार केस के अंदर, एक गिटार होता है ना उसका जो केस होता है उसके अंदर पाई, साथ में लाइव एमिनेशन रिकवर किए जो कि 43 ईयर ओल्ड वुमेन पर रेस्ट्रिक्टेड वेपन और एमिनेशन पोजेशन के चार्जेस भी हैं, जबकि 23 ईयर ओल्ड मैन पर प्रोटेक्शन ऑर्डर तोड़ने या फिर विलफुल डैमेज के चार्जेस को दोनों कोर्ट में अपीयर करेंगे. सो लेट्स सी क्या जवाब आता है कोर्ट की तरफ से, बट दिस इज व्हाट इट इज.

0: चलिए बात करते हैं आज की लेटेस्ट खबर पे। डोमेस्टिक वर्कर 68 आवर्स वीक 1906 की कहानी है, जब आज के दिन वेलिंगटन में मैरियाने टस्कर और उनके सपोर्टर्स ने डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए एक यूनियन बनाई और उनका मेन एम था कि एम्प्लॉयर से बेटर पे और वर्किंग कंडीशन डिमांड की जा सके। उस टाइम न्यूजीलैंड में डोमेस्टिक सर्विस वुमेन के लिए पेड एम्प्लॉयमेंट का एक मेजर सोर्स था। बहुत सी डोमेस्टिक वर्कर्स को एक्सट्रीमली लॉन्ग आवर्स काम करना पड़ता था, अराउंड 16 आवर्स पर डे और 6.5 डेज पर वीक, और वेजेस भी काफ़ी लो होती थी। टस्कर और यूनियन की सेंट्रल डिमांड थी 68 आवर्स वर्किंग वीक। उन्होंने गवर्नमेंट के इंडस्ट्रियल कंसलेशन और आर्बिट्रेशन एक्ट का यूज़ करके एम्प्लॉयर्स के अगेंस्ट बेटर कंडीशंस अचीव करने की कोशिश की, लेकिन यूनियन को अपोजिशन के सामना करना पड़ा। कुछ लोग डोमेस्टिक वर्कर्स की कंप्लेंट को सीरियसली नहीं लेते थे और 1907 में टस्कर ब्रिटेन चले गए और यूनियन की एक्टिंग सेक्रेटरी ने रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं की। इस एडमिनिस्ट्रेटिव मिस्टेक के बाद यूनियन की रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गई थी। सिंपल शब्दों में कहें तो ये मूवमेंट डोमेस्टिक वर्कर्स को बेटर पे, शॉर्टर वर्किंग आवर्स और इम्प्रूव्ड वर्किंग कंडीशंस के लिए अर्ली अटेम्प्ट्स में से एक था।
1: लंच बॉक्स विद केतन।
2: इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं।
1: इसके पीछे
3: 80s के रेट्रो गाने।

0: rock and roll. Download Rover to listen Hum 80s Jukebox.
1: The first time Glenn saved lives was a Thursday. He closed his eyes to see how many dog breeds he could name. 22. Not bad, Glenn. Not too bad. Sit back and save lives. Visit nzblood.co.nz to book your blood or plasma donation appointment.
2: Did you know an EasyVote card makes voting easier and faster? To get yours, you need to enrol by midnight 4 October, so don't leave it too late.
3: Get your EasyVote card. Enrol by 4 October at vote.nz or call 0800 36 76 56. Brought to you by the Electoral Commission.
4: Settle, win, escape. Finance World is about to take you further with a trip to Bali. Settle kijiye apna home loan of 500,000 ya usse zyada Finance World ke saath. And you're automatically in the draw to win a trip to Bali for 2, 5 days, 4 nights, 2 lucky winners. Har eligible home loan of 500,000 ya usse zyada automatically aapko draw mein enter karta hai. Terms and conditions apply. Visit financeworld.co.nz/Bali. Finance World Limited is a registered financial advice provider.
5: Lunchbox with Ketan.
6: Aisa bajaunga na ki tere kaanon mein roz meri aawaz goonjegi.
7: चटनी शॉट के सेगमेंट में आपका स्वागत है। ये रही अभी की खबर। TSB बैंक ने 7300 से ज़्यादा बिजनेसेस कस्टमर से गलत फी चार्ज की। बैंक ने कुछ बिजनेस चेक ट्रांजैक्शन पर 25% फी ली, जबकि अपने टर्म्स के अकॉर्डिंग ये फी चार्ज नहीं होनी चाहिए थी। ये इशू मैं एकदम माइक ऑफ हो गया था, बट हाँ, ये इशू करीबन 2017 से 2023 तक चलता रहा। TSB ने अफेक्टेड कस्टमर्स को टोटल 1.73 मिलियन रिफंड कंपनसेशन दिए हैं। बैंक ने मिस्टेक के लिए अपोलॉजी भी की है और कहा कि फ्यूचर में फीस करेक्टली चार्ज की जाएगी या फिर उसे प्रॉपर तरीके से प्रोसेस किया जाएगा। सो यस, दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। और ठीक 3 साल बाद ये भी हो चुका है, दैट गलती किसकी थी। आप भी उनमें से एक हैं जिन्होंने फेस किया है, तो यस, देयर यू गो। इतना रिफंड इन टोटल वो पहुंचाने वाले हैं।
5: दिल से दिल तक, अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स। फॉर अ फ्री साइट असेसमेंट विजिट nzpmi.co.nz और कॉल 0800 4NZPMI।

0: हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
1: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. इधर उधर जाने से बचना। Call करो 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
2: चले मेरा ये रहा सवाल यहाँ पे। 1992 का क्रिकेट वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने कौन से साल जीता? ये मुझे आप जवाब दीजिए 5599 पे। जवाब सही होना चाहिए, गूगल नहीं करिए और मुझे बता दीजिए 1992 का वर्ल्ड कप जो 92 का वर्ल्ड कप जो हुआ था क्रिकेट वर्ल्ड कप, पाकिस्तान ने कब जीता था बताइए। तो यस 5599 नंबर जहाँ पे आप मुझे पूछिए।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: वेदर का हाल चाल जान लेते हैं। आज 18 डिग्रीज मैक्सिमम टेम्परेचर रहने वाला है, 11 डिग्रीज आज का मिनिमम टेम्परेचर रहने का। आफ्टरनून के बाद थोड़ी बारिश है, यानी कि अभी से, और 6:18 पे होगा आज का सनसेट।
0: लंच बॉक्स विद केतन।
2: ऐसा बजाऊंगा ना कि तेरे कानों में रोज मेरी आवाज गूंजेगी।
0: लंच के मंच पे।
1: नमस्ते, वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स, और आप बने रही है बिकॉज इस आर में भी बहुत सारी बातें होगी, बहुत सारी दिलचस्प बातें होगी। वेल यस, लंच टाइम रेंट लाइन की भी बातें होगी, कुछ बॉलीवुड की खबर भी लेके आऊँगा, अपडेट क्या है क्या नहीं है, कुछ नई खबरें और साथ में ढेर सारी इन्फॉर्मेशन। गाने भी दमदार चलेंगे, अभी जो बहुत ही खूबसूरत गाना है, वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग, उसे मैं चलाता हूँ, आप एंजॉय करिए। एंड यस, सवाल क्या था, 1992 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने कब जीता, इसका जवाब मुझे दीजिए। काफी हिलेरियस वैसे जवाब आए तो हैं, बट थोड़ी देर में पढ़ूंगा।
0: बचाओ क्या,

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। चलिए बात करते हैं आज के इस इलेक्शन वाली बात पे, यानी कि इस साल जो इलेक्शन साल चल रहा है उसमें ड्राइव शो आप सभी के लिए लेके आए हैं एक अमेजिंग सा इलेक्शन सेगमेंट। जी हाँ, हर थर्सडे 5 से 6 बजे के बीच ये होने वाला है ताकि हम हेल्प कर सकें आप सभी की जुबान मिल के एक बिग डे और बेटर अंडरस्टैंडिंग कि भाई जो नए कॉम्पिटिशन हो रहे हैं इस इलेक्शन में उसमें पॉलिसीज़ क्या होगी, पोजीशन क्या होगी, पार्टीज़ शेपिंग, न्यूजीलैंड का फ्यूचर कैसे क्या रहेगा, वो सारी बातें। हमारा सबसे पहला जो एपिसोड था वो था एक्ट पार्टी लीडर डेविड सिमोर, जो कि यहाँ पे आए थे। उन्होंने बात की थी सैंडी रुजबे से फ़ोन पे टेलीफोनिक एंड काफ़ी अच्छे से उन्होंने कन्वर्जेशन की है एक्ट्स पॉलिसी एंड उनके विजन न्यूजीलैंड के बारे में। उन्होंने ट्रीटी ऑफ वाइटांगी के बारे में भी बात की, परमजीत परमार के कमेंट के बारे में भी बात की, इमिग्रेशन एक्ट्स प्रपोजल टू फ्रीज द एडल्ट मिनिमम वेज एंड अदर इश्यूज शेपिंग द कंट्री, ये सारी बातें की हैं। अगर आप चाहते हैं वो वाला सुनना तो डेफिनेटली आप हमें BF लिखिए एंड हमें भेज दीजिए 5599 पेन ड्राइव लिख के भी आप भेज सकते हैं, जस्ट टू कीप योरसेल्फ अपडेट फॉर व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट फॉर थर्सडे एवरी थर्सडे शाम के 5 से 6 के बीच।
1: लंच बॉक्स विद केतन।
2: इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं।
1: इसके पीछे
3: हम ड्राइविंग यू होम ड्राइव शो विद सैंडी एंड रुज़बी।
4: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हुआ।
5: ये गलत बोल दिया यार।
4: और पहनता भी नहीं उसको।
5: बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूं मैं, अभी बेचने के लिए कोई लेगा क्या? रुज़बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ।
4: इंटरेस्ट
6: ब्रांड हो गया अभी वो।
5: अभी ब्रांड हो गया ना।
4: रुज़बे के बाल लगे उस।
3: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe. Massive home show deals available in store now. Only at Beds R Us Manukau and Pukekohe. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GW and Havel and Omura Jaiku.
7: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
8: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
9: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279499 और विजिट legalassociates.co.nz।
10: सुनो, आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया, घर बेचने को कह रहे थे।
11: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं, लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं। डेवलप करना बेहतर लगता है पर पैसों का डर है,
10: इसीलिए NZPMI से बात कर लो, वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं।
12: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं, आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है। आज ही NZPMI के पॉल से बात कीजिए। NZPMI, टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस। कॉल पॉल ऑन 0800-4NZPMI।
13: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein, plus free dental examinations for new and existing patients, free wins and ACC codes or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09277-6644. T's and C's apply.
3: Comes to town, Aotearoa ka feel hi kuch alag ho jata hai. Tickets ab available hai nzc.nz par. Be there, kyunki ye sirf cricket nahi, ye hai Black Caps versus India.
14: Adore your floor for less with Flooring Extra's affordable floor makeover sale. Save on their best-selling range, including 15% off all Quick Step. Visit your local Flooring Extra showroom today.
15: Flooring Extra, adore your floor.
16: Hey. City Rail Link's now open, and our first trip's going to the game.
17: Now I can go east-west on just one train. So my first trip seeing an old friend in Swanson.
18: Our first train ride. We're surprising the kids with Tiwai Horatiu Station and a movie.
19: See our first trip? Coffee with friends, maybe K Road, maybe Pukekohe.
20: Oh, it'll be our millionth time going to the art gallery, but our first time taking the train.
21: Those all sound great. The City Rail Link's now open, so all aboard with Auckland Transport.
1: Lunchbox with Keaton.
22: मुझे पसंद है लड़का।
1: हम। Lunch.
0: Lunchtime Rant Line.
2: Welcome back. ये रहे Lunchtime Rant Line का एक message जो मैंने pick किया है. Hi Kiran, I am Deepak from Manukau. My rant is about people who ask you for advice and then do the exact opposite thing. ये मेरा दोस्त है ये जो ऐसा करता है. My friend spent almost an hour asking me what he should do about a situation. I gave him my honest opinion and the next day he tells me I did the complete opposite. Then why did you ask me at the first place? बहुत ही सही बोला है. Quite common actually. काफी लोग relate भी करेंगे यहाँ पे. Deepak bhai, I think we have all been that friend at some point. हमारे you know group में कोई ना कोई ऐसा होता ही है. Sometimes people don't actually want advice, but वो mostly क्या करते हैं, want someone to listen to them. ऐसा भी होता है. But if you have already spent an hour explaining everything and asking for advice, at least consider कर लेना कि what the other person is saying. जी हाँ, otherwise next time just say Ketan, I don't need advice. I just need to rent. Like that. But thank you so much यार आपके इस message के लिए. And lovely to see your message again after very long. And enjoy kari gana. I mean, ha, gana.
0: Lunch ke munch pe.
22: Hoi, hoi, hoi, hoi.
0: Top hit of the hour. Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो की करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: फॉरेन अफेयर मिनिस्टर विंसन पीटर्स ने कहा है कि न्यूजीलैंड की न्यूक्लियर फ्री पॉलिसी का कॉस्ट हुआ था जी हाँ उनके अकॉर्डिंग पॉलिसीज ने नेशनल आइडेंटिटी और सेल्फ एस्टीम को स्ट्रेंथन किया लेकिन इसे न्यूजीलैंड की फॉरेन पॉलिसी एजेंसी पर काफी मिक्स्ड इंपैक्ट मिला पीटर्स ने स्पेशली बताया कि एंटी न्यूक्लियर स्टांस और 2003 में इराक वॉर ज्वाइन ना करने जैसे डिसीजन को इंडिपेंडेंस का एग्जाम्पल माना गया है लेकिन उनके कॉन्सिक्वेंसेस को भी रियलिस्टिकली कंसिडर करना चाहिए उन्होंने एग्जैक्ट फाइनेंशियल या डिप्लोमेटिक कॉस्ट स्पेसिफाई नहीं किए पीटर्स का पॉइंट था कि इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी का मतलब सिर्फ यूएस से डिसएग्री करना नहीं बल्कि डिफरेंट कंट्रीज के साथ अपने इंटरेस्ट के हिसाब से डिप्लोमेसी करना है व्हाट डू यू थिंक क्या क्या लगता है आपको इन्होंने सही बोला या नहीं बोला

0: हम कीर्तन संग्रह आप सभी के लिए लेके आएंगे बहुत ही बढ़िया मंच 25 सितंबर को होने वाला वैदिक सेंटर पापाटोटो में कलाकारों की रिकॉर्डिंग होने वाली है। उसके कीर्तन ऐप आप रोआ पर सुन सकेंगे जो भी रिकॉर्डिंग करेंगे हम फिजी कीर्तन संग्रह पर। सो यस हम टीम को आप ज्वाइन करें इस दिन 25 सितंबर को वैदिक सेंटर में, जहाँ पे बहुत ही अमेजिंग सा शो होने वाला है। सी हाउ इट ऑल हैपेंस, कैसे रिकॉर्डिंग होती है, एंड देन एंट्री इज कम्प्लीटली फ्री। Refreshment and kava will be on sale that time, that day, and you will also have an opportunity to win many, many prizes. Ji haan.
1: Lunchbox with Ketan.
2: Heera ladka hai. Telescope leke dhoondega na, tobhi isse better ladka nahi milega tujhe.
1: Hum. March 2027. Ek kahani jo badlegi aapki zindagi.
3: Rusbe, tickets book ho gaye.
4: To phir der kis baat ki? Bali bula raha.
3: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी,
4: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन,
3: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
5: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
6: हेलो एवरीबॉडी।
1: दो शहर एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
7: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
1: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्वे, ओनली ऑन हम।
8: There's a new kind of goodness in the pet aisle. Nature's Gift. Discover the new Nature's Gift grain-free range, now in convenient pouches and delicious kibble. Made with real meat, real vegetables and grain-free recipes, it's a natural choice for everyday feeding. So, looking for nature's goodness? You'll love Nature's Gift. All new look, same great nutrition in supermarkets now. The delicious dog food packed with real goodness. Give them the gift of Nature's Gift grain-free. Discover the range in-store today.
9: Spring just got fresher with these great deals at New World North Island this week. Get avocados, 2 for $2.50, or whole chicken legs, $7.99 per kilo. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
10: TradeDepot.co.nz. Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery anywhere in Auckland. Huge side-by-side stainless steel fridge freezer, $699. 10kg 9-star energy heat pump dryer, $799. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply.
11: TradeDepot.co.nz. MediaWorks complaints. How can I help?
12: Yeah, hi. You guys made some ads for my local business.
11: Nice.
12: And you talked me into creating this funny character.
11: Great.
12: And now everybody comes into the shop asking for Bobby.
11: Are you?
12: Yes.
11: Are you Bobby the Baker?
12: Yes.
11: What's that thing you do again?
12: Stop it.
11: You bring the mouth.
12: Stop it.
11: I'll bring the pie.
12: Stop it, please.
11: Okay.
12: Yeah, sure. I might have 3 stores now, but Bobby's more famous than me.
11: So what's the problem?
12: My name's Bruce.
13: Advertise with
14: MediaWorks.
11: New Zealand listens to us.
15: Few things sound better than logs crackling in a fire, rain on a tin roof, my voice, and the words you've won a pair of Bose headphones. Be in to win one of 50 pairs when you join Southern Cross Health Insurance by 11th of October. See website for details. T's and C's apply.
16: And फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है। हाँ,
17: अच्छा
16: बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं।
17: मिसेस सिंह,
18: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
19: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहुहु। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz.
6: Have you heard the news? Powerball has changed. There are now 14 Powerballs, meaning bigger prizes plus more winners, with a brand new Division 8 cash prize. Imagine winning $8 million this Wednesday. Get your Powerball ticket in-store or online.
3: This is Warehouse Country, where on your way home from work, school or wherever, you can top up on eggs, nature's fresh bread and milk at the best price in the country. From, well, the warehouse.
16: Lunchbox with Ketan.
2: इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं।
7: इसके पीछे
1: हम
16: लंच के मंच पे।
0: वेलकम बैक। ये रही बॉलीवुड की सबसे ताज़ा खबर। आपने अगर बिग बॉस 20 देखा होगा तो कितने सालों बाद यू मस्ट बी लाइक सल्लू भाई इज बैक। उन्होंने जो अपना टी शर्ट उतार के बॉडी दिखाई, ओ भाई साहब, मतलब हमें शर्म खा जानी चाहिए यार, स्पेशली मुझे। मतलब मेरी डबल एज का होगा फॉर श्योर, बट ही लुक वे वे फिटर देन मी, आई फील सो। मतलब मैं यहाँ से अभी चेयर पे बैठा हूँ, हाई चेयर पे, नीचे बैठूँगा, नीचे उतरूँगा और फट से मेरे को लग रहा है बोन पे दिख नहीं जाए। बट एनीवेज, द न्यूज़ इज रोहित शेट्टी ने सलमान खान को सपोर्ट किया आफ्टर सलमान ने बिग बॉस 20 पर सोशल मीडिया ट्रोल्स और बॉडी शेमिंग को कॉल आउट किया। दैट इज़ सो ट्रू। सलमान ने ट्रोल्स को जवाब देते हुए अपनी फिजिक दिखाई और कहा कि सेलिब्रिटीज़ के लुक और पर्सनल लाइफ का मजाक बनाना ठीक नहीं है। उन्होंने पपराजी कल्चर और सोशल मीडिया एंटिक्वेट पर भी काफ़ी आलोचना की है। रोहित शेट्टी ने सलमान को वीडियो शेयर करते लिखा, ओनली अनकंडीशनल प्रेम फॉर हिम, डियर ट्रोलर्स, इट्स डन ब्रो। कुणाल कोहली, वरुण धवन और नेहा धूपिया ने भी सलमान के कमेंट्स को काफ़ी अच्छे से सपोर्ट किया। वैसे बाकी का मैंने देखा है कि बाकी का काफ़ी वायरल हो गया था, बट वरुण धवन के बारे में भी कुछ बोला था, वो समझ में नहीं आया मेरे को। एंड मेरे को लगा गलती से किसी और का नाम लेना था, इनका तो नहीं ले लिया, बट नो, वरुण धवन का भी लिया है। क्या रीज़न से, मतलब बॉडी शेमिंग आई डोंट थिंक सो उनमें कुछ है, बट होनी नहीं चाहिए एक्चुअली, कम्प्लीटली रॉन्ग है। बट अगर आपने किसी को अगर पता हो तो प्लीज मुझे बताइए 5599 पे।
13: दिल से दिल तक, अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स। फॉर अ फ्री साइट असेसमेंट विजिट nzpmi.co.nz और कॉल 0800 4NZPMI।

0: ब्रॉट टू यू बाय 0800 रचना, इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना, दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।
1: मैंने एक सवाल किया था कि 1992 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने कब जीता था, और काफी इंटरेस्टिंग जवाब आए। किसी ने 1983 लिखा है, किसी ने 91 लिखा है, किसने 92 लिखा है, एक ने तो बोला भाई साहब आपका सवाल ही गलत है, 1992 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने कब जीता, आपने तो जवाब में ही सवाल में ही जवाब दे दिया, एंड इन्होंने सही पकड़ा है। वेल 1992 का मैं खुद बोल रहा हूँ यार, 1992 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने कब जीता, यानी कि 1992 में, राइट? क्या यार। एनीवेज यहाँ पे मतलब वो जवाब नहीं था, बट इट वॉज काइंड ऑफ थोड़ा सा मैनिपुलेट करने का बहाना था, जो मैं काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है सही हुआ हूँ। थैंक यू सो मच यार अमेजिंग जवाब के लिए। आप बस बने रहिए, थोड़ी देर मिलते हैं एक नई खबर के साथ।

0: आवाज गूंजेगी।
1: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। आप बने रहिए अंटिल थ्री, उसके बाद सैंडी जुड़ेंगी इन द कॉफी ब्रेक, एंड द कॉफी ब्रेक के बाद ड्राइव शो में रुज में उनका साथ देंगे। कैसे हैं आप सभी, आप बताइए मुझे 5599 पे। आई विश, आई होप कि आप सभी बढ़िया हो अपनी बिजी लाइफ एंड यू नो पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में भी। बस यस, कहने का तो बहुत कुछ है। मेरा नाम केतन है, जस्ट इन केस अगर आप भूल गए हो तो, और मैं 12 बजे से हूँ यहाँ पे लंच बॉक्स शो कर रहा हूँ और अंटिल 3। एंड थैंक यू सो मच फॉर टू दोज हु बीन लिसनिंग टू मी सिंस 12, और थैंक यू सो मच फॉर समवन हु हैज़ जस्ट जॉइन इन, जस्ट इन केस। या बने रहिए, लेके आता हूँ लेटेस्ट खबर थोड़ी देर में।
2: बचाओ

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। ये रही लेटेस्ट खबर। काइकोरा के लिटिल पेंगुइन को गवर्नमेंट के H5N1 बर्ड फ्लू वैक्सीनेशन लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया गया। DOC का कहना है कि वैक्सीनेशन मेनली उन बर्ड्स के लिए होती है जो एक्सटेंशन के हाई रिस्क पर है, और हर बर्ड को पकड़ना, चेक करना और दो डोजेस देना स्ट्रेसफुल और लेबर इंटेंसिव का है। लोकल वाइल्ड लाइफ ग्रुप और काइकोरा काउंसिल्स डिसएग्री करते हैं। उनका कहना है कि लोकल काइकोरा पॉपुलेशन बहुत छोटी और डिक्लाइनिंग है, इसीलिए बर्ड फ्लू से प्रोटेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। सो यस, DOC कहते हैं कि वैक्सीनेशन लिमिटेड रिसोर्सेज को मोस्ट एट रिस्क स्पीशीज पर फोकस करना चाहिए, जबकि लोकल ग्रुप्स चाहते हैं कि काइकोरा के पेंगुइन्स को भी प्रोटेक्ट किया जाए।
1: लंच बॉक्स विद केतन।
2: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
3: The Breakfast Show with VJ and Pooja।
4: पूरी प्लानिंग से आए हैं, 100% तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
5: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
6: That is very that is a very acceleration.
5: That's a very acceleration. Yeah.
6: Amazing acceleration.
5: This is my fancy English. That's a very.
6: अरे होता है यार, सब चलता है। आधी नींद में हूँ मैं।
3: The Breakfast Show with VJ and Pooja.
7: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels everyone. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living Manukau. Spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Manukau.
3: Weekdays 6 to 10 a.m.
8: Sona Sansar Papa Totoyo ke gehno ke saath aap bhi chamak jayenge.
9: Chudi, kangan, payal, bali, jhumke aur chokar. ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
8: सोना संसार पापा ट्विटर, जहां था वहां अभी भी है। शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा ट्विटर।
10: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा ट्विटर। सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर गोल्ड।
11: There's never been a better time to drive GWM at West City Auto Group. For a limited time, save $2,000 across the GWM Canon Ute range and $2,000 across the Havel SUV range. Plus, if you choose a GWM plug-in hybrid, you'll receive a complimentary home wall charger backed by a 7-year unlimited kilometer warranty. Visit West City Auto Group GWM in Westgate today or check out the latest offers at westcityautogroup.co.hz. Terms and conditions apply.
12: It's normal to feel low sometimes. Just like how the weather changes, so can our moods. Pay attention to your feelings. Reach in and check how you're doing. Reach out and talk to someone you trust. If you need to talk with a trusted professional, Asian Family Services is here to support. Call the Asian Helpline on 0800-862-342 for free, confidential support. If you or someone you know is in immediate danger, please call 111 or emergency services.
13: Hey, City Rail Link's now open, and our first trip's going to the game.
14: Now I can go east-west on just one train. So my first trip seeing an old friend in Swanson.
15: Our first train ride. We're surprising the kids with Tiwai Horatiu Station and a movie.
16: See our first trip? Coffee with friends, maybe K Road, maybe Pukekohe.
17: Oh, it'll be our millionth time going to the art gallery, but our first time taking the train.
18: Those all sound great. The City Rail Link's now open, so all aboard with Auckland Transport.
19: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते।
2: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा।
9: अब हमारा क्या होगा?
4: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना,
1: तो क्या करें?
0: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना। दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।

0: Breakfast with Ketan.
1: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
0: इसके पीछे
1: हम
0: skip your replay.
2: चलिए स्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं. स्पोर्ट्स में ऑल ब्लैक्स के कैप्टन एडी सेवी के शोल्डर इंजरी के लिए सर्जरी करानी पड़ेगी. उन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 29-24 लॉस के मैच में शोल्डर डिसलोकेट कर दिया था. हो चुका था, कर दिया नहीं, खुद ने नहीं किया था, मतलब हो गया था खेलते खेलते. सर्जरी के बाद ही उनकी रिटर्न डेट क्लियर होगी. फिलहाल वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अक्टूबर के ब्लेडिस्लो कप टेस्ट मिस करेंगे. सो सिंपल शब्दों में कहूँ तो सेविया की इंजरी ऑल ब्लैक्स के लिए एक मेजर सेटबैक है. और उनकी 2026 सीजन में वापसी कब होगी अभी कंफर्म नहीं हो पाया है.
0: टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स. बिल्ड योर ड्रीम्स.

वेलकम बैक। चलिए बात करते हैं एम्प्टी नेस्ट की। एम्प्टी नेस्ट इतना गहरा और इतना अजीब सा शब्द है। अजीब सा इसलिए बिकॉज हमको ये एम्प्टी नेस्ट तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई पेड़ पे बर्ड होगी एंड देन यू नो उसका नेस्ट जो है वो खाली होगा, बट दिस इज मोर रिलेटेबल टू अस एज वेल। स्पेशली माइग्रेंट्स काफ़ी रिलेट कर पाएंगे बिकॉज बच्चा जब घर छोड़कर यूनिवर्सिटी जॉब या इंडिपेंडेंस के लिए लाइफ चुनता है और वो अपना घर छोड़ के बड़े शहर में या कहीं और जाता है, इससे पेरेंट्स के घर में थोड़ी साइलेंस तो रहती है, बल्कि उसके साथ साथ लोनलीनेस, इमोशनल डिस्ट्रेस और पर्पस भी लूज होता रहता है, फीलिंग भी कुछ खास नहीं रहती है। एक रीसेंट यूके स्टडी में 53 मोस्टली ओल्डर एडल्ट्स का को देखा गया है। कुछ पेरेंट्स ने चिल्ड्रन को मूव आउट को पॉजिटिव चेंज माना, ज़्यादा फ्रीडम और नए एक्सपीरियंस के अपॉर्चुनिटी के रूप में, लेकिन जो पेरेंट्स अकेले रहते हैं जैसे कि सिंगल या फिर विडोर या पहले कुछ और किसी रीज़न की वजह से उनका रिलेशनशिप जो है वो टूटा हुआ हो, उनमें लोनलीनेस का इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग रहता है और ऑब्वियसली उसके साइड इफेक्ट भी बहुत ही गंदे होते हैं कभी कभी। सो यस, बच्चों का घर छोड़ना हर पेरेंट्स के लिए सेम नहीं होता है। कोई लोग इसे फ्रीडम मानते हैं तो कोई लोग इसे काफ़ी स्ट्रेस या फिर लोनलीनेस की आइडेंटिटी। आपको क्या लगता है, क्या रिव्यू है इस चीज़ में आपका, आप मुझे बताइए 5599 पे।

0: वेलकम बैक। चलिए पता करते हैं कौन कौन सी फिल्में रिलीज होने वाली हैं इस महीने। वैसे यस, द विवान 25 सितंबर को रिलीज होने वाली है, आप इसे देखिए, एंजॉय कर सकते हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा इस फिल्म के अंदर है। दृश्यम 2, सॉरी 2 नहीं, ये तो थर्ड होगी मेरे ख्याल से, द कंक्लूजन 2 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। फिर है उड़ता तीर, वो 9 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। और नई नवेली, ये रिलीज होने वाली है 16 अक्टूबर को। तो काफी बढ़िया फिल्म लाइनअप रेडी हो चुका है आप सभी के लिए। तो यस, योर मेन थिंग इज टू जस्ट गेट अ टिकट एंड गो एंड वॉच वन ऑफ योर फेवरेट मूवी। वन क्या, मैं तो कहूँगा सारी मूवी देखने जाओ इफ यू हैव टाइम। मेन है लोचा, टाइम का टाइम ही नहीं है आजकल, है ना।
1: लंच बॉक्स विद केतन,
2: मुझे पसंद है लड़का।
3: Ladies and gentlemen,
1: unfiltered with Sandy and Rizvi, क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती हैं raw, emotions होते हैं real और conversations होते हैं बिना mask के।
4: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं।
1: Unfiltered with Sandy and Rizvi on Rowa, Spotify or anywhere you get your podcast.
5: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे।
6: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे।
5: सोना संसार पापा ट्विटर, जहां था वहां अभी भी है। शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा ट्विटो।
7: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा ट्विटो। सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर गोल्ड।
8: Auckland, are you emergency ready? If the unexpected strikes, do you know what to do? Make an emergency plan this daylight saving weekend. Brought to you by Auckland Emergency Management. Make your plan at aem.govt.nz.
9: It's double points week at Woolworths. Simply hit boost in the Everyday Rewards app, spend $50 or more in store or online, and scan your Everyday Rewards card and collect double points on every shop. In Sunday, TCs and exclusions apply.
10: Settle, win, escape. Finance World is about to take you further with a trip to Bali. Settle kijiye apna home loan of 500,000 ya usse zyada Finance World ke saath, and you're automatically in the draw to win a trip to Bali for 2, 5 days, 4 nights. Do lucky winners. Har eligible home loan of 500,000 ya usse zyada automatically aapko draw mein enter karta hai. Terms and conditions apply. Visit financeworld.co.nz/Bali. Finance World Limited is a registered financial advice provider.
1: Non-stop Bollywood.
11: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
1: हम playing Bollywood's biggest hits. Lunchbox with Ketan.
12: इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं।
1: इसके पीछे
11: हम
1: Tech Talk.
0: Well, yes, टेक्नोलॉजिया उसकी तरफ से हम लेके आए हैं खबर। एक यूनिवर्सिटी में, ऑकलैंड और यूनिवर्सिटी ऑफ ओटागो, स्टडी के अकॉर्डिंग 44% टीनेजर्स को लगता है कि उन्हें स्मार्टफोन बहुत छोटी एज में ही मिल गए थे। उनको लगता है का क्या मतलब है भाई, मिले होंगे तभी बोल रहे होंगे ना। सर्वे में 64% टीन्स उन्होंने फोन 11 से 13 साल की एज में ही रिसीव कर दिया था। और टीन्स एवरेज 4 hours पर डे डिवाइस पर स्पेंड करते हैं, और 43% ने कहा है कि फोन नोटिफिकेशंस उनके काम या स्टडीज को फ्रीक्वेंटली इंटरप्ट करते रहते हैं। रिसर्चर्स ने अटेंशन और फोकस पर पॉसिबल इम्पैक्ट की कंसर्न भी रेज की है। दैट इज सो ट्रू यार, इसलिए तो आजकल हर एक कंट्री के जो जो सरकार है वहाँ के एक नया रूल लेके आ रही है दैट अंटिल यू आर नॉट 16 यू आर नॉट अलाउड टू यूज एनी काइंड ऑफ फोन और स्मार्टफोन और सोशल मीडिया, राइट, सोशल मीडिया आई गेस। बहुत से टीनेजर्स खुद फील करते हैं कि स्मार्टफोन्स उनकी लाइफ में टू अर्ली आ गया, और नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया उनका फोकस और ऑफलाइन एक्टिविटीज काफी इफेक्ट कर सकता है। सो यस, दैट्स ऑल द न्यूज फॉर टुडे। एंड यस, आप बने रहिए, एक बहुत ही खूबसूरत गाना सुनिए।
1: दिल से दिल तक, अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स। फॉर फ्री साइट असेसमेंट विजिट nzpmi.co.nz और कॉल 0800 4NZPMI.

0: बाई 0800 रचना, इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना, दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन.
1: एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस. बहुत ही बढ़िया रहा आज का दिन, मौका, समय, बातें और आपकी आपके मैसेजेस. सो यस, थैंक यू सो मच. आप बस ऐसे ही बने रहिए. सैंडी विल बी जॉइनिंग शॉर्टली इन द कॉफी ब्रेक एंड उनके बाद रुस्बे उनका साथ देंगे इन द ड्राइव शो. आई विल टेक अ लीव एंड आई विल सी यू टुमारो. सो यस, टाटा, बाय बाय एंड लव यू.

0: 3:11 हो चुके हैं, आज 22 सितंबर है। वैसे आपको पता है कि न्यूजीलैंड में ये जो पूरा का पूरा मंथ है ये ब्लड कैंसर अवेयरनेस मंथ जो है ये यहाँ पे यू नो सेलिब्रेट किया जाता है ताकि अवेयरनेस जो है ब्लड कैंसर के रिलेटेड ये हो सके। सो लेकिन आज का जो पर्टिकुलर डे है, बिकॉज इसके बारे में पढ़ रही थी तो मैंने और भी इसके बारे में रिसर्च किया, इट इज़ अ वर्ल्ड रोज डे। रोज़ डे जो है ये कैंसर पेशेंट वेलफेयर ने बनाया है ऑन ब्रिंगिंग जॉय होप एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट उनके लिए जो कैंसर पेशेंट्स हैं एंड उनकी फैमिलीज़ के लिए। और रीजन इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये जो डे है ये ऑनर करता है मेलिंडा रोज़ को, बाय हर नेम इट्स रोज़। सो मेलिंडा रोज़ 12 साल की कैनेडा की गर्ल थी जो डायग्नोज हुई थी एक ट्यूमर से, एस्किन्स ट्यूमर, जो कि एक बहुत ही रेयर और अग्रेसिव ब्लड कैंसर होता है। सो डिस्पाइट बीइंग गिवन ओनली वीक्स टू लिव, उसने अपने जो फाइनल 6 मंथ्स थे वो स्पेंड किए बाय राइटिंग लेटर्स, पोइम्स, ईमेल्स एंड ब्रिंगिंग जॉय टू अदर कैंसर पेशेंट्स। जो बाकी कैंसर पेशेंट्स थे उनको वे सारी चीज़ें भेजती थी ताकि उनके लाइफ में थोड़ी जॉय आए, थोड़ी खुशी आए उनके लाइफ में। तो इसीलिए उसको ऑब्जर्व करने के लिए जो डे है ये सेलिब्रेट किया जाता है आज का दिन। बट ऑल्सो न्यूजीलैंड में ख़ासतौर पे इसका ध्यान दिया जाता है आज का जो डे है ऑन क्रोनिक माइलॉयड ल्यूकेमिया क्योर, बिकॉज आज की जो डेट है ना इट्स 9/22 आज का जो डेट है कनेक्टेड है, बिकॉज ये जो ल्यूकेमिया के बारे में मैं बात कर रही हूँ ये एक जेनेटिक स्वैप होता है 2 क्रोमोसोम्स के बीच में। हमारे जो जेनेटिक्स में ना 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, एक 9 होता है एक होता है 22, और ये 9 और 22 का जब स्वैप होता है तो वहाँ पे एक फ्यूजन जीन एक और क्रिएट होता है जिसके कारण क्रोनिक माइलॉयड ल्यूकेमिया जो है ये कैंसर होता है। सो आज के दिन इसलिए इसको ऑब्जर्व किया जाता है ताकि इसकी अवेयरनेस हो। और मैंने ये रियलाइज़ किया कि काफ़ी चीज़ों के बारे में हमें अवेयरनेस नहीं होती है। इसी के रिलेटेड वैसे हमने एक पॉडकास्ट भी किया था जहाँ पे मुस्कान केयर ट्रस्ट से निवेदिता हमारे साथ आई थी एंड इन्होंने थैलेसीमिया के बारे में यहाँ पे बात की थी। इवन मुझे भी थैलेसीमिया के बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं थी, और हमारी कम्युनिटी के बीच में स्पेशली साउथ एशियन कम्युनिटी के बीच में थैलेसीमिया इतना कॉमन है, ये बातें हमें नहीं पता है। एंड कई बार क्या होता है कि उस पॉडकास्ट में हमने रियलाइज़ किया कि कई बार आप बोलते हो कि यार आयरन की कमी है, आयरन की कमी है, आप आयरन की मेडिकेशंस ले रहे हो, बट देर इज़ अ थिन लाइन बिटवीन थैलेसीमिया एंड आयरन की कमी। वो सब कुछ बहुत अच्छे वे से इस पॉडकास्ट में उन्होंने एक्सप्लेन किया था एंड पूरी रियल लाइफ स्टोरी उन्होंने यहाँ पे शेयर की थी। यू कैन एक्चुअली गो एंड लिसन, अगर आपने वो पॉडकास्ट नहीं सुना है ना तो मेरे को लगता है कि ये हर एक फैमिली को ये पॉडकास्ट ज़रूर सुनना चाहिए, बिकॉज उसमें किसी में माइनर होता है किसी में मेजर होता है। सो यू नीड टू नो, बस अवेयरनेस होनी चाहिए चीज़ों की, यू नो जैसे हम बुक्स पढ़ते हैं, जैसे आप रील्स देखते हो ना अपनी अवेयरनेस के लिए, तो ऐसे पॉडकास्ट भी सुना कीजिए अपनी अवेयरनेस के लिए। इसीलिए हम स्पेशलिस्ट को यहाँ पे लेके आते हैं। सो थैलेसीमिया वाला पॉडकास्ट अगर आपको सुनना है, व्हाट यू कैन डू, रोवा ऐप तो आपने डाउनलोड करके ही रखी है, रोवा ऐप पे जाइए, वहाँ पे सर्च कीजिए अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रुस्बे, सो अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट आपको मिलेगा, उसी के नीचे आपको थैलेसीमिया वाला एपिसोड भी मिलेगा, और भी ढेर सारे एपिसोड हमने किए हैं, पर थैलेसीमिया भी वहीं पर आपको मिलेगा, स्पॉटिफाई पर आपको मिलेगा, आपको एप्पल म्यूजिक पे भी मिलेगा, जियो सावन पे भी मिलेगा। सो यू कैन एक्चुअली सर्च एंड लिसन प्रॉपरली टू दैट पॉडकास्ट। एंड या वैसे लेटेस्ट पॉडकास्ट अगर आपको सुनना है तो ड्राइव लेके भेजिए 5599 पर, रिप्लाई में ऑटो लिंक आपको मिल जाएगा। कॉफी ब्रेक विद सैंडी, कीप काम बिकॉज़ पंजाबी स्वैग इज ऑन।
1: माजे दिए मोमबत्ती है, पहले दिनों तेरे उत्ते आँख रखी है, तेरे बिना एरिए च और कुड़ी दा ना दल मंगी है।

0: 3:18 हो चुके हैं, कॉफी ब्रेक फिलहाल आप यहाँ पे सुन रहे हैं। वैसे हेल्थ एंड ऑल दैट हम बातें कर ही रहे थे, एक और आर्टिकल भी है। मिडिलमोर हॉस्पिटल जो है, इनके स्टाफ ने डिक्लेयर किया है हेल्थ केयर क्राइसिस के बारे में। मोर देन 200 हेल्थ केयर वर्कर्स मिडिलमोर हॉस्पिटल, इन्होंने साइन की है लेटर जो डिक्लेयर करती है कि जो हॉस्पिटल है एक्सपीरियंस कर रहे हैं हेल्थ केयर क्राइसिस, जिसमें क्रोनिक अंडर स्टाफिंग है, ओवर क्राउडिंग है एंड प्रेशर ऑन सिक स्टाफ टू कम टू वर्क। मतलब हर कहीं पे तो ईमेल किया जाता है कि अगर थोड़ा सा भी सिक हो तो आप घर पे रहो, काम पे मत आओ, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई थोड़े से भी सिक हो तो आप काम पे आ जाओ। मतलब बट इट्स स्केरी राइट, कि अगर जो स्टाफ सिक है वो काम पे आ रहा है, वो भी हॉस्पिटल में, तो बाकियों की केयर कैसे हो रही है। सो एमरजेंसी डिपार्टमेंट ओवर क्राउडिंग हो रहा है। स्टाफ का कहना है कि जो ईडी है इनकी रूटीनली ऑपरेटिंग होती है एट अराउंड 200% ऑफ कैपेसिटी, विच पीक्स अप्रोचिंग 250%। वाओ। एंड स्टाफ का जो शॉर्टेज है, वर्कर्स का कहना है कि नए लोगों को हायर करना भी फ्रीज किया गया है, एंड जिसके वजह से जो प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा है और अनसेफ वर्किंग कंडीशंस हैं। सिक स्टाफ के बारे में उनका कहना है कि काफ़ी एम्प्लॉयज़ ने बोला है कि उन्हें प्रेशर किया जाता है टू वर्क डिस्पाइट बीइंग अनवेल। हेल्थ न्यूजीलैंड का कहना है कि इट डज़ नॉट एक्सपेक्ट सिक स्टाफ टू अटेंड वर्क, और इसीलिए वो जो कंसर्न्स हैं वो रिव्यू कर रहे हैं। एंड न्यूजीलैंड नर्सेज ऑर्गेनाइजेशन जो है, इन्होंने बोला है कि मोर नर्सिंग स्टाफ आर नीडेड एंड इज़ कॉलिंग फॉर 40 एडिशनल नर्सिंग पोजिशंस, जिसमें डिफरेंट कल्चर की नर्सिस को हायर करने का भी रखा जाएगा, उनका रेशियो भी रखा जाएगा। कंसर्न्स काफ़ी ज़्यादा है, वाइडर प्रेशर है न्यूजीलैंड हॉस्पिटल एमरजेंसी डिपार्टमेंट के ऊपर, एंड विद सिमिलर स्टाफिंग एंड जो कैपेसिटी कंसर्न्स है, ये नॉर्थ शोर में भी है, गिस्बन में भी है, वाइकाटो में भी है और बाकी हॉस्पिटल्स में भी है। आपने मैक्सिमम कितना टाइम वेट किया है? अगर आप कभी ईडी में गए हैं, अगर आप मतलब भगवान करे कभी किसी को जाना ना पड़े एमरजेंसी में, सो एमरजेंसी डिपार्टमेंट में जाने के लिए या फिर यू नो ऐसी सिचुएशन के लिए आपको कितना इंतज़ार करना पड़ा है? एंड यहाँ पे मैं आपके पर्सनल जीपी अपॉइंटमेंट के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, वो डिफरेंट है। एमरजेंसी डिपार्टमेंट में आपको कितना समय वेट करना पड़ा है अगर आप कभी गए हैं? 5599 पर मैसेज करके बता सकते हैं या फिर कॉल करके 0800 00 हम पर 0800 00 4866 इज़ अ नंबर कि आपको कितना इंतज़ार करना पड़ा है। हाय गुड आफ्टरनून
1: रिगार्डिंग द इमरजेंसी डिपार्टमेंट, मैं एक्चुअली अपने 6-year-old किड को लेकर गई थी किड्स फर्स्ट में। उनको लाइक एट नाइट अराउंड 1 AM आई हैड टू रश बिकॉज ही गॉट एन एलर्जिक रिएक्शन टू हिज बॉडी।
0: ओके।
1: और पूरा बहुत बुरी तरीके से हुआ था। वी वेंट देयर द वन एंड आई वी वेटेड टिल 7 इन द मॉर्निंग टू बी सीन बाय अ डॉक्टर, 6.5 अबाउट 6 hours।
0: ओह माय गॉड।
1: एंड टू अ पॉइंट वेयर देयर वाज नो पॉइंट, बिकॉज़ जब डॉक्टर आए तो फिर बोले कि ओ हम कुछ टेस्ट वगैरह नहीं कर सकते, एलर्जीज का पता नहीं लगा सकते, आपको एज आउट पेशेंट रिफर करेंगे। तो सिर्फ एंटी हेस्टामिन का टैबलेट मेडिसिन या एंड पेमोल देकर ही भेज दिया। तो द होल थिंग इज जस्ट लाइक अ वेस्ट ऑफ टाइम इन द सेंस की
0: वेस्ट ऑफ टाइम भी एंड इनकन्वीनियंस एज वेल ना, बिकॉज अगर बच्चे को ऑलरेडी तकलीफ हो रही है तो आप वहां पे जो वेट कर रहे हो वो उस बच्चे के लिए भी इनकन्वीनियंस हो रहा है।
1: एंड व्हेन यू गो एंड आस्क देयर लाइक ओ आपसे पहले और भी लोग हैं जो वेट कर रहे हैं। द होल पॉइंट इज दैट if someone's got an allergic reaction you'd rather do a testing, a skin test there then and then
0: aisa priority bhi hona chahiye na ki kiska zyada urgent hai is samay par.
1: Exactly. So they I think the one thing over here is the medical system, even though there's nurses and everyone around, the prioritizing of things is not done properly.
0: And this is about ED, right? This is emergency department.
1: The kids first emergency at Middlemore.
0: Okay.
1: So, like I went and that was the case and I was like, oh, okay. So, I'd rather than probably even sometimes I'd be better off going to my GP and seeing them. Because they will prioritize an allergic reaction straight away.
0: Yeah.
1: Then to be waiting another 6 hours.
0: या बट उस समय पर नहीं पता चलता ना, एज अ पेरेंट यू विल थिंक कि जल्दी से इमरजेंसी में लेके जाना है.
1: एग्जैक्टली यस. आई मीन स्पेशली बीइंग एट मिडनाइट एट 12 o'clock,
0: 100%
1: 1 a.m. इन द मॉर्निंग, यू'd रादर बी गोइंग टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट बिकॉज़ नथिंग एल्स इज ओपन.
0: या और सो उस टाइम के बाद भी इतना इंतजार करना पड़ा है. वाओ.
1: एग्जैक्टली यस. सो इट वाज रियली बैड. इट वाज क्वाइट बैड.
0: सो या तभी तो ये आर्टिकल आया है जहाँ पे इतने लोग वो कह रहे हैं कि इट्स नॉट गुड, मतलब स्टाफिंग ही नहीं है वहाँ पे. तो इट्स नॉट अबाउट कि यू नो वहाँ पे अगर लोग ही नहीं है देखने के लिए तो वो देखेंगे ही कैसे.
1: एग्जैक्टली यस.
0: यहाँ से ये थैंक यू सो मच. आपने नाम बताना है अपना.
1: आर्तिका.
0: आर्तिका ठीक है. थैंक यू आर्तिका. हैव अ गुड वन. बाय. सो अंतप्रीत का मैसेज भी आया है कि इन्होंने ईडी में 9 hours वेट किया है. सो आप भी अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं यहाँ पे, सो यू कैन ऑल्सो शेयर मैसेज करके या फिर कॉल करके.
2: हॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड.
3: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ.
4: मैं लाऊं अपना ए गेम.
2: ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स. बिल्ड योर ड्रीम्स.

0: 3:34 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं। तलविंदर को आप यहाँ पर सुन रहे थे हम 104.2 FM पे। वैसे आप हमें रोवा के जरिए भी सुन सकते हैं। रोवा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर ऐप स्टोर में जाके, जहाँ पे आप हमारे पॉडकास्ट सुन सकते हैं और हमारे म्यूजिक स्टेशंस भी सुन सकते हैं। नाउ आते हैं आज के सवाल पे, व्हाट एम आई क्वेश्चन। सो आज का सवाल ये है, व्हाट इज समथिंग यू कैन होल्ड विदाउट एवर टचिंग इट। ऐसा क्या है? सो व्हाट इज समथिंग यू कैन होल्ड विदाउट एवर टचिंग इट। टच करने की जरूरत नहीं है फिर भी आप इसे होल्ड कर सकते हैं। व्हाट इज इट आपको बता रहे हैं, और इसके ना मल्टीपल आंसर्स हैं। सो हिंट अगर आपको चाहिए तो, या राइट नाउ जो है ना और थोड़ी देर पहले जो था ये एग्जिस्ट कर रही थी ये चीज़। ये क्या है? अभी भी एग्जिस्ट कर रही है चीज़, और इससे पहले भी ये चीज़ एग्जिस्ट कर रही थी। अभी मैं इस टाइम की इस मोमेंट के बारे में बात कर रही हूँ। व्हाट इज समथिंग यू कैन होल्ड विदाउट एवर टचिंग इट। लेट्स सी कितने लोग इसको गेस कर पाते हैं। 5599 इज अ नंबर।
1: नॉन स्टॉप बॉलीवुड
2: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
1: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।
3: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
4: से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है, क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं। पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना, बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस, ऑन साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस, और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन साइट क्रेमेटोरियम, और जब भी जरूरत हो दिन हो या रात हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा। मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए।
5: Auckland, are you emergency ready? If the unexpected strikes, do you know what to do? Make an emergency plan this daylight saving weekend. Brought to you by Auckland Emergency Management. Make your plan at aem.govt.nz.
6: Have you heard the news? Powerball has changed. There are now 14 Powerballs, meaning bigger prizes plus more winners, with a brand new Division 8 cash prize. Imagine winning $8 million this Wednesday. Get your Powerball ticket in-store or online.
7: Coffee Break with Sandy.
8: Let's go.
9: Straight from the heart.
10: Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800-4-NZPMI.
0: सो आज का सवाल है, व्हाट इज समथिंग यू कैन होल्ड विदाउट एवर टचिंग इट। अगर आपने मिस आउट किया है, मैसेजेस यहाँ पे भेजते रहिए। काफ़ी डिफरेंट आंसर्स मेरे पास यहाँ पे आए हैं। सपना, रोशनी, आपका भी आंसर आया है। राइनल का आंसर आ चुका है। लक्ष्मी ने भेजा है। पम्मी ने आंसर भेजा है। अजय एंड काफ़ी लोगों ने अपना जवाब, अपने नाम यहाँ पे नहीं लिखे हैं। एंड या आप भी भेजते रहिए। 5599 इज़ द नंबर। ऐसा क्या है? व्हाट इज समथिंग यू कैन होल्ड विदाउट एवर टचिंग इट।

विशाल मिश्रा की आवाज में ये गाना सैयारा मूवी का आप यहाँ पे सुन रहे थे। एंड काफी लोगों ने सही जवाब मेरे पास यहाँ पे भेज दिया है। जो आज का सवाल पूछा गया था कि ऐसा क्या है जो आप होल्ड कर सकते हैं विदाउट इवन टचिंग इट, मेरे पास जो जवाब था वो था कन्वर्सेशन। यू कैन होल्ड अ कन्वर्सेशन विदाउट इवन टचिंग इट, इसलिए मैंने हिंट दिया था जो कि जो अभी चल रहा है। काफ़ी लोगों ने डिफरेंट आंसर्स भेजे। ब्रेथ भी एक्चुअली में सही आंसर है, अपनी सांसों को आप होल्ड कर सकते हैं विदाउट इवन टचिंग इट। इन अकाउंट मनी आंसर भी आया है, या यू कैन होल्ड इट विदाउट टचिंग। कन्वर्सेशन अजय ने भी आंसर भेजा है। ब्रेथ पम्मी आपने भी भेजा। प्रॉमिस तो या प्रॉमिस को भी आप होल्ड कर सकते हैं, यू कैन होल्ड ब्रेथ। एंड लक्ष्मी ने बोला यू कैन होल्ड ग्रज अगेंस्ट समवन एज वेल, दैट्स राइट एज वेल। इमोशंस एंड टाइम्स अपना रोशनी आपका भी या सुटेबल है। सो डिफरेंट आंसर्स देखा जाए तो इसके ऊपर फिट होते हैं। अगर इसमें से कोई एक ऐसा आंसर है जो आपके जहन में है जो सूट करता है लेकिन अभी तक नहीं बताया तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं 5599 पर। वैसे अगर आपको एक मॉडरेट वॉक या हाइक करनी है तो वेस्ट ऑकलैंड में ना ज़िगज़ैग ट्रैक है, टिटिरंगी में है वैसे ये, एटकिंसन पार्क में। रफली 2.9 किलोमीटर वन वे है ये। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड वॉक इन अ वेरी गुड सनी डे, दिस इज़ परफेक्ट। सो सिटी से इसका डिस्टेंस तकरीबन मेरे को लगता है टिटिरंगी का 40 मिनट्स तक लगता होगा मैक्सिमम। डिफ़िकल्टी लेवल इसका मॉडरेट है। सो वहाँ पे नेटिव बुश स्टेयर्स भी है, स्विच बैक्स भी है, सब हार्बर व्यूज़ भी आपको मिलने वाले हैं। एक्चुअली में ना इसे अपग्रेड किया गया था और री ओपन किया था 2023 वेदर इवेंट के बाद। एंड ऑकलैंड काउंसिल ने इसको बोला है कि मॉडरेट फिटनेस के लिए ये परफेक्ट है। सो यू कैन मेक इट एज अ आउट एंड बैक जहाँ पे आपका डिसेंट वर्कआउट होता है विदाउट कमिटिंग टू अ ह्यूज हाइक जहाँ पे बहुत सारी स्लोप्स नहीं है। और क्योंकि इसको बहुत ही रिलैक्स्ड वॉक भी बोला गया है एंड इट्स रियली गुड फॉर द आउटडोर एक्सरसाइज एज वेल। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग जहाँ पे आपको ज़्यादा डिफ़िकल्ट वॉकिंग हाइकिंग नहीं करनी है तो ये आपके लिए सुटेबल हो सकता है ज़िगज़ैग ट्रैक टिटिरंगी। अगर आप सर्च करते हैं तो ये आपको मिलेगी।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: मौसम के हालचाल मेड सर्विस के अनुसार इस समय टेम्परेचर बाहर का 16.6 डिग्रीज और आज को ओवरनाइट 11 डिग्रीज टेम्परेचर रहने वाला है। थोड़ा विंडी है आज का वेदर, कल बारिश होने के चांसेस हैं एंड सनसेट आज का 6:18 पर।
2: Drive show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us, Manuko and Pukekohe. Massive home show deals available in store now. Only at Beds R Us, Manuko and Pukekohe. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
0: Super Se Upar, brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited.
1: 4:02 हो चुके हैं। अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। ड्राइव शो आपके लिए शुरू हो चुका है, यू हमिंग अलॉन्ग विद सैंडी। और अभी से लेके 7 तक ड्राइव शो वैसे आपके लिए रहता है, थोड़ी देर में मेरा साथ यहाँ पे रुजबे के साथ हो जाएगा। सो कैसे हैं आप और आपका डे आज का कैसा गया है? इट इज़ ट्यूजडे एंड ट्यूजडे को 5 के बाद आपके लिए हम गेम खेलते हैं जिसका नाम है करेक्टर गेस। एंड आज भी करेक्टर गेस रहने वाला है। करेक्टर गेस में होता क्या है, आज रुजबे की टर्न है बाय द वे। तो वन ऑफ द पर्सन आपसे सवाल पूछता है, मतलब उसके मन में जैसे वो किसी को सोच के रख रहा है, उसके रिलेटेड वो 5 देगा और 5 हमने उसे पूछने हैं जिसका जवाब वो येस या नो में दे सकता है। एंड इसी येस नो में हमें गेस करना है इस करेक्टर का। और ये करेक्टर कोई भी हो सकता है, ये बॉलीवुड का हीरो हो सकता है, बॉलीवुड की हीरोइन हो सकती है, पॉलिटिशियन हो सकता है, बिजनेस पर्सन हो सकता है। अराउंड द वर्ल्ड This person can be anyone. So, yeah, देखते हैं आज रुजबे कौन सा करेक्टर लेके आता है। उसके लिए आपको 5 के बाद का इंतज़ार करना है। लेकिन इस आवर में भी एक कॉम्पिटिशन और एक सवाल आपके लिए रहने वाला है। स्टे ट्यून्ड।

0: 4:12 हो चुके हैं फिलहाल, ड्राइव शो आप यहाँ पे सुन रहे हैं। नाउ स्कैम्स के बारे में अक्सर हम यहाँ पे बात करते रहते हैं और ये तो एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही सैड स्कैम यहाँ पे हुआ है। न्यूजीलैंड के बारे में बात कर रहे हैं। सो न्यूजीलैंड में दिस वन मैन इन हिज लेट 60s, ही वॉज इन रोमांटिक ऑनलाइन रिलेशनशिप एक ऑस्ट्रेलियन पुलिस रिक्रूट के साथ जिसका नाम था एमी स्कायर्स। फॉर ऑलमोस्ट 2 decades, 18 years in total, he was in online relationship. In reality, the woman was 44-year-old Auckland ki hi resident, jo ki unemployed thi and was living with her mother. Ye jo relation tha, ye inka online shuru hua 2006 mein. Jo woman thi, usne apni photos dikhai ki wo ek athletic model hai and claimed ki wo police mein bhi hai and Australia mein, Gold Coast mein wo rehti hai. And repeatedly told the man she planned to move to Dunedin to be with him, but kept creating excuses ki why wo move nahi kar sakti. But yaar 18 years, thoda aisa wo unbelievable sa lagta hai ye. She even supplied what appeared to be a fake travel itinerary, aur baad mein claim kiya ki she was traveling to New Zealand during COVID restrictions. So over 18 years, this person made 1,149 separate payments, जिसमें total इस बंदे ने जो money भेजी है वो है $525,000, more than $500,000 this person spent on her over 18 years. She asked the money for many things. And rent, flight, petrol, shipping container, medical treatment, ये सारी चीज़ों को लेके। So court की documents बताते हैं कि ये actually में ये सारी की सारी money उसने spend की यहीं पे Auckland में ही food के ऊपर, because she was living rent free, shopping, petrol और personal debts उसके साथ वो pay करती रही। At one point, she invented a medical problem and a traumatic childhood story उसने बना दी कि इस चीज़ के लिए अब उसको ऑपरेट करवाना पड़ेगा, सर्जरी करवानी पड़ेगी। सो उस बंदे की खुद की सर्कमस्टांसिस जो थी धीरे धीरे डिफ़िकल्ट होने लगी, बिकॉज एक तो वो इतनी सारी मनी ओवर द ईयर्स किसी के ऊपर वो स्पेंड कर रहा है। बट दिस सैडली दिस मैन ही डेवलप्ड कैंसर एंड ही वॉज अप्रोचिंग रिटायरमेंट एंड इवेंचुअली हैड कंसर्न्स रेज्ड अबाउट डिमेंशिया एज वेल। स्कैम फाइनली स्टॉप हुआ जब उसकी बेटी ने उसके फाइनेंसिस के ऊपर कंट्रोल करना शुरू किया इन अर्ली 2024 एंड पेमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट किया। द वुमेन हैज सिंस एडमिटेड कि जो रिलेशनशिप था वो अ डिसेप्शन एंड शी इज नेवर इंटेंटेड टू मूव टू डनेडन। अब तो भाई 18 ईयर्स हो गए, अब तो वो क्या ही मूव करेगी वहाँ पे। बट या ऐसे स्कैम्स यहाँ पर भी होते हैं। सो She pleaded guilty to representative charge by obtaining, you know, deception ka. But इसे sentence किया जाएगा Feb 2027 में। पुलिस जो है अभी भी इसकी और investigation कर रही है। Well, आपके साथ कभी हुआ है scam? Not necessary इतना बड़ा कोई scam. As in small amount में भी आपके साथ कभी scam हुआ है कि आपने अभी recent हुआ था ना कि online insta पे होता था कि अगर आप इसमें invest करो तो आपका मनी इतना हो जाएगा, बिटकॉइन वो सब चीज़ों का स्कैम बहुत ज़्यादा था, जहाँ पे आपकी फ्रेंड्स की प्रोफाइल हैक हो रही थी एंड वहाँ पे स्टोरीज देख के यू वॉज फॉलोइंग फॉर इट। एंड और भी बहुत सारे स्कैम्स रिसेंट तो न्यूजीलैंड में हुए हैं। क्या आपके साथ कभी कोई स्कैम हुआ या फिर आपको स्कैम हुआ करने के लिए किसी ने कॉल किया लेकिन आप हुए नहीं, कन्वर्सेशन कहीं और ही टर्न हो गई? तो अगर आपका कोई स्कैम वाला एक्सपीरियंस है यहाँ पे तो आप उसको शेयर कर सकते हैं यहाँ पे 5599 पे या फिर कॉल करके 0800 हम पर, अगर आपको किसी ने कभी स्कैम करने की कोशिश की है। वैसे ये जो स्कैम करने की कोशिश करते हैं इनकी बहुत ही थ्रेटनिंग वॉइस होती है, जब फ़ोन जो करते हैं बहुत ही थ्रेटनिंग वॉइस में फ़ोन करते हैं कि यू नो जो पर्सन है वो उसको थोड़ा डरा ही देते हैं, भाई तुम अब फंसने ही वाले हो। तो ऐसे कई बार स्कैम्स होते हैं। फंसने से याद आया रुजबे आ गया यहाँ पे। गुड आफ्टरनून रुजबे,
1: गुड आफ्टरनून सैंडी, मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो यार?
0: बढ़िया बढ़िया, कहाँ फंसे हुए हो तुम?
1: फंसे हूँ क्या?
0: इतना लेट हुए तुम। हाँ, देखा फंसे ही हुए थे कहीं।
1: आप क्या बात कर रहे थे यार, कुछ 80 ईयर ओल्ड के बारे में कुछ बोल रहे थे ना,
0: 60 ईयर ओल्ड के बारे में बात कर रही थी मैं। अच्छा। तो ये बंदे ने ओवर 18 इयर्स एक रोमांटिक रिलेशनशिप में था ऑनलाइन, मोर देन $500,000 की ट्रांजैक्शंस हुई, इसने ट्रांजैक्शन वन वे ट्रांजैक्शन हुई। एंड वो बंदी ने बोला गोल्ड कोस्ट में है एंड एवरीथिंग, वो ऑकलैंड में ही थी, रेंट फ्री रह रही थी इसके पैसों से, शॉपिंग कर रही थी, खाना खरीद रही थी, एवरीथिंग।
1: क्या बात है, ऑकलैंड ही ऑकलैंड में कर लिया,
0: ऑकलैंड में ही। हाँ, बट थिंग इज कि न्यूजीलैंड में रह के ये स्कैम किया, और ये बंदे को कभी एहसास ही नहीं हुआ 18 इयर्स में, कभी मिला ही नहीं।
1: 18 इयर्स,
0: दैट्स व्हाट आई एम शॉक्ड अबाउट,
1: दैट्स अ लॉट ऑफ कमिटमेंट यार,
0: इट इज
1: या
0: 18 इयर्स, मतलब बंदी ने कितना किया होगा स्कैम की, वे इतना कन्विंस किया होगा।
1: स्कैम नहीं किया यार, बंदी ने सपोर्ट प्रोवाइड किया ना यार 18 इयर्स के लिए, और उसके लिए फीस चार्ज की है उसने।
0: Yeah, in other language, but उसने एडमिट किया डिसेप्शन का।
1: अब ठीक है ना, अब 18 इयर्स, कम ऑन यार, 18 इयर्स में तो
0: वो अपनी चीजें थोड़ा कमिट करके बैठी थी, अपना जो उसको करना है वो तो वो कर रही थी, वो सिर्फ ऑनलाइन चैट कर रही थी उससे, ऑनलाइन बातें कर रही थी उससे।
1: हाँ, बट उसमें अभी किसी को वैल्यू मिल रहा था, उसके साथ नहीं होगा और कोई ये बात करने वाला, तो ये लड़की कर रही थी उसके साथ बात, तो वो सर्विस प्रोवाइड कर रही थी और उसके लिए फीस चार्ज कर रही थी।
0: ट्रांजैक्शन तो उसके वकील बन जाओ।
1: मैंने क्योंकि
0: शायद केस उसका
1: नहीं, क्योंकि
0: थोड़ा वैल्यू आ जाए उसमें।
1: नहीं, क्योंकि 18 साल तुम बोल रहे हो कि वो 18 साल डिसेप्शन किया उसने। यार देखो, स्कैमर को पकड़ने के तुम फंस सकते हो एक हफ्ता, दो हफ्ता, छह महीना, एक साल, दो साल, 18 साल कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अगर 18 साल है तो मतलब कमिटमेंट किया है ना बंदी ने भी।
0: वैसे एक का मैसेज आया कि आई गॉट कॉल केबीसी सिलेक्टेड इन 2013-2014, लकीली मनी वाज नॉट इनफ इन माय अकाउंट सो आई गॉट सेव्ड। जमतारा सीजन 2।
1: तो क्या उसमें ऐसा हुआ था जमतारा सीजन 2 में केबीसी का कॉल?
0: मैंने नहीं देखा जमतारा,
1: मैंने भी सीजन 2 नहीं देख पाया मैं, क्योंकि सीजन 1 देख के मेरे को बहुत ट्रॉमा हो गया। सीजन 2 नहीं देख पाऊंगा मैं अभी।
0: सो या, ये तो सही है यार, ऐसा किसी को कॉल आ जाए, तुम्हें कॉल आ जाए कि तुम भाई समीर आर्या के शो में ऐसा एंट्री, क्योंकि रजिस्टर करते रहते हैं, तुम वहां पे ऑडियंस हो, क्या करोगे तुम?
1: तो उसके
0: एक
1: पैसे
0: पल के लिए सोचोगे ना,
1: पैसे थोड़ी पे करने होते उसके लिए।
0: ऐसे नहीं, उसके बारे में तुम्हें बोलेंगे तुम्हें टिकट के लिए तुम्हें पे करना पड़ेगा, आ जाओ, क्या करोगे?
1: पहले तो मुझे फ्लाइट की टिकट बुक करनी पड़ेगी ना,
0: वही
1: मेरे तो अलग ही से आप पे चल रहे जिंदगी में।
0: ओके।
1: और प्रॉब्लम क्या है, मैं चाहे कितना भी पैशनेट हूँ कोई भी चीज को लेकर, मुझे पैसों की बहुत ज्यादा वैल्यू है।
0: Yeah.
1: तो कहीं पे भी पैसे देने का अगर बात होता है, अगर आप मेरे को बोलोगे ना कि समय रहना आ रहा है उसके साथ फोटोग्राफ के लिए इतना पैसा लगेगा, तो मैं बोलूंगा नहीं चाहिए भाई।
0: फोटो नहीं चाहिए, फोटो खींचने का मौका पिछली बार भी था लेकिन नहीं गए थे।
1: नहीं, कुछ
0: भी नहीं,
1: कुछ भी हो, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि पैसे खर्चे करने की जहाँ पे बात आती है तो मेरे ऐसे वो इंडिकेटर ऑन हो जाते हैं, एंटीना हो जाते हैं चालू कि यार
0: कुछ तो गड़बड़,
1: कुछ हो सकता है गड़बड़। So that, and I think that has to be a mindset that everyone should have. When it comes to spending money, you should always have your guardrails.
0: Yeah, you should be very careful. So anyway, आपका कोई experience है आप भी share कर सकते हैं message करके या फिर call करके यहाँ पे थोड़ी देर में, and 5 बजे के बाद remember today is
1: character guess. Yeah.

0: वो दिन जब मोहब्बत खत्म में होती थी।
1: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: रिवाइंड सिर्फ रोवा पर।
1: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
2: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
1: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
2: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
1: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
3: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.

0: alcohol bana de.
1: Brought to you by Lifestyle Furniture, Manukau, Mount Wellington and Westgate. Up to 60% off on now.
2: You're listening to Hum Playing Bollywood's Biggest Hits. आपके लिए यहाँ पे एक से गाने लेकर आते हैं और आज remember 22nd of September है. आज का दिन खास है अगर आपके लिए तो हमें जरूर बताइएगा. And we'd love to, you know, celebrate along with you.
3: Yeah, और वैसे इसी फ्राइडे को हम कीर्तन संग्रह की रिकॉर्डिंग होने वाली है वैदिक सेंटर में 7 PM onwards. तो हम की टीम को वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं. एंट्री एकदम फ्री है. You will have the opportunity to win the prizes as well. So, वहाँ पे आप ज़रूर पहुँचेगा experience लेने के लिए. And साथ ही साथ रूस में एक बहुत ही important information about Asian Family Services. कई बार बहुत normal होता है low feel करना, जैसे कि weather change होता है यहाँ पे. Pay attention to your feelings. Reach in and check how you're doing. Reach out and talk to a trusted professional. Support available होती है Asian Family Services में. एशियन हेल्पलाइन को आप कॉल कर सकते हैं ऑन 0800-862-342 फ्री कॉन्फिडेंशियल मेंटल हेल्थ सपोर्ट के लिए. अगर आप या कोई जिसे आप जानते हैं इमीडिएट डेंजर में है तो आपको 111 या एमरजेंसी सर्विसेज पे कॉल करना है.
2: आज स्कैम्स के बारे में बात कर रहे हैं तो काफ़ी मैसेजेस हमें आए हैं यहाँ पे. कुछ लोग काफ़ी इन्जॉय करते हैं एक्चुअली स्कैमर्स के साथ बात करने में.
3: या
2: एक मैसेज है, आई रियली एन्जॉयड द कॉल फ्रॉम स्कैमर्स. आई ऑलवेज गिव दम रॉन्ग बैंक अकाउंट नंबर एंड नेम एज एंड ऑलवेज प्ले लाइक आई एम वेरी सैड, कैन सेंड मी सम मनी, आई एम डिप्रेस्ड और ऐसी सारी चीज़ें वो बोलते हैं और फिर वो हैंगअप कर देते हैं स्कैमर जो है वो.
3: ये सही है, स्कैम वाले आपको परेशान करते हो उल्टा उसको परेशान करो.
2: लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि ये बहुत रिस्की है क्योंकि काफ़ी बार क्या हो सकता है कि दे आर ट्रेंड हर काफी ऐसे चीजों में, मतलब स्कैम करने में वो काफी उनका ट्रेनिंग, उनको काफी स्क्रिप्टिंग होती है.
3: अनलेस ऐसा फोन कॉल है जहाँ पे वो होता नहीं है कि इतना टाइम आपने फोन कॉल पे बात की तो उनको फायदा हो रहा है कुछ, समथिंग लाइक दैट. ऐसा भी तो कुछ होता है.
2: और ऐसे भी होता है ना कि मेरे को मतलब अभी पता नहीं है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का इन्फॉर्मेशन है पूरा कि फोन पे तुम रहते हो तो तुम्हारे फोन पे बैंक अकाउंट होते हैं तो उससे तुम्हारे वो लोग डिटेल्स ले लेते हैं, कुछ होता है पता नहीं, आई डोंट नो क्या होता है.
3: बेसिकली इतना एंटरटेन करना नहीं चाहिए.
2: टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई अभी तो रिस्क लेना आई डोंट नो इफ इट इज वर्थ इट. बट रूपशि का भी मैसेज है, वन डे समवन सेड दे आर कॉलिंग फ्रॉम गूगल. It was a scam. I had a fight with my husband that time and I replied angrily. Said, don't bother me. I'm busy now.
3: ये स्कैमर भी डर गया होगा कि भाई इसको तो रहने ही दो आज.
2: मेरे को क्यों तोड़ा. बढ़िया. आप भी अगर ऐसे कोई किस्से रहेंगे शेयर करने के तो प्लीज जरूर यहाँ पे शेयर कीजिए. 5599 इज द नंबर फॉर यू टू मैसेज एंड ड्राइव इज द कीवर्ड जिसके साथ आप हमें यहाँ पे मैसेज कर सकते हो.

0: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe. Massive home show deals available in store now. Only at Beds R Us Manukau and Pukekohe. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
1: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
2: थ्रोबैक का टाइम आ गया है और मैं आपसे अब ये विनती करना चाह रहा हूँ कि पिछले दो टाइम से सैंडी ने जब भी ट्यूसडे के दिन पे हेल्प मांगी है, सजेशंस मांगे हैं फॉर कैरेक्टर गेस्ट, तो उसको इंस्टाग्राम पे लोगों ने जाके मैसेज कर रहे हैं कुछ ऑप्शंस एंड यू नो थिंग्स. आज मैं मांगना चाह रहा हूँ यार, मुझे भी थोड़ी मदद की ज़रूरत है.
3: आज रुजबे को हेल्प चाहिए, बिकॉज 5 बजे के बाद जो कैरेक्टर गेस्ट वो करने वाला है, उसमें आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे रुजबे को कि क्या करना चाहिए? रुजबे अंडरस्कोर द बाबा, ये उसका इंस्टा हैंडल है. RUZBEH अंडरस्कोर द बाबा, BAWA इज़ अ बाबा. सो ये आपको वहाँ पे जाइए और मैसेज कीजिए रुजबे को. यू हैव टू चेक योर रिक्वेस्ट मैसेजेस, कई बार वहाँ पे अटके रहते हैं मैसेजेस ना.
2: मैं चेक करूँगा पक्का.
3: तो या वहाँ पे जाके मैसेज कीजिए, जिन्होंने मुझे मैसेज किया था मे भी उसको मैसेज कीजिए. Not the same one, different one.
2: कुछ अलग जो पहले नहीं request, मतलब जो पहले नहीं suggest किया गया Sandy को,
3: वो suggest करो actually में. And also this coming Thursday, I know आपको इंतजार होगा कि election special में हम क्या करने वाले हैं. इस बार election special में हम एक party के कह सकते हैं कि representative से ही बात करने वाले हैं एंड उन्हीं की पॉलिसीज़ के बारे में, काफ़ी चीज़ों के बारे में इन डेप्थ, जो हमारी साउथ एशियन कम्युनिटी को चीज़ें अफेक्ट करती है डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, उनके बारे में बात करने वाले हैं. सो स्टे ट्यून, थोड़ी देर में इसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन आपको हम प्रोवाइड करेंगे.

0: accurate traffic.
1: Curtin Studios Massive Madness sale on now.
2: Clear overnight, a low of 12 on the northern. It's heavy from town to Northcote Road, taking an hour to Silverdale. On the northwestern to Massey, 44 minutes. Slow from Spaghetti Junction to Rosebank. The southern to Manukau, 45 minutes, just over an hour to Drury. It's heavy heading north from Highbrook Drive to Green Lane. South from Newmarket to Sylvia Park. Southwestern very heavy in both directions between the southern and Mangere Bridge.
1: Free curtain making, half price custom blinds, and up to 50% off ready-mades. Visit Curtin Studio today.
3: Suno, aaj fir property agents ka phone aaya. Ghar bechne ko keh rahe the.
4: Bechna to kabhi bhi bech sakte hain, lekin market mein utna milega nahi. Develop karna behtar lagta hai, par paison ka dar hai.
3: Isi liye NZPMI se baat kar lo. Wo feasibility dekhte hain aur planning se funding tak sab sambhal lete hain.
5: Har property bechna zaruri nahi. Aapki zameen ki asli value uske development mein ho sakti hai. Aaj hi NZPMI ke Paul se baat kijiye. NZPMI, together we build success. Call Paul on 0800-4-NZPMI.
6: Indulge in the sumptuous flavors of South Asia at Sudima Auckland Airport's popular food festival. Their specialist chefs are preparing an exquisite buffet from India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal and more. Gather your family and friends for a memorable evening of food and fun this Labor weekend, 24th and 25th October. Early bird tickets just $75 per person with a welcome drink included. Kids 6 to 12 half price, under 5s free. Book now at sudimahotels.com/foodfestival.
7: The Specsavers Specstraver Games at Storewide sale is on now.
8: Phew, bit of a tongue twister, hey?
7: Get any two pairs of glasses Storewide, even designers, for only $299. Save up to $200. Hurry, offer ends October 3. Should have gone to Specsavers. Include single vision lenses, conditions apply.
9: At Woolworths, we're helping you get more value every day. Like Pix peanut butter, 380 gram, just $3.89 each. And loose avocados, just 99 cents each. That's the fresh food feeling. T's and C's apply.
10: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ बोली बस मेरा फोकस है
11: हाँ। अच्छा
10: बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं
11: मिसेस सिंह
12: अरे पम्मी जी मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने
13: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन फोकस किचन यूनिट के 33 वॉन्सली रोड ओटाहुहु कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz
14: Auckland, are you emergency ready? If the unexpected strikes, do you know what to do? Make an emergency plan this daylight saving weekend. Brought to you by Auckland Emergency Management. Make your plan at aem.govt.nz.
15: Time check.
16: Brought to you by Maan Tyres. For all kinds of tyres and mechanical services, open 7 days. Call Maan Tyres on 0800-00010.
15: To you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
17: Good evening, I'm Bridget Hasty with the latest at 5. The Education Minister is being urged to take responsibility for a senior official who warned staff about not leaving an OIA-able paper trail. Labor MP Jenny Anderson says the buck stops with Erica Stanford.
18: She has got a person clearly now broadcast on platforms showing that there was a process and a culture in place designed to undermine democracy.
17: Erica Stanford says the matter does fall short of expectations, but it is being dealt with.
19: I am confident that the Secretary of Education has got the issue in hand. Yesterday, she alerted immediately the Public Service Commissioner, the Ombudsman. She's now undertaking an internal review and an employment process.
17: A past Sport Fishing Council president believes new Tariki catch limits don't go far enough. Scott McIndoe says East Coast fisheries are in distress and need a complete break to regenerate.
20: It's really sad to see such a soft decision on Tariki. What an opportunity it was for the minister to show some real strong leadership.
17: Two youths are in custody after a number of car break-ins in Christchurch's Hallswell today. A helicopter and road spikes were used to help catch the alleged offenders. And Torpedo 7 is recalling a camping extension cord as it may have been wired backwards. More details are on the product safety website. To Rugby with All Blacks Travel and Hospitality.com, a major summit is coming on Thursday as New Zealand Rugby looks to tighten its cost base. It's understood a number of provincial unions are backing the replacement of Super Rugby Pacific with a full local competition. And All Black Lester Fainganuku is reportedly back from injury and will be on the bench for Tasman against Bay of Plenty in Thursday night's NPC clash. He hasn't played since the Super Rugby Pacific semi in June.
15: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
0: World's best hamari good brands nahi hai.
15: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
21: वेदर का हाल आज काफ़ी कमाल, वैसे थोड़ी बहुत बारिश हुई और फाइन स्पेल्स जो डेवलप होने वाले साउथ वेस्टलीज का साथ रहेगा। 6:18 पे आज होगा सनसेट एंड फील्स लाइक 14 डिग्रीज राइट नाउ। ओवरनाइट टेम्परेचर्स गोइंग टू बी एज लो एज 11 डिग्रीज टुनाइट।
22: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe. Massive home show deals available in store now. Only at Beds R Us Manukau and Pukekohe and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
23: Power Drive at 5.
15: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen. Drive Show with Sandy and Rusby.
24: मस्ती करेंगे, मौज काटेंगे, गर्दा पार देंगे।
21: 5:03, you're listening to The Drive Show with Sandy and Rusby on the 22nd of September. Hi Sandy, good evening.
1: Good evening Rusby, कैसे हो तुम?
21: मैं बढ़िया, आप कैसे हो?
1: First class. So, थोड़ी देर में रेडी हो या फिर अभी रेडी हो?
21: हाँ, थोड़ी देर में कैरेक्टर गेस खेलते हैं, लेकिन अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे करनी है। आज एक बहुत ही खास पर्सन अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मेरे को उनको विश करना है पर्सनली। आज अमिता आंटी अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है।
1: अमिता आंटी, अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू।
21: हैप्पी बर्थडे टू यू। आपके बेटे, बहू, ग्रैंड डॉटर, आपके पति, उनको नहीं भूल सकते। इन सभी की ओर से आपको ढेर सारी बधाई आज के दिन की। विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे।
1: तो उनके बच्चों का नाम नहीं लेना?
21: बच्चों का नाम लू क्या मैं?
1: क्योंकि मुझे ऐसे नहीं पता।
21: आपको नहीं पता चला ना? अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ। तो इनके इनके लड़के का नाम है तीर्थ।
1: ओह अच्छा।
21: बहू का नाम है हिमानी।
1: या।
21: और उनकी ग्रैंड डॉटर का नाम है आन्या।
1: या।
21: और उनके हस्बैंड का नाम है क्रिनेश। और उनके बहुत ही खास जो उनके मतलब बेटे समानी है रवि, रुजबे, मशीन और हम सब की तरफ से, और भी जो भी हमारे जो साथी दोस्त सुन रहे हैं।
1: शी इज अ वंडरफुल कुक बाय द वे। मैंने रिसेंटली खाया है मैंने, और बहुत ही अच्छी कुक है वो। इनफैक्ट वो जो नहीं हम लेके आते हैं बाजार से मुखवास खाने के बाद खाने के लिए,
21: हाँ हाँ।
1: वो भी वो घर पे बनाती हैं।
21: यस,
1: सो वंडरफुल कुक एंड वेरी वार्म लेडी आई विल से।
21: अरे वेरी
1: फीलिंग, या वेरी नाइस लेडी।
21: यस,
1: सो हैप्पी बर्थडे टू यू।
21: हैप्पी बर्थडे आंटी, एंड आई होप आपका जो अभी दिन है, आज उनका एक्चुअली में फाइनल डे भी है यहाँ पे।
1: ओह या,
21: तो वो काफी इमोशनल सीन है हमारे लिए।
1: या,
21: सो या होप जल्दी मुलाकात होगी ना।
1: या
21: लेकिन हाँ, हैप्पी बर्थडे। आपका भी अगर आज खास दिन है तो आपको भी बहुत सारी बधाई आज के दिन की। हैप्पी बर्थडे,
1: वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू एज वेल।
21: विद दैट, कैरेक्टर गेस इज कमिंग टू यू वेरी सून। कैरेक्टर गेस में आज हमें यहाँ पे हमें एक लिसनर ने एक्चुअली भेजा है। थैंक यू सो मच, रियली मीन्स अ लॉट। आपको भी उन्होंने ही भेजा था क्या मैसेज?
1: क्या नाम है?
21: मैं बताता हूँ, एक्चुअली वही थे, वही है मुझे लग रहा है जिन्होंने आपको भी मदद की थी। मुझे यहाँ पे मैसेज आया है सुनील राज का।
1: Yes, इन्होंने मुझे एक बार भेजा हुआ है।
21: सुनील राज, थैंक यू सो मच, आपने जो यहाँ पे भेजा है मैं उसके ऊपर ही मेहनत कर रहा हूँ। आप आंसर मत देना, लेकिन यहाँ पे थोड़ी देर में आपके लिए यहाँ पे कैरेक्टर गेस। यू आर लिसनिंग टू हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स, एंड राइट नाउ इट इज नन अदर देन द मैन जिसने 92,000 लोगों को एक साथ किया, दिलजीत दोसांझ आपके लिए।

0: बैट्स ऑफ बॉलीवुड का ये गाना ओनली ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. अभी रिसेंटली एक साल कंप्लीट किया ना बैट्स ऑफ बॉलीवुड ने.
1: Oh yeah, last year इसी टाइम के अराउंड आई थी ये.
0: जी बट अभी टाइम आ गया है. कैरेक्टर गेस. ऑलराइट, कैरेक्टर गेस होता ये है जहाँ पे हम आपके लिए पांच हिंट, मैं यहाँ पे पांच हिंट आपके लिए लेकर आऊंगा और आपके पास पांच सवाल है.
1: हमारे पास फाइव सवाल रहेंगे.
0: यस नो सवाल होंगे
1: और ये सवालों में और इसके रुजबे के हिंट्स में हमें पता करना है कि रुजबे ने किस करेक्टर के बारे में सोच के रखा है. विच कैन बी अ पॉलिटिशियन, हीरो, बॉलीवुड, हॉलीवुड, कैन बी एनीवन.
0: सो अभी सीन ये हुआ है कि मुझे मालूम है कि लोग बहुत गूगल यूज करते हैं, तो मैं अभी हिंट्स थोड़े और पेचीदे करने वाला हूँ.
1: ऐसा नहीं रुजबे, एक बात मैं तुम्हें पहले ही बोल दूं, अगर तुमने बोला ना कि ये बचपन में आइसक्रीम नहीं खाते थे, ये बचपन में लुंगी पहनते थे, तो ये सब नहीं चलेगा. समझ रहे हो, हिंट थोड़े बढ़िया देने पड़ेंगे जो मतलब किसी की पर्सनैलिटी बताएं.
0: अच्छा ठीक है.
1: या
0: चलो ठीक है, मैं शुरू करता हूँ फिर अभी. ठीक है,
1: द फर्स्ट वन,
0: फर्स्ट हिंट दे दूं मैं.
1: या
0: पहला हिंट ये है कि मैं जितना सिंपल दिखता हूँ मेरी कहानी उतनी सिंपल नहीं है.
1: ये जितना सिंपल दिखाई देते हैं
0: ये उनकी कहानी उतनी सिंपल नहीं है.
1: सो दिस इज समवन हु लुक्स वेरी सिंपल, मतलब उनकी पर्सनैलिटी भी इससे ये रिफ्लेक्ट होता है. कैन सी कि उनकी पर्सनैलिटी देखने में, उनके कपड़े देखने में ज़्यादा महंगे नहीं लगते हैं, सिंपल दिखाई देते हैं. एंड
0: इतने से लाइन में आपने कितना कितना ज्यादा अपने डिटेल में चले गए आप यार.
1: डिटेल में जाना जरूरी है ना एक ही लाइन में.
0: मैंने बोला क्या इतना सब कुछ, लेकिन आप वो सोच रहे हो तो अच्छी बात है.
1: वही ना, आई एम थिंकिंग आउट लाउड ताकि हमारे लिसनर्स हमारे साथ कनेक्ट करें. एंड आप कॉल करो मुझे यहाँ पे 800-00 हम पर. जितनी सिंपल लुक है उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड लाइफ रही है बेसिकली, ऐसा कुछ ना, उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रगल रही है इनका, ऐसा है. इनकी लुक बहुत सिंपल है लेकिन ये सारे वर्ड्स बहुत भारी
0: है. ये सारे वर्ड्स आप ऐड कर रहे हो लेकिन ठीक है. ठीक है, जो जो आप आपको लगे सही ही.
1: या
0: 0800-048-66
1: अबाउट समवन हु लुक्स रियली सिंपल, डाउन टू अर्थ, शुड बी द पर्सनालिटी.
0: बढ़िया खेलते हो आप ये गेम. अच्छा
1: एनीवेज, सो गाइस
0: सैंडी को कंफ्यूज कीजिए यहां पे कॉल करके, थोड़ा
1: कंफ्यूज करो यहाँ पे, सुलझाओ.
0: आई मीन मदद कीजिए सैंडी की यहाँ पे कॉल करके.
1: तो मेरा पहला सवाल,
0: अरे पहला सवाल भी आ गया, क्या बात है यार, वेरी गुड.
1: तो मे बी तभी बाकी लोग आगे थोड़ा बढ़ेंगे.
0: हाँ,
1: सो द पर्सन यू आर टॉकिंग अबाउट, इज दिस पर्सन बिजनेसमैन?
0: इज दिस पर्सन बिजनेसमैन? नो,
1: दिस पर्सन इज नॉट अ बिजनेसमैन.
0: नो.
1: ओके, सो दिस पर्सन बिजनेस से नहीं है. तो अगर आप सोच रहे थे सिंपल लुक वाला मार्क ज़करबर्ग या ऐसा कोई, तो वो इसमें नहीं फिट बैठता है. मेरे पास आंसर आया आमिर खान. आमिर खान की सिंपल लुक कैसे है?
0: आमिर खान भी सिंपल है एक्चुअली, मैं देखा जाए तो
1: इतना कोई सिंपल नहीं रहता है वो.
0: नहीं सही बोल रहे हो फिर.
1: तो तुमने क्या बोला? सिंपल येट
0: जितना
1: सिंपल ऊपर से दिखाई देते उतना है नहीं.
0: हाँ, जितना तो मैं जितना सिंपल, मैं जितना सिंपल हूँ दिखता हूँ मेरी कहानी उतनी सिंपल नहीं.
1: कहानी डिफिकल्ट है, राइट? ओके.
0: उतनी सिंपल नहीं,
1: वही मतलब डिफिकल्ट है ना.
0: ओके ठीक है,
1: जितने सिंपल दिखाई देते हो. ये अरिजीत तो नहीं है? क्योंकि अरिजीत होता है ऐसा जो चप्पल पहन के कहीं पे भी चला जाता है, बड़े बड़े अवार्ड शोज में वो चप्पल पहन के गया हुआ है. सो अरिजीत भी हो सकता है, यू नो दिस, इफ दिस इज नॉट अ बिजनेस पर्सन, तो वो तो वहाँ से निकल ही गया. कम ऑन गाइज, आप भी सोचिए थोड़ा,
0: सोचिए यार थोड़ा, और
1: यार थोड़ा हिंट दीजिए यहाँ पे, मेरी हेल्प करो यहाँ पे. 0800-00 हम थोड़ा साथ में मिल के सोचते हैं तभी तो कहीं पर पहुँचेंगे हम. सिंपल दिखाई देते हैं, डिफिकल्ट कहानी है, एंड दिस पर्सन इज नॉट अ बिजनेस पर्सन. इतना मैं 100% आपको कह सकती हूँ कि ये मेल है.
0: मेल है ये.
1: हाँ
0: ठीक है,
1: वो बिना पूछे ही पता चल गया कि ये मेल है.
0: मैंने दूसरा हिंट आपको दे दिया ना, मेल है ये.
1: ये तुमने कोई हिंट नहीं दिया. नहीं नहीं नहीं,
0: ठीक है,
1: ये पता चल गया हमें बातों से ही. सो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन नहीं है ये.
0: चलो एक और हिंट दे दूं क्या?
1: ओके सेकंड हिंट
0: दे दूं.
1: हाँ,
0: मेरी खामोशी भी कभी कभी डायलॉग बन जाती है.
1: मेरी खामोशी भी कभी कभी डायलॉग बन जाती है.
0: अभी सोचो मेल है कि फीमेल है.
1: है तो मेल ही.
0: अच्छा,
1: ना
0: ठीक है.
1: मेरी खामोशी भी कभी कभी डायलॉग बन जाती है. पंकज त्रिपाठी तो नहीं है ये, उनका सर हिलाना भी डायलॉग बन जाता है.
0: You are going on a right track, I would say.
1: Hmm.
0: You are going on the right track. Like, hmm. You are very, very close.
1: ये confuse भी कर सकते
0: हैं. नहीं, मैं अभी यार genuine बोल रहा हूँ यार. But आप मैं यहाँ पे message कीजिए, drive लिखकर भेजिए यहाँ पे 5599 पे. And you can send in your क्या बोलते हैं उसको? आपको क्या लगता है?
1: तो तुमने क्या बोला था? खामोशी भी
0: dialogue
1: बन सकती है.
0: हाँ बोलो ना, बोलो, आप बोलो, मैं नहीं बोलने वाला हूँ. क्या मैसेज आया? आप बोलोगे, मैं नहीं बोलूंगा.
1: नाना पाटेकर.
0: अच्छा नाना पाटेकर, एक और मैसेज आया ना लेकिन.
1: हाँ नरेंद्र मोदी भी आंसर आया है. इरफान खान भी आया है. इरफान खान को तो आंखों की बात है.
0: हमारे देखो एक्टिव कैरेक्टर गेस्ट के सपोर्टर. वेलकम टू द शो, कैसे हो आप?
2: कैसे हाल है सबके?
0: बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया.
1: क्या लग रहा है?
0: क्या लग रहा
2: है? शख्स एक्टर है और इनका नाम एन से शुरू होता है.
1: अच्छा, आपको कौन लग रहा है, आप बता सकते हो?
2: नवाजुद्दीन सिद्दीकी.
1: मुझे ऐसा लगता ये हो सकता था क्योंकि वो अभी आया ना समीर के शो में.
0: यार सैंडी यार,
1: क्यों ऐसा?
2: सब मिस्ट्री रही है. हाँ, पर्सन खामोशी में भी डायलॉग है, कैन फिट द बिल.
1: या और क्या है ना कि बिजनेसमैन नहीं है, खामोशी भी डायलॉग बन सकती है. उनके ऐसा कुछ रहे हैं एक्सप्रेशन, सिंपल तो बहुत ज़्यादा है. वो अभी लेटेंट में भी आए थे, आपने देखा है? वो
0: ऐसे सब मत बोलो रेडियो पे यार, ये सब नहीं अलाउड है बोलना.
1: अरे तुम्हें अलाउड है. ओके, नवाजुद्दीन सिद्दीकी आपको लग रहा है, तो ये नाम ना ऐसा करते हैं मंदीप, साइड पे रखते हैं और हिंट सुनने के बाद ना और सवाल पूछने के बाद लेट्स सी कि ये फिट होता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी के नहीं है ना. ठीक है,
0: थर्ड हिंट दे दो क्या? मेरे को लग रहा है दिस इज अ परफेक्ट टाइम टू गिव यू द थर्ड हिंट आल्सो.
1: ऐसा लग रहा है तुम्हें?
0: हां,
1: मैसेजेस नहीं सुनाओगे पहले? ओके चलो ठीक है,
0: थर्ड हिंट दे देता हूं.
1: दे दो
0: एक्चुअली मैसेजेस सुन लो, उसके बाद थर्ड हिंट देता हूं मैं. या दे दो हिंट.
1: अभी दो हिंट.
0: तो बेसिकली इनको देख के लोग, कुछ लोग बोलते हैं कि कभी कभी लगता है यही भगवान है.

0: Finance, Ants Funeral Home, Zeal Group, Perfect Panel Beaters and Paint Limited, Port Poles Supermarket Newlyn, Namaste New Zealand Immigration Services, Indelible Homes, Gem Entertainment, Tradeworks Group, Classic Automotive Solutions Limited, Malolo Rentals and Tours, or AAA Signs. जानकारियों के लिए हम सुनते रहें.
1: Hum, accurate traffic.
2: Crackerjack Mount Wellington now open.
3: Clear overnight, a low of 12 on the northern. It's heavy from West Haven to Northcote Road. Town to Silverdale taking 52 minutes. On the northwestern to Massey, 36 minutes. Slow from Mountain View Road to Rosebank. The southern town to Manukau, 44 minutes to Drury an hour. It's heavy heading north from Highbrook Drive to Market Road. South from Grafton to Sylvia Park. Southwestern is slow heading north from Pukenui Road to Mangere Bridge.
2: Deals to blow your mind, not your wallet. Visit Crackerjack's new store in Mount Wellington.
4: डिब्बा खुल गया
5: भरत भाई टिफिन खुल गयो छे
6: संजना का डिब्बा खुल गया
7: जब कशिश स्पाइसेस से खाना बनेगा तो सारे ऑफिस की नजर में रहेगा फिर यही तो होगा
6: डिब्बा खुल गया
7: हल्दी मिर्ची गरम मसाला कशिश मसाले अच्छे वाले बाय एनी कशिश प्रोडक्ट एंड बी इन द ड्रॉ टू विन अप टू $10,000 वर्थ ऑफ कैश प्राइजेस गोल्ड कॉइंस एंड गिफ्ट वाउचर्स टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
2: 3, 2, 1, rush! Rewards Rush is back at BP. Get double everyday rewards points on fuel and shop, plus score 10 times points on selected items. Whether you're fueling up, grabbing a coffee, or stocking up on your favourite snacks, there's more to score at BP. Scan everyday rewards today. Offer ends 13 October. Terms, conditions and exclusions apply. See bp.co.nz/rewardsrush.
8: Spring just got fresher with these great deals at New World North Island this week. Get avocados, 2 for $2.50, or whole chicken legs, $7.99 per kilo. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
9: Professional Financials hai saath aapke loan aur insurance ek chhat ke niche no broker charge bas trusted advice har deal banaye perfect right
10: refinance ke liye compare kare different banks loan process so simple and frank
9: business finance ya income protection ho har step par guidance perfect ho sab kuch milega yahi apna future secure banaye
10: professional financial solutions your future our priority call 09846-9934 or search PFSL T's and C's lending and credit criteria apply
11: Looking to turn business payments into points? With the American Express Gold Rewards business card, you could earn 100,000 bonus points worth up to $750 in Amex travel. Offer ends 14th December 26, 1.5k min spend in first 3 months. New card members only. Membership rewards, T's and C's apply.
12: Are you ready to go home?
13: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us, Manukau and Pukekohe. Massive home show deals available in-store now. Only at Beds R Us, Manukau and Pukekohe. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
14: Power Drive at 5.
15: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen.
16: आज है ट्यूसडे और आज हम आपके लिए कैरेक्टर गेस यहाँ पे लेकर आते हैं मैंने कैरेक्टर के बारे में सोचा है और मैं हिंट दे रहा हूँ सैंडी और आप मिलकर साथ में गेस कर रहे हैं कि मैंने किसके बारे में सोचा है और अब तक क्या क्या मालूम है आपको सैंडी आप बोलो
17: सो फार मेरे मुझे जो पता चला है कि ये जितने सिंपल दिखाई देते हैं उतनी सिंपल इनकी कहानी नहीं रही है ये बिजनेसमैन नहीं है इनकी खामोशी भी डायलॉग बन सकती है और एक और था कि हाँ इनको देख के कईयों को कभी कभी लगता है कि अपुनी भगवान है ऐसा
16: इनको देखकर क्या बोला आपने वापस बोलो
17: काफी लोगों को लगता है ऐसा कि अपुनी भगवान है
16: नहीं नहीं नहीं वो
17: इनके लिए लगता है
16: इनके लिए लगता है
17: कि जैसे यही भगवान है जैसे अपुनी भगवान है ऐसा ओके
16: फिर एक और आपको उसमें ऐड ऑन कर देता हूँ मैं जो मैंने वो क्या बोला मैंने क्या है आपको एक मिनट यहाँ पे कॉल आ रहा है ना कॉल नहीं हो गया ठीक है तो जो बेसिकली वो क्या बोला था मैंने
17: अपुनी भगवान है
16: उससे पहले वाला
17: कि खामोशी
16: हाँ तो बेसिकली उसमें ऐसा है कि मैं डायलॉग बोलता हूँ लेकिन कभी कभी मेरा पॉज ज्यादा फेमस हो जाता है
17: पॉज ज्यादा फेमस हो जाता है
16: कभी कभार
17: चलो ठीक है बात करते हैं कोई कॉल कर रहा था यहाँ पे
16: तो friends,
17: निकल गया कॉल
16: कॉल
17: तो मुझे नहीं लगता ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी है गाइस मैं तुम्हें ऑनेस्टली बोलूँ ये घुमा रहा है वो चीज बोल के अपुरी भगवान है ये नहीं कह रहा कि इन्होंने बोला है ऐसे
16: हाय
17: हाँ
18: हेलो
16: जी नमस्कार
18: नमस्कार जी, कैसे हो?
16: बहुत ही बढ़िया
17: बढ़िया।
16: क्या लग रहा है, कौन है ये?
18: मेरे को लग रहा है जी ये शायद मैं ही हूँ।
17: ऐसा क्यों?
18: क्योंकि ये चारों खूबियां है जी मेरे में।
16: चारों खूबियां है इसमें। चलो ठीक है, तो मतलब आप
17: सही है, तो अपना नाम भी बता दीजिए।
16: आपका नाम भी बताइए ना।
18: संडी जी, आप अच्छे से जानते हो मेरे को।
17: अच्छा
16: मैं क्या बताऊं,
17: मैं
16: आपको एक टिप देता हूं ये टाइम पे, ऐसे मोमेंट पे ना सीधा नाम बोल देने का। क्योंकि उसके बाद हमें रिकवरी करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, आप समझ रहे नहीं हो।
17: हम कितना सोचेंगे भाई, थोड़ा बता दो नाम क्या है।
18: मान बोल रहा हूं संडी जी।
17: मान, ओ मान, या हमारे कॉलर जो बहुत पहले आप कॉल किया करते थे, है ना?
18: दी, दी, दी, दी,
16: अरे मान साहब, क्या बात है, इतने टाइम बाद आप कॉल कर रहे हो यार, मजा ही आ गया आज आपका आवाज सुन के।
17: अरे आपने खुद को भगवान ही बना दिया, अपुन ही भगवान है।
18: अपनी नजरों में तो हूँ जी।
16: क्या बात है,
17: सही
16: तो
17: है।
16: आप भी फिर वो नाना पाटेकर की तरह आईने में देख कर ऐसे खुद की आरती ऐसा करते हो क्या?
18: नहीं, उसका वो मेमे वाला मेरे को काफी पसंद है, वो जो चाय पीता है ना, वो कुछ फनी सा हो जाता है, तो वो ऐसे वाला।
16: हाँ वो वाला, वो हंसता है ना, वो वाला, वो वेलकम।
18: हाँ
16: वेलकम
18: जी, हाँ जी।
16: का, हाँ
18: हाँ वेलकम का जी।
16: राइट राइट,
18: आपका ही
17: नाना पाटेकर भी हो सकता है वैसे ये।
16: अच्छा
17: ठीक है, चलो अगला सवाल पूछते हैं। ठीक है मान,
16: तो मान आपके पास है कोई, मतलब और कोई है कुछ?
18: और मेरे को नवाजुद्दीन ही लग रहा था जी।
16: नवाजुद्दीन लग रहा है आपको
18: भी?
17: ठीक है,
16: थैंक यू सो मच,
17: थैंक यू। सो फार जो हमारे पास यहाँ पे आंसर्स आए हैं वो है पंकज त्रिपाठी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मनोज बाजपेयी, देन इरफान खान, नाना पाटेकर, नरेंद्र मोदी, आमिर खान। मतलब काफी लोगों ने डिफरेंट आंसर्स एक्चुअली में यहाँ पे भेजे हैं, विच इज अमेजिंग। सो रुजबे, नहीं आप तीन हिंट दे दिए ना तुमने,
16: दे दिया मैंने। हाँ,
17: अगला सवाल, मैंने अभी एक ही सवाल पूछा है।
16: ओह नो, क्या बात कर रहे हो।
17: तो मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है, क्या ये जो पर्सन है ये एंटरटेनमेंट की फील्ड से है?
16: क्या ये पर्सन एंटरटेनमेंट की फील्ड से है? यस जी, हाँ जी।
17: तो ये मतलब ये पॉलिटिशियन नहीं है?
16: क्यों, पॉलिटिक्स भी एंटरटेनिंग हो सकता है?
17: नहीं नहीं नहीं, दैट्स अ डिफरेंट फील्ड। नो, वी कैन नॉट डू।
16: अच्छा ओके,
17: हम अपनी भावनाओं के हिसाब से नहीं जा रहे हैं, हम
16: अच्छा ठीक है ओके
17: कैटेगरी के हिसाब से जा रहे हैं।
16: ओके, इफ यू से सो।
17: सो या,
16: मुझे लगता है ऑनेस्टली पॉलिटिशियंस आर मोर एंटरटेनिंग देन।
17: हां वो हमें लगता है ना, मतलब वो हमारी फीलिंग है।
16: ओके ठीक है,
17: सो यस ओके। तो जिन्होंने पॉलिटिशियंस का नाम लिख के भेजा है वहां पर तो कांटा लग गया।
16: हाय,
19: हेलो जी, नमस्ते।
16: नमस्ते
19: कैसे हो?
16: बहुत ही बढ़िया
17: बढ़िया,
16: कैसे हो आप? क्या नाम है आपका?
19: पुनीत।
16: पुनीत बताइए, पुनीत क्या लग रहा है?
17: सो पुनीत एंटरटेनमेंट फील्ड से है ये पता चल गया है।
19: ये है जी अटल बिहारी वाजपेयी।
16: नहीं नहीं,
17: नहीं, नहीं, नहीं, एंटरटेनमेंट पॉलिटिशियन नहीं है।
19: अच्छा एंटरटेनमेंट।
17: हाँ एंटरटेनमेंट यार ये बॉलीवुड से है बेसिकली।
19: नहीं पता दे।
16: नहीं पता। कोई बात नहीं,
17: कोई बात नहीं पुनीत।
16: थैंक यू पुनीत, थैंक्स फॉर कॉल। बताइए आप सोचिए, सैंडी अभी नाना पाटेकर का मैसेज आया है, नाना पाटेकर का मैसेज नहीं आया है, मैसेज आया है कि नाना पाटेकर हो सकते हैं।
17: नाना पाटेकर काफी लोगों ने भेजा है।
16: सोनू सूद, ये भी मैसेज आया है एक।
17: एक्चुअली सोनू सूद भी हो सकता है, सोनू सूद के लिए भी काफी लोगों को लगता है भगवान है, लेकिन देन उनकी खामोशी डायलॉग बन सकती है, पॉज फेमस है, ये वहां पे सूट नहीं कर रहा है। ये जो लाइन है ना, ये सो फार सिर्फ पंकज त्रिपाठी के ऊपर सूट कर रही है। पंकज त्रिपाठी का होता है ना, पॉज लेते हैं वो, थोड़ा मतलब उनका स्टाइल है वो थोड़ा।
16: तो सोनी ने बोला जॉन अब्राहम। हाँ खामोशी उनका डायलॉग से बेटर होती है, मैं अग्री करता हूँ।
17: डायलॉग ही नहीं उनके फेमस बस।
16: ए नहीं यार, क्या बात कर रहे हो, जॉन अब्राहम का डायलॉग मेरे रूल्स कोई नहीं तोड़ सकता, खुद मैं भी नहीं भाई, उसके डायलॉग्स मेरे को रटे हुए हैं।
17: किस मूवी का है ये?
16: धूम मूवी का।
17: ओह या ओके ओके। सचिन तेंदुलकर भी आंसर आया है।
16: सचिन तेंदुलकर
17: ओके, ये
16: कोई सवाल नहीं पूछ रहा है यार, कॉल करके सैंडी की मदद कीजिए यार।
17: 0800 करो यार, अभी दो ही सवाल पूछे मैंने, तीसरा सवाल। अच्छा तीसरा सवाल मैं पूछती हूँ यहाँ पे।
16: चलो पूछ लो।
17: क्या जो इंसान के बारे में तुमने सोचा है उसके बारे में अभी तक किसी ने मैसेज किया है?
16: यार ये बहुत गलत सवाल है यार।
17: गलत क्यों है? पता चलेगा ना गाइस थोड़ा।
16: एंड आई थिंक ये पहली बार ऐसा हिस्ट्री में हो रहा है। नहीं
17: अभी तक आंसर नहीं आया है।
16: नहीं,
17: सो मैं बताऊं कौन कौन आउट हो गया गाइज इसमें से. सचिन तेंदुलकर नहीं है, जॉन अब्राहम नहीं है, मनोज तिवारी नहीं है, नाना पाटेकर नहीं है, सोरू सूद नहीं है, पंकज त्रिपाठी नहीं है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी नहीं है, इरफान खान नहीं है, या तो ये सब नहीं है.
16: ये सब नहीं है तो अभी इनसे बात कर लेते हैं. हाय,
20: को-होस्ट से बात कर लेते हैं.
16: हाँ, को-होस्ट से बात कर लेते हैं. बताओ क्या लगता है आपको.
20: पहले एक हिंट बताओ कि इनके सिबलिंग्स भी हैं मूवीज में.
16: ये सवाल पूछ रहे हो आप,
17: मूवीज में सिबलिंग्स भी है मतलब
16: भाई बहन भी है क्या? ये आप किसके बारे में सोच रहे हो? ऐसा सैंडी को बोलो,
17: किसके बारे में सोचा है?
20: जैसे आपने कुछ वर्ड्स बोले हैं कि अपूर्वज भगवान है, खामोशी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मुझे सलमान खान लग रहा है.
17: एक्चुअली ये सलमान खान हो सकता है क्योंकि सलमान खान इज अ भाई ऑफ सलमान खान. के बारे में ना जो अभी मैसेज आया है, जब इसने बोला कि मैसेजेस नहीं आए हैं, उसके बाद मैसेज आया है.
16: दैट्स राइट.
17: एंड ही इज लाइक भाई ऑफ बॉलीवुड, मतलब भगवान है काफी लोगों के लिए, बनाता बिगाड़ता सब कुछ है वो. एंड देन ही इज अ सिंपल कहानी, बड़े सिंपल दिखता है लेकिन इतनी सिंपल कहानी नहीं है. हाँ, काफी कम लोगों को पता है वो. पर ही इज अ बिजनेसमैन.
16: ये गलत है भाई. ये
17: मैं
16: नहीं बोल रहा हूँ ऐसा कुछ, लेकिन मैं बस बोल रहा हूँ कि ये
20: सलमान का बिजनेस नहीं है, उसके ब्रदर चलाते हैं एसके प्रोडक्शंस.
17: अच्छा, लेकिन ये इतना वो हो गया ना, मुझे नहीं, लग रहा वही है
16: ये देखो ये गलत खेलती है यार ये लड़की.
17: खामोशी भी डायलॉग बन सकती है. पॉज बड़ा फेमस है, मतलब ऐसा बिग बॉस में तो है.
20: एक फनी आंसर भी है मेरे पास. अगर आप लोग फॉलो करते हो सोशल मीडिया, बट वो भगवान नहीं है, बट अर्जुन कपूर का एक वो क्लिप बहुत वायरल हुआ था, जब वो ऐसे रिपोर्टर को बोलता है तूने बोला ये, फिर वो चुप हो जाता है.
16: क्या था इसमें?
20: वो काफी देर इसमें ये था कि वो कुछ बोल रहा होता है अर्जुन कपूर.
16: हाँ.
20: और रिपोर्टर कुछ पूछता है और वो बात कुछ अच्छी नहीं होती है, तो अर्जुन कपूर ऐसे घूरता है उसको और बोलता है कौन बोला ये, तूने बोला ये, और वो फिर घूरता है उसको काफी टाइम तक. और लोगों ने इसके मीम बना दिए हैं पीछे गाना डाल के, ओ अंडरवर्ल्ड में जीना यारा दे नाल दा, मतलब ये गाना ये मीम बहुत वायरल हुआ था.
16: ठीक है, अभी एनीवे हम लोग पॉइंट पे रहते हैं ना परविंदर. हाँ. यार पॉइंट की बात नहीं करते हो यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा. मेरे को लगा फायर करना पड़ेगा आपको, शो से फायर करना पड़ेगा.
17: अच्छा, पंकज त्रिपाठी नहीं है, आमिर खान नहीं है गाइस, क्योंकि वो आंसर ऑलरेडी आ चुके हैं. तो रुस्बे, मेरा तुम्हारे लिए तीसरा सवाल,
16: ये चौथा सवाल भाई. तीन सवाल हो गए आपके.
17: तीन सवाल कहाँ हुए मेरे गाइस, दो हुए हैं ना.
16: नहीं यार, क्लियर, तीन सवाल पूछा.
17: बिजनेसमैन पूछा मैंने,
16: बिजनेसमैन पूछा,
17: फिर मैंने पूछा कि क्या ये वो है एंटरटेनमेंट की
16: फील्ड से है,
17: तुमने बोला हाँ.
16: हाँ, और अभी रिसेंट एक और सवाल पूछा ना आपने.
17: कौन सा सवाल?
16: हाँ ठीक है, चलो ठीक है.
17: तीसरा सवाल,
16: ठीक है,
17: तीसरा सवाल मेरा ये है कि क्या ये जो इंसान है ये रियलिटी शोज होस्ट करते हैं?
16: मेरे को देखना पड़ेगा. हाँ, आप पूछो बाकी, मतलब
17: देखना पड़ेगा. तो मतलब नहीं है क्या? एक श्योर नहीं है इसको कि इन्होंने कोई रियलिटी शो होस्ट किया है कि नहीं. यस से नो है?
16: नहीं,
17: नहीं किया है. सलमान खान नहीं है.
16: या
17: सो ये इंसान ने, तो अभी थोड़ा ऐसा करते हैं ना, गाना सुनते हैं.
16: हिंट दूं क्या? एक और हिंट ले लो ना.
17: हाँ, चलो बताओ.
16: ठीक है, तो बेसिकली एक और हिंट ये है कि हाँ, अरे कहाँ पे गया, किधर गया यार. चलो मैं पहले गाना सुनाता हूँ आपको, क्योंकि हिंट तो बहुत बढ़िया है मेरे पास एक, लेकिन
17: तो
16: पहले
17: सोचिए. अभी तक आंसर नहीं आया हमारे पास, अभी तक किसी ने आंसर नहीं भेजा है.
16: या चलो एक और हिंट दे दूं क्या आपको?
17: हाँ बोलो.
16: मेरी पहली नौकरी और आज की पहचान में जमीन आसमान का फर्क है।
17: ये हिंट था यार, ये तो पहले हिंट जैसा हो गया ना, सिंपल कहानी बट दिखता मतलब कहानी सिंपल नहीं है।
16: चलो ठीक है,
17: इट्स ऑलमोस्ट सेम।
16: चलो ठीक है, सोचो इसके बारे में थोड़ा और।
17: या
16: इनसे बात कर लेते हैं। हाय
0: हाय, हाउ आर यू?
16: वेरी गुड, हाउ आर यू डूइंग?
0: थैंक यू।
16: क्या नाम
0: है
16: आपका? ये पूछना है सवाल? सवाल पूछ रहे हो? ये सवाल है सैंडी?
17: This is good one. Okay, okay. That's a really good one.
16: क्या नाम है आपका?
0: शिवम।
16: शिवम, शिवम, thank you.
17: शिवम, okay, thank you, शिवम।
16: Hi, आपका भी स्वागत है। क्या नाम है आपका?
21: लोकेश।
16: लोकेश, बोलिए।
17: क्या लगता है आपको?
21: रजनीकांत।
17: रजनीकांत, क्यों?
21: Very simple. He was a bus conductor. Now he's a superstar. Stay calm all the time. Very down to earth. Very simple person.
17: खामोशी भी डायलॉग बन सकती है और काफी लोगों के लिए ये भगवान ही है। रियलिटी शो मुझे नहीं लगता इन्होंने कोई होस्ट किया है। That's a really good one. या तो चौथा सवाल। तो मैं चौथा सवाल पूछती हूँ।
16: गाना प्ले करें पहले, गाना सुन लेते हैं ना, उसके बाद सवाल पूछते हैं।
17: लोकेश, स्टे ट्यून्ड।
22: Hollywood's most wanted.
23: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ।
24: मैं लाऊं अपना A game.
22: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: समझो ना, आप भी समझो यार, ये कैरेक्टर गेस में कौन सा कैरेक्टर है ये समझो आप।
1: सो फार वी हैव दिस पर्सन इज सिंपल, लेकिन इनकी कहानी इतनी सिंपल नहीं है। लुक सिंपल, कहानी इतनी सिंपल नहीं है। बिजनेसमैन नहीं है, खामोशी भी डायलॉग बन सकती है। पॉज इज क्वाइट फेमस। इनको देख के इनको एक्चुअली में लगता है कि यही भगवान है। रियलिटी शो इन्होंने नहीं किया है एंड एंटरटेनमेंट की फील से है ये।
0: लास्ट सवाल है आपके पास और लास्ट हिंट है मेरे पास। तो पहले हिंट सुनोगे पहले सवाल पूछोगे?
1: हिंट सुनूंगी।
0: हिंट सुनने ला, ठीक है। तो हिंट है कि मेरे बारे में बात करने के लिए या मुझे एड्रेस करने के लिए मेरे नाम लेने की जरूरत नहीं है।
1: मेरे बारे में बात करने के लिए
0: या मुझे एड्रेस करने के लिए मेरे नाम लेने की जरूरत नहीं है। बिना मेरे नाम लिए भी आप मुझे एड्रेस कर सकते हो।
1: बिना इसके नाम लिए एड्रेस कर सकते हैं इसको।
0: 0800-004-866 इफ यू नो यू नो। ये बहुत बहुत ही इजी हिंट है मुझे लगता है। अगर आपको पता है तो आपको पता है। आप 0800-004-866 पे कॉल करके सैंडी की मदद कर सकते हो इस बात पर। हाय, क्या नाम है आपका?
2: हाय रोज भाई, सेड।
0: सॉरी,
2: सेड सेड
0: सेड
1: सेड या सेड, कौन लग रहे हैं आपको?
2: संजू बाबा।
1: संजू बाबा, क्यों ऐसा आपको लगता है?
2: क्योंकि पॉज लेते हैं।
1: पॉज लेते हैं, लेकिन इसने जो अभी लास्ट वाला हिंट बोला ना कि इनको एड्रेस करने, इनका नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ती इनको एड्रेस करने के लिए, वो कैसे फिट होता है?
0: बाबा
2: बाबा
1: बाबा रियलिटी शो, लेकिन इन्होंने किया है, बिग बॉस किया है। हाँ, वहां पे रह गए हम। इन्होंने रियलिटी, जिसके बारे में बात कर रहे हैं ना, उसे रियलिटी शो कोई होस्ट नहीं किया है, बट संजू बाबा डिड इट। या और कोई है यहाँ पे कॉल करके जो बताएगा? थैंक यू सो मच सेड, थैंक यू, दैट वाज रियली गुड वन, थैंक यू। एंड जाकिर खान भी मेरे पास आंसर आया है। पंकज त्रिपाठी, आमिर खान नहीं है, राजपाल यादव नहीं है, सलमान खान नहीं है। या रियलिटी शो अमिताभ बच्चन आंसर है। अमिताभ बच्चन ने भी रियलिटी शोज बहुत होस्ट किए हैं, केबीसी।
0: वो तो अभी भी कर रहे हैं। हाय, आपका स्वागत है।
3: हाय,
0: क्या नाम है आपका?
3: मेरा नाम विकास है।
1: विकास,
3: ऑब्वियसली रजनीकांत तो हो सकता है, बट मैं सोच रहा हूं भिड़ू।
0: भिड़ू,
1: भिड़ू,
0: जैकी दादा।
3: कौन बोलता है? जैकी दादा।
1: हां, भिड़ू। और रियलिटी शो वैसे रजनीकांत हो सकते हैं, मेरे को ऐसा सुई मेरी रजनीकांत के ऊपर ही अटकी हुई है। बिकॉज भीड़ों को ये नहीं कहते ना कि मतलब उनको नहीं लगता कि वो भगवान है, मतलब उनको लगने की बात है, मतलब भगवान वाला टाइटल उधर नहीं जाता है, लेकिन रजनीकांत की ओर जाता है। सो दैट्स अ वन, सिंपल दिखाई देते हैं वो टोटल, लेकिन ही हैड अ डिफिकल्ट कहानी। खामोशी भी डायलॉग बन सकती है 100%, लुक की बहुत है उनकी, रियलिटी शो नहीं किया है। एंड उनको
3: अभी पता नहीं, रियलिटी शो साउथ में कुछ किया हो सकता है।
1: आई डोंट थिंक सो, रजनीकांत ने किया है। एंड उनको क्या बोलते हैं, थाला बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं? नहीं, थलाइवा, या थलाइवा बोलते हैं ना, तो उनका नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ती उनको एड्रेस करने के लिए। लाइक देयर इज ऑलरेडी अदर वर्ड्स। मुझे लगता है कि सब कुछ इधर ही फिट हो रहा है। कोई कॉमेडियन नहीं है ना जिसके ऊपर फिट होगा ये।
0: आपको एक सवाल बस मेरे को पूछना है। आई नो इट्स टू लेट नाउ इन द प्रोसेस, बट स्पोर्ट्स भी एंटरटेनमेंट में ही आता है ना?
1: नहीं, स्पोर्ट्स इज स्पोर्ट्स ना।
0: नहीं, एंटरटेनमेंट
1: नो भाई, स्पोर्ट्स हाउस, पॉलिटिशियन इज पॉलिटिशियन, स्पोर्ट्स इज स्पोर्ट्स।
0: अच्छा, ठीक है, ठीक है,
1: एंटरटेनमेंट इज डिफरेंट। तुमने कहीं वो तो नहीं किया है हमें?
0: नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, चलो सही
3: कर रहा है।
1: वही ना।
0: बहुत कम चांस मिलता है मेरे को ऐसे करने का यार। थैंक यू कॉल के लिए भाई। अच्छा तो बताइए सैंडी, की गाना सुनाओ और फिर उसके बाद सोचने का टाइम।
1: नहीं नहीं, एक सवाल पूछना है ना।
0: सवाल पूछना है आपको
1: ना? हाँ, सवाल पूछना है।
0: पूछो।
1: तो ये जो इंसान है, क्या वो फिल्म इंडस्ट्री में, साउथ फिल्म इंडस्ट्री में ज्यादा प्रोमिनेंट है?
0: यस।
4: Are you ready? Chartbusters. थोड़ा सा हॉल बना दे.
5: Brought to you by Lifestyle Furniture, Manuko, Mount Wellington and Westgate. Up to 60% off on now.

0: शो इन्होंने किया है लेकिन साउथ इंडस्ट्री में फेमस है. आई थिंक द आंसर इज दिस रजनीकांत.
1: यस दैट्स राइट.
0: माय गॉड
1: इट्स रजनीकांत.
0: किसने फोन करके बुलाया था ये? लोकेश ने आई थिंक.
1: Yeah, I think so. बहुत सही पकड़ा था उन्होंने.
0: बहुत सही पकड़ा लोकेश.
1: Confidently उन्होंने बोला.
0: Because अभी तक ये usually क्या होता है ना कि इस game में हमारे पास सही answer कुछ लोगों ने भेज दिया होता है.
1: Yeah.
0: आज ये answer किसी ने भेजा ही नहीं.
1: आज
0: किसी के पास नहीं आया.
1: मैंने क्रैक कर लिया ना. मेरे को पता चल गया कि ये लोग कैसे गूगल पे ढूंढ के क्या कर रहे. तो मैंने इसलिए आज थोड़ा
0: घुमाया
1: उस चीज को. मेरे कुछ डिस्कार्डेड हिंट्स भी थे यहाँ पे. जैसे कि मैंने एक लिखा था कि मैं आसमान में बस कुछ फेंकता हूँ और लोगों को वो स्टाइल लगता है.
0: ये वैसे तो इजी हो जाता
1: है. तो मैंने वो इजी होता है या डिफिकल्ट होता शायद पता नहीं क्योंकि अभी आपको पता है रजनीकांत. अगर नहीं पता होता तो शायद फिर तभी आपको ऐसा लगता है ये क्या है.
0: सही है.
1: सो एनीवे दैट वाज रजनीकांत फॉर यू.
0: Yeah, so thank you so much guys यहाँ पे participate करने के लिए. और भी ढेर सारे answers आए थे like C.
1: इनके बारे में मुझे काफी कुछ पता चला actually. मैं while I was researching, so he was पहले villain के रोल में उन्होंने काफी काम किया.
0: Oh wow.
1: And then after that he became a hero. और उनका जो नाम भी है उनको उनके गुरु ने दिया है.
0: Okay.
1: So yeah, there's a lot of things about it. But anyway, thank you so much for participating.
0: Good one, man. It was really good one.
1: आज ट्रेंड मेकर्स में आपके लिए क्या लेकर आने वाले हैं?
0: So ट्रेंड मेकर्स में आज कुछ ऐसे गाने आपके लिए हम प्ले करने वाले हैं जो कि फीचर्ड है ऑन थ्री और मोर देन थ्री पीपल.
1: Oh.
0: मतलब एक्टर एक्ट्रेसेस दोनों हो सकते हैं इसमें. तीन या तीन से ज्यादा लोगों के ऊपर फीचर्ड गाने आप सुनने वाले हैं आज ट्रेंड मेकर्स में.
1: तगड़ा काम तगड़ा.
0: तो क्या लगता है कौन कौन से गाने होने चाहिए?
2: Straight from the heart. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local

0: Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen.
1: Accurate traffic.
2: Monarch, a finish worth celebrating.
3: Clear overnight, a low of 12 in the northern. It's heavy from West Haven to Oniwa Road in both directions. Town to Silverdale taking 48 minutes on the northwest and slow from Spaghetti Junction to Te Atatū. On the southern, town to Manukau 35 minutes, Drury 45. Northbound traffic heavy from Highbrook Drive to Green Lane, south from Newmarket to Sylvia Park. In the southwest and slow heading north from Puhinui Road to Manu Bridge.
2: Save time without compromising quality. Monarch's premium paint tools deliver a finish worth celebrating.
4: Spring savings are on now at Beds R Us. Save on selected sleepy head beds like the Chiropractic Perform, half price, queen size, now from 2299. Step up your sleep with spring savings at Beds R Us Manukau and Pukekohe, where dreams begin.
5: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट squirrel.co.in से।
2: Do 8 Sudokus. Save 3 people's lives. Count the holes in a ceiling tile, or just count the edges and then multiply it. 2 chapters of an audiobook about stoicism. Help create life-saving products. Watch a round of darts. Take a small nap.
6: These are some of the things you can achieve in one blood or plasma donation at your local NZ Blood Donor Centre or mobile drive. Visit nzblood.co.nz to book your blood or plasma donation appointment.
7: Their mum can't work out why they always eat so well at mine. Well, it's the Woolworths chicken schnitzel. Maybe one day I'll tell her. But for now, my kind of Woolies keeps that secret between us.
8: The Specsavers Specstravaganza store-wide sale is on now. Phew, bit of a tongue twister, hey? Get any 2 pairs of glasses store-wide, even designers, for only $299. Save up to $200. Hurry, offer ends October 3. Should have gone to Specsavers. Include single vision lenses, conditions apply.
4: Settle, win, escape. Finance World is about to take you further with a trip to Bali. Settle kijiye apna home loan of $500,000 ya usse zyada Finance World ke saath. And you're automatically in the draw to win a trip to Bali for 2. 5 days, 4 nights. Two lucky winners. Her eligible home loan of 500,000 ya usse zyada automatically aapko draw mein enter karta hai. Terms and conditions apply. Visit financeworld.co.nz/Bali. Finance World Limited is a registered financial advice provider.
9: Hey, City Rail Link's now open and our first trip's going to the game.
10: Now I can go east-west on just one train. So my first trip seeing an old friend in Swanson.
11: Our first train ride. We're surprising the kids with Te Waihoretu Station and a movie.
12: CRL first trip, coffee with friends, maybe K Road, maybe Pukekohe.
13: Oh, it'll be our millionth time going to the art gallery, but our first time taking the train.
14: Those all sound great. The City Rail Link's now open, so all aboard with Auckland Transport.
15: Check. Brought to you by Mann Tyres. For all kinds of tyres and mechanical services, open 7 days. Call Mann Tyres on 0800 00 00 10.
0: Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
16: Good evening, I'm Bridget Hasty with the latest at 6. The Finance Minister believes more people would be working if the Reserve Bank had done better during COVID. A review has found the central bank was slow to take its foot off the policy gas during the pandemic, and Nicola Willis says there are consequences.
17: You can't run away from fixing inflation, because the ultimate consequence of letting inflation run out of control is always Kiwis losing their jobs.
16: A house has gone up in flames in Bromley in Christchurch. Fens crews were called to Logie Place at 4:30, arriving to find the property well ablaze. 4 trucks are at the scene and the fire is now contained. A past president of the Sport Fishing Council has blasted the reduced commercial and recreational limits on Tiriki. They include lowering the combined eastern fishery limit by 20%. Scott McIndoe says MPI had previously recommended reductions from 39 to 78%.
18: The minister has decided to ignore his officials' advice and he's opted for a 20% reduction. How ridiculous.
16: Dolly Parton's nephew has reportedly been fired from his role as head of security for her properties. Brian Seaver was the family member who announced the singer's death last month. He and his team have told TMZ they are dismayed by the unexpected and so far unexplained actions, attributing the decision to Parton's long-term manager. To sport, some big discussions looming for New Zealand rugby at a summit meeting on Thursday. As reported by the Post today, there are three options on the table, including a new 8 to 10 team national competition to replace Super Rugby Pacific and the NPC, Rugby with All Blacks Travel and Hospitality.com. And the Aussie Diamonds have named Sarah Clough for the Constellation Cup Series, even though she breached Netball Australia's code of conduct for assaulting a security guard.
0: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Draw Skill.
19: Hum par shok suchnaye aap tak late hai. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations.
20: Sujit kya jata hai? Nandi Fiji ke bhutpurva nivasi, swargiya Somaya Raju ke putra, Kavit aur Kavinesh Raju ke pita, Chandrakanta Raju ke pati, Watua Levu High School tatha Sangam College, Nandi ke bhutpurvak, adhyapak, चंगल राजू की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई. अंतिम संस्कार वेनेसडे 23 सितंबर को दोपहर 1 बजे एंस फ्यूनरल होम में किया जाएगा. जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 0273-007-034 पर कॉल कर सकते हैं. नांदी फिजी के भूतपूर्व निवासी स्वर्गीय सोमया राजू के पुत्र कवित और कविनेश राजू के पिता चंद्रकांता राजू के पति वतुआलेवु हाई स्कूल तथा संगम कॉलेज नांदी के भूतपूर्व अध्यापक चंगल राजू की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई. अंतिम संस्कार वेनेसडे 23 सितंबर को दोपहर 1 बजे एंस फ्यूनरल होम में किया जाएगा. जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 0273-007-034 पर कॉल कर सकते हैं.
19: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे, शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी.
0: नॉन स्टॉप बॉलीवुड
21: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us, Manukau and Pukekohe. Massive home show deals available in store now. Only at Beds R Us, Manukau and Pukekohe. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku. Let's go! 3, 2, 1. Trend Makers. The Drive Show with Sandy and Rusby.
21: Masti karenge, mauj katenge, garda paar denge.
22: 6 बज चुके हैं, मतलब ट्रेंड मेकर्स की बारी है. 6 से 7 आपके लिए हम एक अलग थीम लेकर आते हैं रोज. और उससे पहले सैंडी गुड इवनिंग, वेलकम.
23: वेरी वेरी गुड इवनिंग रुज़बे, हाउ आर यू डूइंग?
22: एक नंबर.
23: वेल, वैसे ये जो ट्रेंड मेकर्स जो आज का आवर हम शुरू करने वाले हैं, वैसे आज के आवर में हम ऐसे गाने लेके आने वाले हैं जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा एक्टर्स है. इसमें मतलब एक्ट्रेस भी हो सकती है, एक्टर्स भी हो सकते हैं, तिगड़ी वाले हैं या उससे ज्यादा हैं.
22: या मतलब यूजुअली ना गाने होते कपल्स के ऊपर होते हैं, या मोस्टली कपल्स के ऊपर होते हैं, बट ये जो आज गाने हम सुनने वाले हैं उसमें कपल्स नहीं, उसमें तीन लोग हैं. कोई और टर्म नहीं यूज करना चाहता हूँ.
23: फ्रेंड्स है बेसिकली, या फिर हाँ, और भी है. देखा जाए तो बॉलीवुड में ये ट्रेंड कितना कम हो गया ना, फॉर द मूवीज लाइक दिल चाहता है.
22: लेकिन सारे यंग एक्टर्स है उसमें. प्यार में कभी कुछ तो भी ऐसा मूवी का नाम है.
23: ओके
22: हाँ,
23: बट आई मिस दोस काइंड ऑफ मूवीज लाइक गुड सिनेमा विद मल्टीपल एक्टर्स लाइक दिल चाहता है, 3 इडियट्स, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. You know, ऐसी
22: खो गए हम कहां. वो भी अच्छी थी मूवी. अभी एक और मूवी आ रही थी ना इनकी, कैटरीना प्रियंका, और वो चेंज हो गया वो फिर.
23: या जोया अख्तर की मूवी
22: थी, बट क्या था उसका नाम, कुछ तो भी था, बहुत भारी नाम था ऐसा ही कुछ.
23: अच्छा नाम
22: गाने का ऊपर ही नाम था ना.
23: या प्रियंका चोपड़ा, कैटरीना कैफ, आलिया भट्ट, तीनों को लेके बननी थी.
22: हाँ, लेकिन वो नहीं बन रही अभी.
23: वो नहीं बन रही है. बट एनीवे,
22: फरहान अख्तर और जोया अख्तर के ऊपर मेरे को लग रहा है वो ग्रहण छा गया है.
23: मूवीज ही नहीं उनकी जो है रिलीज होती है, मैंने बनती नहीं है.
22: फरहान अख्तर का एक मैंने रिसेंटली देखा था इंटरव्यू, कहीं तो भी फिल्म फेस्टिवल पे गए थे तो वहाँ पे इंटरव्यू किया था उन्होंने. एंड ओवर देयर ही वाज लाइक, आई वांट टू मेक मूवीज इफ पीपल अलाउ मी टू मेक, ऐसा करके. मतलब लाइक ही जस्ट वेरी सटली उन्होंने उसके ऊपर ये किया कि मतलब मैं बनाना चाह रहा हूँ लेकिन
23: कुछ ना कुछ हो रहा है,
22: कुछ ना कुछ हो रहा है और नहीं बन रही है मूवीज.
23: तो आप भी बताइए ऐसी कौन सी मूवीज है. और आपसे एक्चुअली में सवाल ये है कि आपको एक ऐसे गाने का नाम बताना है जिसमें 10 या फिर 10 से ज्यादा एक्टर्स हैं.
22: 10 से ज्यादा एक्टर्स का प्रेजेंस है उस गाने में, एक्टर एक्ट्रेसेस। एंड अगर आपके पास एग्जैक्ट नंबर है कितने हैं वो भी आप यहाँ पे लिखकर भेज सकते हो।
23: लेकिन ऐसा कौन सा गाना है बॉलीवुड में?
22: मुझे लगता है एक ही गाने रहेंगे ऐसे।
23: दो गाने तो है।
22: ओ, दो गाने हैं।
23: दो गाने हैं। दूसरे गाने में 10 है कि नहीं है पता नहीं, लेकिन इस गाने में तो जो एक गाना है पर्टिकुलर उसमें तो है ही, जो फेमस गाना है।
22: हाँ चलो ठीक है, आप भी मैसेज करके बताइए आपको क्या लगता है कौन सा गाना है वो। 5599 इज द नंबर फॉर यू टू मैसेज। ड्राइव कीवर्ड के साथ भी आप मैसेज कर सकते हो। आपको हमारे पॉडकास्ट का लिंक मिल जाएगा उसके थ्रू, या फिर हमारे चाय पे चर्चा का लिंक भी मिल जाएगा आपको, जिसके डिटेल्स आपको देंगे हम थोड़ी देर में।

0: Trend Makers.
1: Ladies and gentlemen,
0: unfiltered with Sandy and Rizvi. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं. यहाँ कहानियाँ होती हैं raw, emotions होते हैं real और conversations होते हैं बिना mask के.
2: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं.
0: Unfiltered with Sandy and Rizvi on Rowa, Spotify or anywhere you get your podcast.
3: Craving हो रही है उस thick और क्रीमी दही की जैसे घर पर मिलती थी, तो मिलवाते हैं आपको कशिश नेचुरल योगर्ट से, जिसका हर स्पून है एकदम डिलाइटफुल. 100% वेजिटेरियन, जेलेटिन एंड ग्लूटेन फ्री. परफेक्ट है स्मूदीज बनाने के लिए, टैंगी टिप्स बनाने के लिए, पनीर या चिकन मैरिनेट करने के लिए, या बस सीधा टब से खाने के लिए, क्योंकि ये है नेचुरली डिलीशियस, ऑलवेज देसी. अवेलेबल नाउ एट योर फेवरेट इंडियन सुपरमार्केट अक्रॉस न्यूजीलैंड. ब्रिंग होम द टेस्ट ऑफ ट्रेडिशन. कशिश नेचुरल योगर्ट.
4: वो इनडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना.
5: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
6: And award goes to Indelible Homes.
5: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite master builder.
7: Kahani of Indelible Homes.
8: TradeDepot.co.nz. Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery anywhere in Auckland. Huge side-by-side stainless steel fridge freezer $699. 10kg 9-star energy heat pump dryer $799. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply.
9: TradeDepot.co.nz.
10: It's normal to feel low sometimes. Just like how the weather changes, so can our moods. Pay attention to your feelings. Reach in and check how you're doing. Reach out and talk to someone you trust. If you need to talk with a trusted professional, Asian Family Services is here to support. Call the Asian Helpline on 0800-862-342 for free, confidential support. If you or someone you know is in immediate danger, please call 111 or emergency services.
11: Commonwealth Vault keep your precious belongings safe and secure. With the value of gold, bullion and precious metals at an all-time high, it's more important than ever to ensure your assets are protected from theft and natural disasters. When you entrust your valuables to Commonwealth Vault, you have peace of mind, knowing they'll be safe, secure and protected. Commonwealth Vault, securing your valuables for a lifetime and beyond at the historic Public Trust Building on Oxford Terrace. Details at commonwealthvault.co.nz.
0: The beat of Bollywood.
12: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं
13: है. Are you ready to go home?
14: The Drive Show with Sandy and Rizvi, brought to you by Beds R Us, Manukau and Pukekohe. Massive home show deals available in store now. Only at Beds R Us, Manukau and Pukekohe. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jayco.
15: You're listening to Hum playing Bollywood's biggest hits. वैसे आज गानों का जो collection है Sandy, हम आज तिगड़ी के ऊपर के गाने कर रहे हैं ना, जिसमें तीन एक्टर से ज़्यादा है. तो लिस्ट इज बीइंग डोमिनेटेड काइंड ऑफ बाय द एक्टर्स.
16: या बिकॉज मेरे को लगता है यही सबको साथ में लेके आए,
15: सबको साथ में लेकर आके ये ग्रुप वाली मूवीज में ज्यादा बिलीव करते हैं मुझे लगता है.
16: या इनका सिनेमा जो है, इट्स ऑल अबाउट स्टोरी ऑफ एक्सटेंडेड फैमिली या फिर फ्रेंड्स, ये सब चीजों को लेके.
15: इट्स वेरी रेयर इट इज वन मेल लीड. मतलब हैविंग सेड दैट, फरहान अख्तर इज द वन हु मेड द डॉन सीरीज अगेन.
16: एंड रॉकऑन इन्होंने बनाई थी.
15: नहीं, रॉकऑन में भी ग्रुप है ना. डॉन मतलब एक सेंटर लीड की मैं बात कर रहा हूँ. डॉन में एक सेंटर लीड है मेनली. हाउएवर जो दूसरे कैरेक्टर्स है, जैसे बबन ईरानी का कैरेक्टर, अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर, उनको भी बहुत अच्छा वेटेज मिला था उनके मूवीज में. बट या इन जनरल आई थिंक दे लाइक टू मेक मल्टी स्टारर मूवीज.
16: या जो कि वंस अपॉन अ टाइम बॉलीवुड में बहुत बड़ा ट्रेंड हुआ करता था.
15: अरे यार, अक्षय कुमार और सैफ अली खान के मूवीज होते थे यार. मतलब कितने वो उन्होंने साथ में मूवीज की. मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, फिर एक और मूवी की उन्होंने,
16: आई थिंक ये दिल लगी या ओले ओले ओले, वो जिसमें गाना है ना.
15: फिर एक गाना वो था माय एडोरेबल डार्लिंग,
16: वो इसी मूवी का है
15: ना. ये दिल लगी ना, या मैं अनाड़ी तू अनाड़ी,
16: नहीं पता.
15: वन ऑफ द टू का है,
16: किसी मूवी का है वो. बट या जो हमने सवाल यहाँ पे पूछा उसका जवाब भी देते रहेगा कि ऐसी कौन सी मूवी है जिस के गाने में 10 एक्टर्स है,
15: 10
16: एक्टर से ज्यादा है।
15: काफी लोग यहाँ पे सही मैसेजेस भेज रहे हैं, आप भी यहाँ पे भेजिए, 5599 इज द नंबर, फटाफट मैसेज भेजिए।

0: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us, Manuko and Pukekohe. Massive home show deals available in store now. Only at Beds R Us, Manuko and Pukekohe. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
1: हर दिन की भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है, लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुनें। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
2: Traffic. Kitchen Mania free installation. Clear overnight, a low of 12 on the northern town to Constellation Drive, 23 minutes. Silverdale, 36 on the northwestern to Massey, 18 minutes. On the southern to Manukau, 24 minutes to Drury, 35 from town. It's just heading north from Mount Wellington to just past Green Lane. Southwestern is slow, northbound from Massey Road to Onehunga. All trains on time at the moment.
3: Order your new Kitchen Mania kitchen and receive free installation. KitchenMania.co.nz. T's and C's apply.
4: Professional by Ninjas has started up. लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे, नो ब्रोकर चार्ज, बस ट्रस्टेड एडवाइस, हर डील बनाए परफेक्ट राइट।
5: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स, लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक।
4: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो, सब कुछ मिलेगा यही, अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए।
5: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी। कॉल 09846-9934 और सर्च PFSL, T's and C's, लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई।
6: From climate change to a lack of loose change, from small changes to changes in global power, change is constant. And so is the news on this station, your source for everything changing. In association with RNZ News, change is in the air.
7: There's a new kind of goodness in the pet aisle, Nature's Gift. Discover the new Nature's Gift grain-free range, now in convenient pouches and delicious kibble. Made with real meat, real vegetables and grain-free recipes, it's a natural choice for everyday feeding. So, looking for Nature's goodness? You'll love Nature's Gift. All new look, same great nutrition in supermarkets now. The delicious dog food packed with real goodness. Give them the gift of Nature's Gift grain-free. Discover the range in-store today.
8: Dirt cheap, dirty thoughts, a dirty tackle. Sometimes you can get away with being dirty. Other times you need Dirtworks. Ride dirty, keep clean with Dirtworks eco-friendly bike cleaner for mountain bikes, dirt bikes and 4x4s. Check out dirtworks.co.nz for more info. That's works with an X.
9: In business, relationships matter, respect matters, and so does keeping your word. So what do you do when customers don't pay your invoices? At Kedar Limited, they understand that in our Indian community, business is built on trust, respect, and keeping your word. With 20 years of debt recovery experience, they can help recover your B2B debts. Want your old invoices paid? Call Kedar Limited on 022-090-9845. Pehle baat, phir solution aur payment bhi. Visit kaydaar.co.nz.
0: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us, Manukau and Pukekohe. Massive home show deals available in store now. Only at Beds R Us, Manukau and Pukekohe. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
10: You're listening to Hum playing Bollywood's biggest hits. And trend makers, mein aaj humne Tigri aur uske upar ke jo multi-starer movies hai aur wo gaane hai, wo aapko sunaye.
11: या थैंक यू सो मच आपके आंसर्स के लिए. यहाँ पे जो आपने जो हमने सवाल पूछा उसका जवाब अभी हम आपके लिए प्ले ही करने वाले हैं
10: अभी
11: प्रस्तुत करने वाले हैं
10: जी. क्योंकि हमने आपको सवाल क्या पूछा था कि ऐसा कौन सा गाना है जिसमें 10 से ज्यादा ही है उसमें एक्टर्स जिन्होंने अपीयरेंसेस दिए है, कौन सा गाना है वो. And
11: लेकिन जो अपीयरेंसेस आए हैं उसमें रानी मुखर्जी, जैयद खान, विद्या बालन, जितेंद्र, तुषार कपूर, प्रियंका चोपड़ा, शिल्पा शेट्टी, धर्मेंद्र,
10: सलमान खान,
11: शबाना आज़मी, या सलमान खान, उर्मिला,
10: प्रीति, रानी मुखर्जी,
11: करिश्मा कपूर,
10: प्रीति जिंटा भी थी ना,
11: या करिश्मा कपूर, अरबाज खान, मलाइका अरोड़ा, डीनो मोरिया, अमृता अरोड़ा, जूही चावला. ओ माय गॉड यार, 30 लोग थे उसमें,
10: 30 लोग हैं,
11: 30 एक्टर एक्ट्रेसेस को. This was Farah Khan.
10: Farah Khan
11: की कोरियोग्राफी थी ये.
10: ओम शांति ओम मूवी का गाना था ये.
11: या ओम शांति ओम मूवी का. बट जाने से पहले आपके साथ हम शेयर करना चाहते हैं अपने बाली बैंकॉक के ट्रिप के बारे में. गाइस, 50% सोल्ड आउट हो चुका है. इफ़ यू वांट टू बुक योर टिकट्स, आप जल्दी से बुक कर लीजिए 0800 4 सन टूर्स पे बात कीजिए 0800-4786-868। एक पैकेज बनाया है सन टूर्स ने मेरे और रुजबे के साथ, जहाँ पे मेरे और रुजबे के साथ आप ट्रिप करेंगे बाली एंड बैंकॉक में। एंड अमेजिंग डील्स है जिस पैकेज में, हैसल फ्री है बेसिकली, सब कुछ प्लान्ड है इसमें। यू जस्ट हैव टू पैक योर बैग एंड गेट रेडी फॉर दिस एडवेंचर।
10: जी, तो इसके लिए हम लोग एक छोटा सा सेशन भी आपके लिए ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, चाय पे चर्चा, अगर जिसमें आपको और भी डिटेल्स पता चलेगी इस ट्रिप के बारे में, एंड यू विल गेट टू नो द वाइब, द फील ऑफ व्हाट द ट्रिप।
11: हमसे बातें करोगे ना वहाँ पे बैठ के, आपकी कंफ्यूजन अगर आपको है तो वो भी दूर होंगी।
10: हाँ, हमारा ऑडिशन लेना आप वहाँ पे। बट ड्राइव लिख कर भेजिए 5599 पे, एक फॉर्म रहेगा, उस फॉर्म को आपको बस सिंपल फिल करना है एंड वील गिव यू ऑल द डिटेल्स ऑफ हम कहाँ पे मिलने वाले हैं। बट फॉर मोर डिटेल्स यू कैन कॉल 0800-4786-868 एंड यू कैन बुक इन योर स्लॉट। तो 0800-4786-868 ये है नंबर।
11: और इसी नोट पे आपको यहाँ पे टाटा बाय बाय कहने का वक्त आ चुका है। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अब आपसे मुलाकात हमारी होगी कल।
10: अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिए, और कल हम्प डे है, 23rd of September, मिड वीक भी आ गया,
11: और कल कुछ नया टॉपिक लेके आएंगे। एंड ऑल्सो गाइज, टुडे इज व्हाट, ट्यूसडे, कल वेंसडे है, और ये आने वाले थर्सडे को इलेक्शन स्पेशल में हम एक कैंपेन मैनेजर को लेके आने वाले हैं, जो कि कैंपेन्स को मैनेज कर रहे हैं ऑफ नेशनल पार्टी।
10: जी, तो उनसे हम बात करने वाले अबाउट द पॉलिसीज, अबाउट क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हेल्प करेगी हम हमारी कम्युनिटी को, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसके लिए यू नो वी शुड बी मोर अवेयर, बेसिकली हमको पता होना चाहिए उस चीज़ के बारे में। सो या वी आर गोइंग टू गेट समवन फ्रॉम द नेशनल पार्टी दिस टाइम। अगर आपके पास कोई सवाल है नेशनल पार्टी को लेकर, तो यहाँ पे ज़रूर आप मैसेज कीजिए ऑन 5599, या फिर आप ईमेल कर सकते हो sandysekho@mediaworks.co.nz इस ईमेल एड्रेस पे।
11: आप ईमेल भी कर सकते हो, तो आपका सवाल हम जरूर पूछेंगे। रिमेंबर दिस थर्सडे 5 बजे।
10: या एंड वीड लव टू हियर फ्रॉम यू, या वीड लव टू हियर फ्रॉम यू, बिकॉज आपके ही सवाल है जो हम आगे प्रेजेंट करना चाहते हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करना चाह रहे हैं। तो जरूर हमारे साथ बने रहिएगा, सुनते रहिएगा हम, एंड वील सी यू टुमारो।
11: बाय।

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: Spring just got fresher with these great deals at New World North Island this week. Get avocados, 2 for $2.50, or whole chicken legs, $7.99 per kilo. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
2: Fuel prices got you feeling? Score 6 cents per litre off every fill with Caltex pumped, plus more on Super Pump Day. Fill up, scan your Caltex app or credit card and save instantly. Discount applies up to 50 litres. Caltex pump T's and C's apply. See caltex.co.nz.
3: Time check.
4: Brought to you by Mann Tyres. For all kinds of tyres and mechanical services, open 7 days. Call Mann Tyres on 0800 00 00 10.
3: To you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
5: Good evening to you. With the latest at 8, I'm Jeff Bryan. A leaked video of an education official has sparked an urgent debate in Parliament. Labour MP Jenny Anderson says the official was disguising ministry feedback as her own. Education Minister Erica Stamford denies any part in trying to circumvent the process. On the West Coast, investigations continued today into the disappearance of the Piper Cherokee 6 aircraft that was lost 47 years ago with 7 people on board. Police divers have investigated an object found in Lake Mauraki today. There's no indication so far the object is an aircraft. In sports news, in rugby, there's a radical option on the table for the future of rugby in New Zealand. As reported by the Post today, New Zealand Rugby has proposed a new 8-10 team national competition to replace Super Rugby Pacific and the NPC. And 12-test All Black Lester Fainga Inuku is reportedly back from injury and will be on the bench for Tasman against Bay of Plenty in Thursday night's NPC clash.
6: Sports News.
3: Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
7: World's best, hamari good brands bhi hai. Hum.
3: Night Cafe on Hum. Aapka moment. Krish ka magic. Only on Hum.
8: Good evening and welcome everyone. You're listening to number one Hum playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. प्यारे प्यारे टॉपिक्स पर बातें करने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हो चुका हूँ नाइट कैफे में आपका साथ देने के लिए. और इंटरेस्टिंग खबरों के साथ गाने भी लाजवाब हम लेकर आए हैं. आज ट्यूजडे है तो आज स्पेशल सेगमेंट होगा जो 8 to 9 के बीच आपके लिए हम लेकर आएंगे, विच इज कोक स्टूडियो रिलोडेड. और आज कोक स्टूडियो रिलोडेड में कुछ अलग ही होने जा रहा है. वो दौर जो हमने शुरू किया था कुछ समय पहले वो आज भी जारी रखेंगे और इस पर जानकारी बहुत ही जल्दी आपके लिए.
3: ये है कोक स्टूडियो रिलोडेड ऑन हम.
8: Yes, everyone, welcome to the show. Coke Studio Reloaded में आपका स्वागत है. It is Tuesday, 22nd September और Tuesdays को हम लेकर आ जाते हैं Coke Studio Reloaded, जहां पर Coke Studio भारत और Coke Studio पाकिस्तान के गाने आपके लिए हम पेश करते हैं. और आज भी हम कुछ ऐसे Coke Studio भारत के आर्टिस्ट पर बातें करेंगे, क्योंकि इतने सारे आर्टिस्ट्स ने इस Coke Studio को उस मुकाम तक पहुँचाया है जहाँ पर आज इनका नाम है, रेपूटेशन है और फैन फॉलोइंग है. तो आज मैं आपको बताऊंगा कुछ और कोक स्टूडियो भारत के आर्टिस्ट के बारे में. पहले तो कुछ और कोक स्टूडियो गाने सुनाता हूँ. बैक टू बैक 2 सॉन्ग्स मैं आपको सुनाऊंगा और उसके बाद में हमारा पहला आर्टिस्ट जो होगा उस पर जानकारी आपके लिए. क्रिश का साथ है, वेलकम टू द शो.

वेलकम टू कोक स्टूडियो रीलोडेड। आज कोक स्टूडियो भारत पर फोकस करेंगे। कुछ कोक स्टूडियो पाकिस्तान के गाने भी लेकर आएंगे, लेकिन ज़्यादातर कोक स्टूडियो भारत के गाने मैं पेश करूंगा, क्योंकि आज हम सलाम करेंगे उन आर्टिस्ट को जो कोक स्टूडियो भारत को एक नई ऊंचाई तक लेकर गए हैं। अय्यर रहमान वन ऑफ द इंडियाज़ मोस्ट इंटरनेशनली रिकोगनाइज कंपोजर्स और म्यूजिशंस है। इन्होंने कोक स्टूडियो इंडिया में अपीयर हुए ये एज बोथ अ कंपोजर एंड अ परफॉर्मर। इनके म्यूजिक में ऑफ्टन इंडियन क्लासिकल ट्रेडिशंस विद इलेक्ट्रॉनिक और ग्लोबल साउंड्स होते हैं, और ये ही इज़ नोन टू क्रिएट एलिबरेट अरेंजमेंट्स वाइल कीपिंग स्ट्रॉन्ग मेलेडिक फाउंडेशंस। और इनका जो काम है, इंडियन सिनेमा इंडिपेंडेंट म्यूजिक रहा है, और इंडियन सिनेमा में म्यूजिक फिल्मी म्यूजिक रहा है, और इंटरनेशनल प्रोडक्शंस भी इन्होंने किया है। मल्टीपल नेशनल फिल्म अवार्ड्स और फिल्म फेयर अवार्ड्स इनको मिले हैं, विथ टू एकेडमी अवार्ड्स। और कहा गया है कि हिज अप्रोच टू म्यूजिक क्लोजली मैचेस कोक स्टूडियोज आइडिया ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन और कोलोबोरेशन। अमित त्रिवेदी पर बातें करेंगे बहुत ही जल्दी।

0: moment. Krish ka magic. Only on Hum.
1: Coke Studio Reloaded आपके लिए जारी है और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. हमारा साथ रहेगा ऑल द वे टिल मिडनाइट. अमित त्रिवेदी एक मुंबई बेस्ड कंपोजर है, सिंगर और मल्टी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट है और ये काफ़ी पॉपुलर हुए थे फॉर इज अनकन्वेंशनल अप्रोच टू हिंदी फिल्म म्यूजिक. और इन्होंने कोक स्टूडियो इंडिया के साथ अपना एसोसिएशन बोथ एज अ कंपोजर और परफॉर्मर के तौर पर रखा है. इनका जो म्यूजिकल स्टाइल है इट कम्बाइंस इंडियन फोक साउंड्स विद रॉक, इलेक्ट्रॉनिक और कंटेम्प्रेरी अरेंजमेंट्स, जो कि बहुत ही वेरी फंडामेंटल आइडिया है ऑफ कोक स्टूडियो परफॉर्मेंसेस. और ही इज पर्टिकुलरली नोन फॉर एक्सपेरिमेंटिंग विद अनयूजुअल इंस्ट्रूमेंट्स और वोकल टेक्सचर्स को ये मिलाकर उनका मिश्रण, उनका फ्यूजन ये एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं. और इनका कोक स्टूडियो काम रिफ्लेक्स हिज इंटरेस्ट इन टेकिंग ट्रेडिशनल साउंड्स इनटू न्यू टेरिटरी. और उन्होंने काफ़ी बॉलीवुड फिल्मों के लिए गाने भी दिया है. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ बेनी दयाल पर बातें करेंगे बहुत ही जल्दी.

0: Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: Intaha ho gayi intezaar ki.
2: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है।
3: हाँ। अच्छा
2: बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं?
3: मिसेस सिंह,
4: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
5: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
6: Hey, City Rail Link's now open, and our first trip's going to the game.
7: Now I can go east-west on just one train. So my first trip seeing an old friend in Swanson.
8: Our first train ride. We're surprising the kids with Te Wai Horatiu Station and a movie.
9: See our first trip? Coffee with friends, maybe K Road, maybe Pukekohe.
10: Oh, it'll be our millionth time going to the art gallery, but our first time taking the train.
11: Those all sound great. The City Rail Link's now open, so all aboard with Auckland Transport.
12: If you need to enrol or update your details for the 2026 general election, accessible resources are available. Get information in the format that works for you. Choose from audio, braille, easy read, large print, and New Zealand Sign Language. Visit vote.nz or call 0800 36 7656. You must enrol or update your details by midnight, Sunday 25 October. Brought to you by the Electoral Commission.
13: The beat of Bollywood.
14: World's best, hamari good branch nahi hai.
13: Hum. Night Cafe on Hum. Coke Studio Reloaded.
15: कोक स्टूडियो रिलोटेड जारी है। आज कोक स्टूडियो इंडिया के आर्टिस्ट को हम सलाम कर रहे हैं, उनके बारे में जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। बेनी दयाल इंडियन प्लेबैक सिंगर है। हिज एनर्जेटिक वोकल स्टाइल के लिए इनको जाना जाता है। इन्होंने एक्सटेंसिवली हिंदी, तमिल, मलयालम, तेलुगु और अदर इंडियन लैंग्वेजेस के लिए गाया है। और ही इज़ बीन पार्ट ऑफ कोक स्टूडियोज कॉन्टेम्प्रेरी कोलोबरेटिव म्यूजिक फॉर्मेट। और इनका परफॉर्मेंस ऑफ्टन कम्बाइन करता है पॉप, फंक और इलेक्ट्रॉनिक और इंडियन म्यूजिकल इन्फ्लुएंसेस। और कहा जाता है ही इज़ ऑल्सो द मेम्बर ऑफ द बैंड फंक्टुएशन। बेनी काफ़ी लीडिंग कंपोजर्स और म्यूजिशंस के साथ काम कर चुके हैं। और ख़ासतौर पर इनका जो आवाज़ है, इट इज़ मोर सूटेड टू अपबीट और रिदम ड्रिवन कंपोजिशंस। जैसे आपने इनके आवाज़ में वो गाना सुना होगा बॉलीवुड फिल्म गजनी का, कैसे मुझे तुम मिल गई। तो बेनी दयाल ने काफ़ी कोक स्टूडियो गाने को भी गाए हैं। मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ, सुनते रहो हम
16: कोक स्टूडियो भारत। सब्सक्राइब नाउ।

0: moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: आप सुन रहे हैं आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड बिगेस्ट हिट्स क्रिश के साथ है। शिल्पा राव का ज़माना चल रहा है अभी, काफ़ी गाने ये दे रही है अभी बैक टू बैक और काफ़ी हिट गाने भी ये इनको मिल रहा है, काफ़ी कंपोजर इनके साथ काम भी कर रहे हैं। तो शिल्पा राव इंडियन प्लेबैक सिंगर है, नोन फॉर हर डिस्टिंक्टिव हस्की वॉइस, और इन्होंने हिंदी एज वेल एज सेवरल अदर इंडियन लैंग्वेज म्यूजिकल प्रोजेक्ट्स में काम किया है। इनके जो म्यूजिकल स्टाइल है, इट रेंजेस फ्रॉम कॉन्टेम्प्रेरी पॉप टू सेमी क्लासिकल और सोलफुल कंपोजिशंस। ये कोक स्टूडियो में शामिल हुई एज कोलैबोरेटिव अप्रोच टू म्यूजिक, और इनका परफॉर्मेंस ऑफ्टन फोकस करता है ऑन वोकल एक्सप्रेशन rather than elaborate vocal ornamentation. और इन्होंने अय्यर रहमान और अमित त्रिवेदी जैसे कंपोजर्स के साथ काम किया है। ओवर द ईयर्स ये काफ़ी रिकोगनाइजेबल वॉइसेस होने लगी है इन कॉन्टेम्प्रेरी हिंदी म्यूजिक। मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ, सुनते रहो हम और भी गाने आपके लिए।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: रिवाइंड सिर्फ रोवा पर।
1: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
2: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
3: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सबडिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटॉर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz।
4: Saves overstocked. Yes, massively overstocked with whiteware, and it all has to go. Need a new washing machine, dryer, fridge or dishwasher today? We've got huge whiteware deals like get an 8kg washing machine for just $4.90 or a 332-litre fridge only $9.99. Plus get a massive 36 months interest-free store-wide. TCs and credit criteria apply only at Big Save.
5: Auckland, are you emergency ready? If the unexpected strikes, do you know what to do? Make an emergency plan this daylight saving weekend. Brought to you by Auckland Emergency Management. Make your plan at aem.govt.nz.
6: Hum, time check.
7: Brought to you by Mann Tyres. For all kinds of tyres and mechanical services, open 7 days. Call Mann Tyres on 0800 000 10.
6: Brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
8: Good evening to you with the latest at 9. I'm Jeff Bryan. The Education Minister is being urged to take responsibility for a senior official who warned staff about not leaving an OIA-able paper trail. Labour MP Jenny Anderson says the buck stops with Erica Stanford. Erica Stanford says the matter does fall short of expectations, but it's being dealt with. The Greens are vowing to crack down on political interference from big money. It's proposed capping one-off party donations at $30,000 if elected. The reduction of Tarakihi limits, commercial limits for eastern fisheries have been cut by 20%, the western fisheries by 55%, and the recreational daily limit drops to 10 per person. In sport, the basketball, something new for the Breakers tonight in half an hour. They're playing the Bullets in the first open-air NBL game in Brisbane. And cricket, global giants India have played what was supposed to be a T20 match against cricketing powerhouse Japan, the game in Japan. Because of the condition of the ground, it turned into a 5-over shootout. It went to the last ball. India won by 2 runs.
7: Sports News.
6: Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. Non-stop Bollywood. Hum. Playing Bollywood's biggest hits.
9: 9 नाइट कैफे में मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ और स्वागत है आपका। प्यारे प्यारे गाने लेकर मैं आ गया हूँ आपका साथ देने के लिए और मिडनाइट तक हमारा साथ रहेगा तो आपको हमारा साथ देना है क्योंकि अब यहाँ से लेकर 12 तक एवरी आवर पर न्यूज़ एंड स्पोर्ट्स अपडेट होगा जैसे ही घंटे की शुरुआत होती है और तुरंत उसके बाद बैक टू बैक सॉन्ग्स लेकर आएंगे 30 मिनट्स के लिए। तो आप ज़रा सोचिए अभी इस घंटे पर पहला जो सेगमेंट अभी मैं पेश करने जा रहा हूँ, फिर 10 PM न्यूज़ एंड स्पोर्ट्स अपडेट के बाद होगा, फिर 11 PM भी होगा, तो दो और इसके बाद आप इन्जॉय कर पाएंगे। तो तकरीबन इतने सारे गाने जो मैं लेकर आया हूँ, 20-30 गानों से गाने जो है बहुत ही बेहतरीन लिस्ट है, आप वो भी इन्जॉय कर पाएंगे। तो हमारा साथ देते रहिएगा टिल मिडनाइट नाइट कैफे में। फिलहाल फर्स्ट सेगमेंट ऑफ नॉनस्टॉप म्यूजिक फॉर द 30 मिनट्स जो होता है आपके लिए, आप इन्जॉय करें। प्यारे प्यारे गाने मैं लेकर आया हूँ। एन्जॉय एवरीवन।

You are listening to Hum Playing Bollywood's Biggest Hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ Unfiltered Drive. सुनना ना भूले पॉडकास्ट की अगर बातें करें तो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर बातें होती है. ये इलेक्शन ईयर है तो ड्राइव शो में स्पेशल इलेक्शन सेगमेंट आता है एवरी थर्सडे फ्रॉम 5 PM टू 6 PM, जिसके जरिए आपको तैयार किया जा रहा है और आपके अंडरस्टैंडिंग को और भी बेहतर बनाने के लिए ये सेगमेंट लाया जाता है टू हेल्प यू अंडरस्टैंड द पॉलिसीज एंड पोजिशंस ऑफ द पार्टी शेपिंग न्यूजीलैंड्स फ्यूचर. तो फर्स्ट एपिसोड में एक्ट पार्टी लीडर डेविड सीमोर रिज़बे और सैंडी के साथ एक ओपन कन्वर्सेशन का हिस्सा बनेंगे अबाउट एक्स पॉलिसीज एंड हिज विजन फॉर न्यूजीलैंड. और ट्रीटी ऑफ वाइटांगी और कमेंट्स मेड बाय परमजीत परमार, इमिग्रेशन के मुद्दों पर बातें होंगी, एक्स प्रपोजल टू फ्रीज द अडल्ट मिनिमम वेज और अदर इश्यूज शेपिंग द कंट्री, इन मुद्दों पर बातें होंगी आपके लिए. तो फिर अनफिल्टर्ड ड्राइव सुनना ना भूले. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ और भी पॉडकास्ट के बारे में बातें करेंगे, खासतौर पर ब्रेकफास्ट कैचअप पॉडकास्ट पर बहुत ही जल्दी आपके लिए.

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: ड्राइविंग यू होम Drive Show with Sandy and Rusby.
3: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हुआ
4: ये गलत बोल दिया यार
3: और पहनता भी नहीं है उसको
4: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार वो पहन के यार क्या करूं मैं अभी बेचने के लिए कोई लेगा क्या रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ
3: इंटरेस्ट
5: ब्रांड हो गया
4: अभी ब्रांड हो गया ना
3: रुस्बे के बाल लगे उस
2: The Drive Show with Sandy and Rusby brought to you by Beds R Us, Manuka and Poke Kohe. Massive home show deals available in store now. Only at Beds R Us, Manuka and Poke Kohe. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
6: Proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
7: Indelible Homes, your building expert.
8: Hey Neha, congratulations on your first home. तूने तो कहा था कि दो banks ने loan देने से और एक famous broker ने तो case लेने से ही मना कर दिया था. फिर ये घर कैसे?
9: अरे ये तो Logic Finance के गुरु Kendola का कमाल है. एक real estate वाले ने उन्हें suggest किया. मैंने उन्हें Facebook पर ढूंढा और directly contact किया.
8: Neha, अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ.
10: First home buyer बनना है या investment property लेनी है? तो आज ही call करें Logic Finance के गुरु Kendola को on 0800 Logic Guru.
0: Bollywood का असली blockbuster.
11: पूरे शहर पे कब्जा होगा, राज होगा.
0: Playing Bollywood's biggest hits. Night Cafe on Hum. You're listening to Krish.
12: Let's go!
13: You are listening to number one, हम playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ और प्यारे गानों के साथ साथ इंटरेस्टिंग खबरें. वैसे रोवा पर भी आप हम म्यूजिक स्टेशंस का मजा ले पाएंगे. हम रिवाइंड में आपको मिलेगा बॉलीवुड्स गोल्डन ईरा 60s और 70s के हिट्स. 80s जुक बॉक्स में आपको मिलेंगे 80s ईरा ऑफ बॉलीवुड सॉन्ग्स. और फीजी भजन में आप वर्ल्ड्स फर्स्ट 24/7 फ्री फीजी भजन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को एंजॉय कर पाएंगे, जिसमें भजन फ्रॉम फीजीज बेस्ट आर्टिस्ट एनी टाइम एनी वे आपको मिलेगा. चढ़ती कला पंजाबी हिट्स, बैक टू बैक पंजाबी हिट्स ओनली ऑन रोवा. फिजी कीर्तन संग्रह, बिगर चॉइस ऑफ कीर्तन आर्टिस्ट अब हम फिजी कीर्तन संग्रह में आपको मिलेगा. ये भी हमारा एक हम म्यूजिक स्टेशन है ऑन रोवा. यहाँ पर न्यू पूल ऑफ कीर्तन को एड कर दिया गया है जो आप इंजॉय कर पाएंगे. राहत फतेह अली खान के गाने, लव ऑफ सूफी और कवालीज अगर है आपका तो फिर आप चेकआउट करें म्यूजिक स्टेशन ऑफ राहत फतेह अली खान. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ और भी प्यारे गाने आपके लिए.

0: moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: आपसे रैप का नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. अगर आज आपका जन्मदिन है, अ वेरी हैप्पी बर्थडे एवरीवन जिनका आज जन्मदिन है एंड दोज हु आर सेलिब्रेटिंग. आई एम श्योर आज बहुत कुछ घर पर किया गया है या फिर वीकेंड के लिए भी आपने प्लानिंग बनाकर रखा है, तो फिर टीम हम की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं. आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू विश एवरीवन अ हैप्पी बर्थडे जो ऑनलाइन हमें सुन रहे हैं. अगर आप आउटसाइड ऑफ न्यूजीलैंड हो या फिर आउटसाइड ऑफ ओकलैंड हो, आप हमें रोवर के जरिए सुन रहे हैं तो बिग शाउट आउट टू ऑल आवर रोवर लिसनर्स, क्योंकि आपको हम हमेशा याद करते हैं. आप हमसे दूर होकर भी हमें अपने बहुत ही करीब रखते हैं थ्रू रोवर. तो आपके लिए अगला गाना सुनते रहो हम. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ.

0: का मोमेंट, क्रिश का मैजिक, ओनली ऑन हम.
1: You're listening to number one, I'm playing Bollywood's biggest hits. Krish ke saath hai Rova. Agar aapne abhi tak download nahi kiya hai to zarur kijiyega. Rova ko use karne mein bahut fayde hain. Aapko pata hai bahut sare competitions bhi Rova ke zariye hote hain. Hamare music plus stations bhi aap Rova par sun payenge. Hum rewind ho, hum 80s jukebox ho, Fiji bhajans ho ya chardi kala Punjabi hits ho, Fiji kirtan sangra ho ya phir Rahat Fateh Ali Khan ke sufi aur qawwali songs ka ek bahut hi pyara list ho. तो ये सभी कुछ आपको रोवा पर ही मिलेंगे. तो रोवा पर पॉडकास्ट का भी एक्सेस आपको मिल सकता है. तो इस तरह से आप बहुत फ़ायदे में रहते हैं. कॉम्पिटिशन्स और प्राइजेस जीतने के लिए भी रोवा बहुत ही फ़ायदेमंद है. तो आज ही डाउनलोड करें आपके फ़ायदे के लिए. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. सुनते रहो हम, नाइट कैफे जारी है एंड इट विल बी फॉर यू अंटिल मिडनाइट. मैं क्रिश आपके साथ देता रहूँगा.

0: 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबी, टिकट्स बुक हो गए।
0: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
0: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
2: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
3: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
4: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर द ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम।

0: का मोमेंट, क्रिश का मैजिक, ओनली ऑन हम.
1: You're humming along with Krish on your number one hum, playing Bollywood's biggest hits. Night Cafe आपके लिए जारी है. Breakfast catch-up, ये podcast भी सुनना ना भूले. Topic है Beyond the Debt. What does success actually mean? Vijay और Pooja बातें करेंगे about how society measures success, from home loans to marriage, और क्यों listeners are redefining what is truly what it truly means to be settled. तो BF text करे 5599 पर, full audio आपको यहाँ पर मिल जाएगा. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ, सुनते रहो हम और भी प्यारे गाने आपके लिए.

0: Supermarket Newlyn, Namaste New Zealand Immigration Services, Indelible Homes, Gem Entertainment, Tradeworks Group, Classic Automotive Solutions Limited, Malolo Rentals and Tours, or IIIA Science. जानकारियों के लिए हम सुनते रहें।
1: सुनो आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया, घर बेचने को कह रहे थे।
2: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं, लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं। डेवलप करना बेहतर लगता है, पर पैसों का डर है।
1: इसीलिए NZPMI से बात कर लो, वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं।
3: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं, आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है। आज ही NZPMI के पॉल से बात कीजिए। NZPMI, टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस। कॉल पॉल ऑन 0800-4NZPMI.
4: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients. Free wins and ACC codes. Or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09-277-6644. T's and C's apply.
5: Hey Neha, congratulations on your first home. तूने तो कहा था कि दो दो banks ने loan देने से और एक famous broker ने तो case लेने से ही मना कर दिया था। ये घर कैसे?
6: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है।
7: एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया, मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कांटेक्ट किया।
5: नेहा अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ।
8: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक गुरु।
9: Time check. Brought to you by Maan Tires. For all kinds of tires and mechanical services. Open 7 days. Call Maan Tires on 0800-00010.
10: Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
11: Good evening to you. With the latest at 10, I'm Geoff Bryan. Finance Minister Nicola Willis believes more people would be working if the Reserve Bank had done better during COVID. A review has found the central bank was slow to take its foot off the policy gas. Search crews scouring a South Westland lake for a plane that disappeared in 1978 say an object sighted today does not appear to be an aircraft. Sonar equipment has been used to scan the lake bed. Two people, a man and a woman, face charges over a string of offences targeting dairies and businesses across Whanganui. They say the incidents were also shared on social media, viewed by thousands online. In sport, rugby with All Blacks Travel and Hospitality.com, some big decisions looming for New Zealand rugby at a summit meeting on Thursday. NZR reportedly has three competition options on the table for discussion. And some encouraging news for All Blacks head coach Dave Rennie with the Bledisloe Cup matches next month. Leicester Fainga Anuku was injured in early June. He's on the bench for Tasman for Thursday night's NPC clash against Bay of Plenty in Nelson.
12: Sports News.
10: Brought to you by

0: Murphy on Hum. Aapka Moment. Krish ka Magic. Only on Hum.
1: आप सुन रहे हैं आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूं. अगर आज आपका जन्मदिन है, अ वेरी हैप्पी बर्थडे एवरीवन जिनका आज जन्मदिन है एंड दोज हु आर सेलिब्रेटिंग. आई एम श्योर आज बहुत कुछ घर पर किया गया है या फिर वीकेंड के लिए भी आपने प्लानिंग बनाकर रखा है, तो फिर टीम हम की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं. आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू विश एवरीवन अ हैप्पी बर्थडे जो ऑनलाइन हमें सुन रहे हैं. अगर आप आउटसाइड ऑफ न्यूजीलैंड हो या फिर आउटसाइड ऑफ ओकलैंड हो, आप हमें रोवर के जरिए सुन रहे हैं, तो बिग शाउट आउट टू ऑल आवर रोवर लिसनर्स, क्योंकि आपको हम हमेशा याद करते हैं. आप हमसे दूर होकर भी हमें अपने बहुत ही करीब रखते हैं थ्रू रोवर. तो आपके लिए अगला गाना सुनते रहो हम. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ.

0: ब्रांच नहीं है।
1: सुनते रहो आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स क्रिश के साथ है। हम कीर्तन संग्रह रिकॉर्डिंग ये 25 सितंबर को होने जा रहा है और वैदिक सेंटा में ये होगा पापटोए में। रिकॉर्डेड कलाकारों के कीर्तन आप रोवा पर हम फीजी कीर्तन संग्रह पर सुन सकेंगे। ज्वाइन दी हम टीम टू सी हाउ इट ऑल हैपेंस। एंट्री इज फ्री फॉर ऑल। रिफ्रेशमेंट्स और कावा भी यहाँ पर बेचा जाएगा। You will also have the opportunity to win prizes. तो यहाँ पर आप पहुँच जाए। याद रहे हम कीर्तन संग्रह रिकॉर्डिंग फ्राइडे 25 सितंबर को वैदिक सेंटर पापटोई में होगी। मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ।

ट्यूसडे नाइट कैफे यहीं पर ख़त्म होता है दोस्तों, आपने हमारा साथ दिया, थैंक यू सो मच, बहुत ही प्यारा लगा। अब हमारी मुलाकात होती है एक बार फिर कल वेंसडे नाइट कैफे लेकर आ जाऊंगा, और याद रहे कल जबकि वेंसडे तो मिड वीक मसाला लेकर आएंगे बॉलीवुड की ताज़ा तरीन खबरें आपके लिए। अपना बहुत ही ख्याल रखें, गुड नाइट एवरीवन, कल मिलते हैं।

0: उस पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती हैं रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
1: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ थे।
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट। बॉलीवुड का असली ब्लॉकबस्टर,
2: पूरे शहर पे कब्जा होगा, राज होगा।
0: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।
3: नाइट फ्लाइट।

0: as Supermarket New Lin, Namaste New Zealand Immigration Services, Indelible Homes, Gem Entertainment, TradeWorks Group, Classic Automotive Solutions Limited, Malolo Rentals and Tours, or IIIA Science. जानकारियों के लिए हम सुनते रहें।
1: सुनो, आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया। घर बेचने को कह रहे थे।
2: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं, लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं। डेवलप करना बेहतर लगता है, पर पैसों का डर है।
1: इसीलिए NZPMI से बात कर लो, वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं।
3: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं, आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है। आज ही NZPMI के पॉल से बात कीजिए। NZPMI, टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस। कॉल पॉल ऑन 0800-4NZPMI।
4: राज, रोमांस, एक्शन और सुपरनैचुरल पावर से भरी कहानी, एक थ्रिलिंग फैंटेसी एडवेंचर, द वन, स्टारिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना।
5: इस वन की काली शक्ति रात के साए से भी काले।
4: द वन, रिलीजिंग इन सिनेमास ऑन 25th September।
6: अब मुझे धीरे धीरे समझ आ रहा है, जो कुछ भी हो रहा है सब एक नंबर की बकवास।
4: डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स, रेटिंग TBC।
7: हमें माता का बुलावा आया है।

0: फिल्टर्स पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती है रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
1: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं।
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट।
2: कॉमनवेल्थ वॉल्ट आपके प्रेशियस बिलोंगिंग्स को रखता है सेफ और सिक्योर। गोल्ड, बुलियन और प्रेशियस मेटल्स की वैल्यू जब

0: ऑल टाइम हाई पे है, तब ये पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है कि आपके एसेट्स थेफ्ट और नेचुरल डिजास्टर से प्रोटेक्टेड रहें। जब आप अपने वैल्यूएबल्स कॉमनवेल्थ वॉल्ट को इंट्रस्ट करते हैं तो आपको मिलता है पीस ऑफ माइंड, ये जानते हुए कि वो सेफ, सिक्योर और प्रोटेक्टेड रहेंगे। कॉमनवेल्थ वॉल्ट, सिक्योरिंग योर वैल्यूएबल्स फॉर अ लाइफटाइम एंड बियॉन्ड। डिटेल्स एट commonwealthvault.co.nz. That's commonwealthvault.co.nz.
1: The beat of Bollywood.
2: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।

0: The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हुआ.
2: ये गलत बोल दिया यार.
1: और पहनता भी नहीं है उसको.
2: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन लिए पहन के यार. क्या करूँ मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
1: इंटरेस्ट
3: ब्रांड हो गया अभी.
2: अभी ब्रांड हो गया ना.
1: रुस्बे के बाल लगे उस.
0: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us, Manukau and Pukekohe. Massive home show deals available in store now. Only at Beds R Us, Manukau and Pukekohe. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jenku.
4: It's normal to feel low sometimes. Just like how the weather changes, so can our moods. Pay attention to your feelings. Reach in and check how you're doing. Reach out and talk to someone you trust. If you need to talk with a trusted professional, Asian Family Services is here to support. Call the Asian Helpline on 0800-862-342 for free, confidential support. If you or someone you know is in immediate danger, please call 111 or Emergency Services.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: रिवाइंड सिर्फ रोवा पर।
1: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and on-site cremations. 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88600.
2: Settle, win, escape. Finance World is about to take you further with a trip to Bali. Settle kijiye

0: अपना होम लोन अब 500,000 या उससे ज्यादा फाइनेंस वर्ल्ड के साथ एंड यू ऑटोमेटिकली इन द ड्रॉ टू विन अ ट्रिप टू बाली फॉर टू 5 days 4 nights दो लकी विनर्स हर एलिजिबल होम लोन ऑफ 500,000 या उससे ज्यादा ऑटोमेटिकली आपको ड्रॉ में एंटर करता है टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई विजिट financeworld.co.nz/bali फाइनेंस वर्ल्ड लिमिटेड इज अ रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइस प्रोवाइडर
1: वेलकम टू कबाब्स किचन आई एम शेफ एलेक्स और ये है मेरी गेस्ट सेरा
2: बनाते हैं इन कबाब को स्पेशल शेफ एलेक्स
1: परफेक्ट ब्लेंड ऑफ स्पाइसेस टेंडर मीट और फ्रेश वेजिटेबल्स हर कबाब बनता है विद लव एंड पैशन
2: वाओ दीस कबाब्स आर अमेजिंग स्पाइसेस एकदम राइट एंड मीट इज सो ज्यूसी
1: ये है अम्मास कबाब्स प्रॉमिस डिलीवरिंग हैप्पीनेस बाइट बाय बाइट अम्मास फूड एट योर नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी और हलाल बुचरी स्टोर्स
2: 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव
3: Playing Bollywood's biggest hits.
4: Wow.
3: Night Flight.

0: में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: Every dream begins with a first step, including the dream of calling a place home. At Mega Finance, we help make that happen. Buying your first home with a 5% deposit, new to New Zealand. Refinancing, building, investing, or buying a business or commercial property. Parmesh can help. With 30 plus years of banking experience, get personalized advice and lending solutions tailored to you. Call 0800 Mega Finance. Home loans made easy. That's 0800 634 234. TCs and lending criteria apply.

0: 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाने चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम।
6: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो।
7: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
8: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सबडिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजन आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz।
9: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे।
10: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
9: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है। शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोटो।
11: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो। सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर गोल्ड।
0: Playing Bollywood's biggest hit.

मीराबाई से लोगों ने प्रश्न किया कि चलो हमने माना कि तुमने गोविंद मोल लिया है, तो जब भी कुछ मोल लिया जाता है तो उसका कुछ मूल्य होता है, तभी तो खरीदा जाता है। तो तुम्हारे गोविंद का मूल्य क्या है हमें भी बता दो, हम भी खरीद लाए। अब मीराबाई का भक्तिपूर्ण उत्तर सुनिए।

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
3: That is very that is a very acceleration.
2: That's a very acceleration. Yeah.
3: Amazing acceleration.
2: This is my fancy English. That's a very.
3: अरे होता है यार, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Monaco.
1: Weekdays 6 to 10 a.m.
2: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते।
3: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा।
4: अब हमारा क्या होगा?
5: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना
3: तो क्या करें?
6: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना। That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
7: राज, रोमांस, एक्शन और सुपर नेचुरल पावर से भरी कहानी, एक थ्रिलिंग फैंटेसी एडवेंचर, द वन, स्टारिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा, एम तमन्ना।
8: इस वन की काली शक्तियाँ रात के साये से भी काले।
7: द वन रिलीजिंग इन सिनेमास ऑन 25th September।
9: अब मुझे धीरे धीरे समझ आ रहा है, जो कुछ भी हो रहा है सब एक नंबर की बकवास।
7: डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म, रेटिंग TBC।
10: हमें माता का बुलावा आया है,

0: $10 and get fast free delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
1: Uber drivers, if you already have a claim with Not Your Fault Services, it is moving forward and one of their claims managers will be in touch. If you have not applied, intake 4 is open. Not Your Fault Services phone team is at capacity. So please don't call, apply online instead at nyfservices.com. That's nyfservices.com.
2: Check.
3: Brought to you by Mann Tires for all kinds of tires and mechanical services. Open 7 days. Call Mann Tires on 0800-00010.
4: Good morning, it's the Vitik Chipotre here.
2: Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
5: Morning, I'm Grace Cocker with the latest at 6. The scrapping of the RMA is being touted as the biggest overhaul of the country's planning system in 3 decades. Minister in charge Chris Bishop says it's a great moment.
6: For 30 years, the RMA has held New Zealand back from its full potential. We are restoring the freedom for New Zealanders to shape their own futures by using property as they choose.
5: Police describe a case of alleged officer impersonation in the Eastern Bay of Plenty as traumatic for the victims. Two men and a woman are accused of tricking two young people into believing they were detectives and detaining them. One of the offenders was in possession of a former police vehicle. Charges laid include police impersonation, intimidation, indecent assault and kidnapping. Striking firefighters are turning up the heat on Fens. A petition with more than 50,000 signatures calls for an independent inquiry into the organisation's finances. Union spokesperson Watty Watson says they need more accountability.
7: We do not believe that they are transparent and completely honest with us, and New Zealand needs to be very concerned.
5: And Scenic Hotel Dunedin City will remain closed for a third night as a gas-like smell is investigated. 130 guests were evacuated when it was detected in the basement. Emergency crews handed the hotel back to staff after first responding on Monday, but the smell returned yesterday afternoon. To last night's Aussie NBL game in Brisbane on Sky Sport.
8: Jackson Cartwright on the move, throws up a prayer. It doesn't count and the Bullets win at home.
5: The Breakers missing a three-pointer as the Bullets won 88-85 at a sold-out Pat Rafter Arena. And to rugby with the All Blacks travel and hospitality.com, Bledisloe Cup hospitality packages selling at Eden Park now. The Springboks have made 13 changes for Sunday night's test against the Wallabies in Perth.
2: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill.
9: Hum par shok suchnaye aap tak late hai. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations.
10: सूचित किया जाता है कि नांदी फिजी के भूतपूर्व निवासी स्वर्गीय सोमैया राजू के पुत्र कवित और कविनेश राजू के पिता यानी चंद्रकांता राजू के पति वतुअलेवु हाई स्कूल तथा संगम कॉलेज नांदी के भूतपूर्व अध्यापक चंगल राजू की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार आज 1 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑन साइट क्रिमेशंस 11 बोल्डवुड प्लेस वीरी में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 027-300-7034 पर संपर्क कर सकते हैं। नांदी फिजी के भूतपूर्व निवासी स्वर्गीय सोमैया राजू के पुत्र यानी कवित और कविनेश राजू के पिता तथा चंद्रकांता राजू के पति वतुअलेवु हाई स्कूल तथा संगम कॉलेज नांदी के भूतपूर्व अध्यापक चंगल राजू की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार आज 1 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑन साइट क्रिमेशंस 11 बोल्डवुड प्लेस वीरी में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 0273-007-034 पर संपर्क कर सकते हैं।
9: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी।
2: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
11: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
2: Bollywood's biggest hits. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
4: सुपर सिटी ऑकलैंड में आज का मौसम अगर देखा जाए तो 12.7 डिग्री टेम्परेचर है फिलहाल। हाई ऑफ 16 एक्सपेक्टेड है आज बाद में चलकर। ओवरनाइट टेम्परेचर 4 डिग्री तक रहेगा। मौसम के बारे में कहा गया इट्स गोइंग टू बी अ क्लाउडी डे विद फ्यू मॉर्निंग एंड आफ्टरनून शावर्स और एट टाइम्स तेज रफ्तार से हवा चलने की भी चेतावनी लागू की जा रही है। सनराइज इसी घंटे 6:09 AM पर यानी अभी से करीबन 5 मिनटों में होगा। सनसेट आज का 6:19 PM पर होने को है।

0: Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Manukau. Spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Manukau.
0: Breakfast catch up.
2: हेलो क्यूरा, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम टू हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. 4 मिनट हो रहे हैं समय हमारे स्टूडियोज में 6:00 और आज है वेंसडे द 23rd of September. गुड मॉर्निंग आपको.
3: गुड मॉर्निंग एंड स्वागत है आपका आज के इस सुबह हमारे इस बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम में. और होपफुली कल के एक लंबे दिन के बाद, थोड़ा आराम करने के बाद, आज रिफ्रेश्ड और एनर्जाइज्ड आप तैयार होंगे फॉर येट अनदर डे.
2: एब्सोल्युटली, हम तो आगे हैं आपका साथ देने के लिए एज प्रॉमिस्ड. और अभी से लेकर ठीक 10 बजे तक हम आपके साथ जरूर बने रहेंगे, जहां पर शुरुआत हो रही है ब्रेकफास्ट कैचअप के साथ. एंड इफ यू आर न्यू टू द शो, तो आपको बस रिमाइंड करा रहे हैं कि ब्रेकफास्ट कैचअप इज द फर्स्ट आवर ऑफ द शो, जहां पर हम कैचअप करते हैं मेनली उन चीज़ों के साथ जो ओवरनाइट होती है. एज वी स्टार्ट द मॉर्निंग राइट हियर 104.2 FM पर या रोवर ऐप पर अगर आप हम सुनते हैं तो जो भी हमारे हाथ लगती है खबरों के मामले में, एंटरटेनमेंट के मामले में, इंफॉर्मेशन के मामले में, ये सब हम आपके साथ शेयर करते हैं.
3: और इन 4 घंटों के सफर में सिर्फ अपनी हम नहीं कहते, आपकी बातें जो हैं ये भी सुनते हैं. तो शामिल रहें इस प्रोग्राम में. आज इनाम जीतने के मौके, आपके मन चाहे गाने, कुछ दिलचस्प जानकारियां, महत्वपूर्ण बातें, ये सब कुछ आपके लिए बारी बारी से रहेगा.
2: तो आज हमारे साथ ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा वेंसडे 23rd of September की सुबह की शुरुआत करने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया.

0: முடியாது.
1: चलिए बारी है कि आज की सनी साइड अप स्टोरी जो है ये हम आपके साथ शेयर करें. एवरी मॉर्निंग जब हम कोई भी स्टोरी आपके लिए लेकर आते हैं, देन आई हैव नोटिस्ड कि वो ऐसी स्टोरीज होती है जो कहीं ना कहीं कम्युनिटी से जुड़ी हो, एज इन समवन डूइंग समथिंग गुड आउट देयर फॉर द पीपल ऑफ द कम्युनिटी, या फिर वहाँ पे यू नो किसी पर्टिकुलर लोग के लिए, जानवर के लिए, ऐसी कहानियाँ जो है ये आपके लिए हम ज़रूर लेकर आए हैं. बट ऑल दीज थिंग्स एंड एक्ट्स ऑफ काइंडनेस जो है इसकी शुरुआत तो खैर घर से ही होती है, और ऐसे में अगर ऐसा कोई सिचुएशन सामने आए देन व्हाई नॉट टॉक अबाउट इट. आज आपके लिए कहानी हम लेकर आए हैं, दिस इज अबाउट अ बॉय जो यूएसए में रहते हैं और ये 11 साल के हैं.
2: ओके.
1: ये वायरल हुए रिसेंटली जब इनकी माँ ने इनके बारे में एक चीज जो है ये शेयर की. इनकी माँ जो है ये इज अ सिंगल मदर, और व्हेन एक्चुअली शी गॉट होम वन डे अपने काम पर से, तो इनको एक बहुत ही प्लेजेंट सरप्राइज जो है ये मिला. इनका नाम है फ्रांसिस्को, और फ्रांसिस्को जो है ये हमेशा नोटिस करते कि इनकी माँ जब भी घर आती तो काफ़ी टायर्ड रहती, और उसके बावजूद वो जल्दी जल्दी इनके लिए खाना बनाती, घर का सारा काम करती, और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे की तैयारियों में लग जाती, एंड शी वुडंट गेट टाइम फॉर हरसेल्फ. इन वन डे ही डिसाइडेड कि वो अपनी मम्मी को सरप्राइज करेंगे, जहाँ पर जब एक दिन उनकी माँ काम पर से घर आई तो उन्होंने देखा उनका 11 साल का बेटा जो है इन्होंने घर का सारा काम कर खाना बना कर रखा हुआ था, एंड ही वॉज वेयरिंग एन एप्रन और हेयर नेट पहनकर अपनी माँ के लिए उन्होंने राइस और फ्राइड चिकन ये तैयार किया विद अ ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस जो उन्होंने उनको सर्व किया. एंड इस पूरे अरेंजमेंट के साथ उन्होंने एक ब्यूटीफुल से स्माइल के साथ अपनी मम्मी को घर के अंदर वेलकम किया. एंड दिस पर्टिकुलर सिंपल जेस्चर जो उन्होंने अपनी माँ के लिए किया, जो उनकी माँ ने ऑनलाइन शेयर किया, इट एक्चुअली बिकेम द फैक्ट कि कभी कभी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं जो हमें लगता है कि बच्चे नहीं समझते, बच्चे नहीं नोटिस करते, बट एक्चुअली दे डू. एंड जब वो ऐसी छोटी चीज़ें अपनी ओर से कुछ ना कुछ करते हैं, इट बिकम सच अ ग्रैंड जेस्चर, लाइक सच अ बिग थिंग. और इसी वजह से कहीं ना कहीं उनकी माँ ने उनके लिए ये जो अप्रिसिएशन है ये ऑनलाइन पब्लिश किया, और उसके बाद चलकर लोगों ने भी इनके इस एफर्ट को अप्रिशिएट करना शुरू किया, इनकी तारीफ की कि एक 11 साल का बच्चा जो है ये समझ गया कि उनकी माँ कितनी थक जाती है जब वो घर आती है. एंड टू मेक हर फील रिलैक्स्ड एंड वेलकम एट होम, जब वो घर आए उन्होंने उनके लिए खाना बनाया, घर का सारा काम किया, एंड एज सून एज शी एंटर्स द हाउस एक स्माइल के साथ उनका वेलकम करना बिकम्स सच अ बिग डील, यू नो.
2: या एंड यू नो जब इस तरह की चीज़ें होती हैं और जब अपना कोई करता है तो कभी कभी जो आप फील करते हैं उसे एक्सप्रेस करना भी मुश्किल हो जाता है.
1: एब्सोल्युटली, यू बिकम सब इमोशनल ना.
2: या
1: कि यार ऐसा कैसे हो गया, आप इवेलुएट करना शुरू कर देते हो. बट इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल जेस्चर, और जैसे कि हम कहते हैं कि हर ब्यूटीफुल चीज़ की शुरुआत कहीं ना कहीं खुद से होती है, अपनों से होती है, अपने घर से होती है. एंड ये जो कहानी है इट एक्चुअली वेंट वायरल फॉर ऑल द राइट रीजंस. तो आज की हमारी सनी साइड अप स्टोरी जो आपके लिए हम लेकर आ रहे थे, ओनली ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. 16 मिनट हो रहे हैं सुबह हमारे स्टूडियोज में 6:00. गुड मॉर्निंग आप सभी को, जितने भी लोग हमारे साथ जहाँ कहीं भी यू नो जुड़े हुए हैं. सबसे पहले तो आज अगर देखा जाए तो सुबह सुबह मैसेज जो है ये आया बोभीमान जी का, 3 बजे से पहले इन्होंने आज अपना गुड मॉर्निंग मैसेज जो है ये हमें सेंड कर दिया. तो थैंक यू सो मच बोभीमान जी आपके मैसेज के लिए, आपके साथ के लिए. गुड मॉर्निंग पूजे एंड विजय गणेशस ब्लेसिंग्स, गणपति बप्पा मोरिया, एंजॉय योर डे इन्होंने कहा है. थैंक यू सो मच, आपको भी विशिंग यू द वेरी सेम.
2: राम राम, जय माता दी एवरीवन, हैप्पी वेंसडे, हैव अ गुड डे. मिस्टर मटा मटा, आपको भी ये दिन ये सुबह बहुत बहुत बार शुभ और मुबारक हो.
1: और इसके अलावा ऐश का मैसेज आया है फ्रॉम पामस्टन नॉर्थ, बड़े दिनों बाद ना.
2: Yeah.
1: तो इन्होंने कहा राम राम, गुड मॉर्निंग गाइज, होप यू गाइज हैव अ गुड डे, हाउ यू फील बेटर. थैंक यू सो मच ऐश, आई एम ट्राइंग टू फील बेटर.
2: या काफी दिनों बाद आज ब्रेकफास्ट शो में आपका मैसेज आया, सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम. रवनेश मुदलियार, गुड मॉर्निंग एंड नमस्कारम. विजय पूजा एंड ऑल लिसनर्स ऑफ हम, हैव अ हैप्पी डे, आपको भी ये दिन ये सुबह बहुत बहुत बार शुभ और मुबारक हो.
1: तो थोड़ी देर बाद लेकर आएंगे कि दुनिया भर में खबरों के मामलों में क्या कुछ हमारे हाथ लगा है ग्लोबल हेडलाइंस पे, ये आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं. लेटेस्ट दिस आवर बॉलीवुड की आज की पहली खबर और आज का हमारा पहला सवाल, ये भी आपके लिए हम लेकर आएंगे, जहां आप हमारे साथ सवाल का जवाब देते हुए प्रोग्राम का हिस्सा जरूर बन सकते हैं.

0: Newlyn, Namaste New Zealand Immigration Services, Indelible Homes, Gem Entertainment, Tradeworks Group, Classic Automotive Solutions Limited, Malolo Rentals and Tours, or IIIE Science. जानकारियों के लिए हम सुनते रहें.
1: Professional Financials है साथ आपके लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे. No broker charge, बस trusted advice. हर डील बनाए perfect right.
2: Refinance के लिए compare करें different banks. Loan process हो simple and frank.
1: Business finance या income protection हो, हर step पर guidance perfect हो. सब कुछ मिलेगा यहीं. अपना future secure बनाए.
2: Professional Financial Solutions, your future our priority. Call 09846-9934 or search PFSL. T's and C's, lending and credit criteria apply.
3: Auckland, are you emergency ready? If the unexpected strikes, do you know what to do? Make an emergency plan this daylight saving weekend. Brought to you by Auckland Emergency Management. Make your plan at aem.govt.nz.
4: It's Briscoe's birthday, and we're celebrating with a huge $25,000 birthday cash giveaway. Take the pressure off your mortgage or treat yourself to something special. Briscoe's Club members only. See online for T's and C's.
5: ANZ is giving away Auckland FC tickets to fill this seat and this seat. And that's it.
6: James, this is a radio ad.
5: Oh, sorry. ANZ is giving away 5,000 free tickets to Auckland FC's first home game of the season. It's our way of thanking the fans and Aucklanders who've backed the club from day one. Now the champs are back for more. So let's give them the welcome home they deserve and pack the stands. Search ANZ Pack the Stands for more information on how to claim your free tickets. T's and C's apply.
7: Auckland, it's time to sit back, relax, and save big. The big sofa and recliner sale is on now at Lifestyle Furniture with up to 60% off. Stylish sofas, comfy lounge suites, or the ultimate recliner. They've got something for every lifestyle. Recliner chairs start from just $399. Visit Lifestyle Furniture at Manukau, Mount Wellington or Westgate. Big style, big comfort, better prices. Hurry, up to 60% off on now.
8: The beat of Bollywood.
9: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
8: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
10: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living Manukau. Spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Manukau.
11: Global Headlines.
12: सुबह के मुख्य समाचारों में, यूएन जनरल असेंबली में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ डील अभी भी पॉसिबल है, लेकिन उनका दूसरा ऑप्शन ईरान को पूरी तरह से नष्ट करना है. ट्रंप ने ग्रीनलैंड सिक्योरिटी अग्रीमेंट पर साइन किया और वहां लार्ज मिलिट्री प्रेजेंस सेट करने का प्लान बताया, जबकि उनका कहना है कि उन्होंने हमेशा पीस को बढ़ावा दिया है. यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ईरान के ऑफिशियल से मिलने के लिए तैयार हैं अगर कंडीशंस सही रहे, जबकि ट्रंप ने यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और वेनेजुएला के एक्टिंग प्रेसिडेंट से भी मुलाकात की. भारत में कर्नाटक में रहने वाले एक व्यक्ति एल्विन प्रकाश कुंदर की शारजा में बेदर्दी से हत्या कर दी गई, जिनकी बॉडी गाड़ी से 9 टुकड़ों में 2 बैग्स में पैक मिली. शारजा एयरपोर्ट पर पिछले 14 सालों से काम कर रहे इस व्यक्ति का जुलाई से कोई पता नहीं था, जबकि उनकी स्कूल टीचर पत्नी और बेटा भी लापता बताए जा रहे हैं. उनके भाई अनिल ने फोन ना उठाने और सस्पिशियस टेक्स्ट मैसेज मिलने के बाद कंपनी से कांटेक्ट किया, जिसके बाद पासपोर्ट चेक करने पर पता चला कि वो यूनाइटेड अरब एमिरेट से बाहर नहीं गए थे. फिजी के प्राइम मिनिस्टर सितिवेनी रंबुका का दावा है कि उनकी सरकार के पास कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करने के लिए जरूरी 2/3 पार्लियामेंट्री सपोर्ट मौजूद है. फिजी विलेज की एक रिपोर्ट के अनुसार रंबुका ने सफाई दी कि कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमीशन रिपोर्ट की रिकमेंडेशंस फाइनल नहीं है, बल्कि कैबिनेट सब कमेटी के चेंजेस के बाद ही बिल पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा. पीएम पर 2-term लिमिट लगाने वाले अमेंडमेंट पर उन्होंने कहा कि बिल पर पार्लियामेंट में दोबारा डिबेट और वोटिंग करवाई जाएगी. रिव्यू प्रोसेस को रश करने के आरोपों को खारिज करते हुए सितिवेनी रंबुका ने कहा कि अगले जनरल इलेक्शंस के लिए ट्रांजिशन प्रोविजंस तय करेंगे कि चुनाव किस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत होंगे. एशियन गेम्स के प्रिपरेशन के लिए खेले गए 5 ओवर के T20 मैच में इंडिया ने जापान को एक थ्रिलिंग मैच में 2 रन से हराया. 33 रन्स के टारगेट का पीछा करते हुए जापान को लास्ट ओवर में 8 रन्स चाहिए थे, लेकिन अक्षर पटेल ने टाइट बॉलिंग करके जापान को 34-3 पर रोक दिया। मैच के आखिरी ओवर में एक लेग साइड बॉल पर अंपायर ने पहले वाइड दे दिया था, जिसे अक्षर और श्रेयस अय्यर के प्रोटेस्ट के अंपायर्स की बात के बाद रिवर्स स्वीप अटेम्प्ट होने के कारण ओवरटेन कर दिया गया। अगर ये नहीं होता तो शायद जापान इंडिया के खिलाफ एक ऐतिहासिक क्रिकेट मैच जीत जाता। पहले बैटिंग करते हुए इंडिया ने श्रेयस अय्यर के 16 रन की बदौलत 32 for 4 बनाए थे, जबकि जापान के 17 या ओल्ड स्पिनर चार्ली हराहिंसे ने 2 विकेट्स लेकर सभी को हैरान कर दिया। फिजी में आईडीसी सोकर टूर्नामेंट के जो पूल रोज हैं ये कल किए गए। ग्रुप आई में लंबासा, रेवा, सुवा और नसीनू की टीमें हैं, जबकि ग्रुप बी में मबा, लोटोका, नावुआ और नांदी है। ये टूर्नामेंट अगले महीने खेला जाएगा। ये रहे सुबह के मुख्य समाचार।
8: बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड,
11: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ,
13: मैं लाऊं अपना ए गेम।
8: ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स।

0: द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा आपके लिए जारी है और हम प्लेइंग बॉलीवुड बिगेस्ट हिट्स। फिलहाल 6:30 बज रहे हैं और बॉलीवुड में भी तमाम चीज़ें हो रही हैं और जो नेशनल फिल्म अवार्ड्स हैं इसकी भी घोषणा कर दी गई है और इसके बारे में डिटेल्स जो हैं ये अब रिलीज हो चुके हैं और जो कंप्लीट विनर्स लिस्ट है इसकी ओर अगर देखें तो बहुत सारे एक्टर्स और जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं उनके बारे में खबरें जो हैं ये सामने आई है और इस लिस्ट की ओर अगर देखें तो कई चीज़ें जो हैं ये कही गई हैं और उनमें अगर सबसे पहले देखें तो फिल्म श्रीकांत उसको एक अवार्ड से सम्मानित किया गया है और जो दादा साहब फाल्के अवार्ड है ये अनंत नाग को दिया गया है। बेस्ट फीचर फिल्म आर्टिकल 370, बेस्ट एक्टर कार्तिक आर्यन चंदू चैंपियन के लिए और ममूती जो एक्टर हैं ब्रह्मयुगम उस फिल्म के लिए उन्हें ये दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस यामी गौतम आर्टिकल 370 के लिए, बेस्ट डायरेक्टर राजकुमार पेरियसामी अमरन के लिए, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर संजय मिश्रा फिल्म भक्षक के लिए, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस रूपाश्री वारकाडी फिल्म मिथ्या के लिए और सचना नमिदास फिल्म महाराजा के लिए, बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर रणदीप हुडा स्वतंत्र वीर सरवारकर उस फिल्म के लिए उन्हें यह अवार्ड दिया गया है। बेस्ट फीचर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट काल्की 2898 AD, बेस्ट फिल्म प्रमोटिंग नेशनल सोशल वैल्यूज कैप्टन मिला, बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म चिन्ना कथाकादू इस फिल्म को दिया गया है, बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट रिद्धिमान बनर्जी तोपोमी देव गीताश्री चक्रवर्ती अरुण देव पोठुला और अतीश एस शेट्टी को दिया गया है, बेस्ट स्क्रीन प्ले सुकुमार पुष्पाटू योगेश देशपांडे स्वर्गंधर्व सुधीर फाड़के, बेस्ट डायलॉग राइटर जो है लकी भास्कर के लिए वेंकी अटलूरी को मिला और भी कई अवार्ड्स जो हैं ये दिए गए हैं। म्यूजिक में अगर देखें बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर आर्टिकल 370 के लिए शाश्वत सचदेव, बेस्ट बैकग्राउंड म्यूजिक जीवी प्रकाश कुमार फिल्म अमरन के लिए, बेस्ट लिरिक्स मनोज मुंतशिर फिल्म मैदान के लिए, बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर अभय जोधपुरकर फॉर नफसाची गौरी माजी जो भरत गणपति का गाना है उसके लिए, बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर वैकोम विजय लक्ष्मी अंगुवाना कोनीलू गाना जो है फिल्म आम के लिए। रीजनल फिल्म्स में अगर देखें तो हिंदी फिल्म्स में श्रीकांत को बेस्ट मूवी अवार्ड जो है ये दिया गया है, साथ में कई अन्य जो रीजनल अवार्ड्स हैं उसके लिए जो सम्मान है ये तुलु तेलुगु तमिल उड़िया मराठी मणिपुरी मलयालम कोंकणी कन्नड़ा और गुजराती साथ में असमी बंगाली और गढ़वाली भाषाओं के लिए दिया गया है।
1: ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा।
2: डोंट माइंड लेकिन आप दोनों की जोड़ी बड़ी क्यूट है।
3: The Property Directory.com.
4: A high of 16, plenty of cloud, but lots of fine spells as well. Into the city, Southern Motorway, Manukau to the city, taking 24 minutes, 40 in from Drury, slow Papakura to Manurewa and at Papatoetoe as well. Southwestern fine, but there is a bit of traffic heading to the airport on at George Bolt. Northern 18 minutes, Constellation to town, we're slow there to Waito Valley. Northwestern, slow Grail into the city, 20 minutes in from Massey.
3: Thinking about property? Everyone you need in one place. ThePropertyDirectory.com.
5: Home loan ke saath thoda cash bhi पाना चाहते हैं, नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट squirrel.co.in से।
6: Indulge in the sumptuous flavors of South Asia at Sudhima Auckland Airport's popular food festival. Their specialist chefs are preparing an exquisite buffet from India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal and more. Gather your family and friends for a memorable evening of food and fun this Labor weekend, 24th and 25th October. Early bird tickets just $75 per person with a welcome drink included. Kids 6 to 12 half price, under 5s free. Book now at sudhimahotels.com/foodfestival.
7: Settle, win, escape. escape. Finance World is about to take you further with a trip to Bali. Settle kijiye apna home loan of 500,000 ya usse zyada Finance World ke saath. And you're automatically in the draw to win a trip to Bali for 2, 5 days, 4 nights, 2 lucky winners. Har eligible home loan of 500,000 ya usse zyada automatically aapko draw mein enter karta hai. Terms and conditions apply. Visit financeworld.co.nz/Bali. Finance World Limited is a registered financial advice provider.
8: Hey, City Rail Link's now open, and our first trip's going to the game.
9: Now I can go east-west on just one train. So my first trip seeing an old friend in Swanson.
10: Our first train ride. We're surprising the kids with Te Waihoretu Station and a movie.
11: See our first trip. Coffee with friends, maybe K Road, maybe Pukekohe.
12: Oh, it'll be our millionth time going to the art gallery, but our first time taking the train.
13: Those all sound great. The City Rail Link's now open, so all aboard with Auckland Transport.
14: You're planning a quick pop to the shops, but then life hits the fan. Luckily, DoorDash now delivers everything from the warehouse. Groceries, PJs, toys, even their new lunchbox, in a dash. Now that's a good call. Dash!

0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living Manukau. Spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Manukau.
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं 23 minutes away from 7:04 now और आज है Wednesday 23rd of September जहां पर on the show आपके लिए इस दौरान हम लेकर आते हैं एक सवाल and it's kind of related to like Bollywood fun जहां पर कोई movie हो कोई गाना हो इसके बारे में questions होते हैं और फिर आप जवाब देते हुए हमारे साथ उसका हिस्सा ज़रूर बन सकते हैं but right now आज जो सवाल आपके लिए हम लेकर आए it's about a particular actor अभी काफ़ी चर्चे में ही गया आई डोंट नो इफ यू हर्ड अबाउट द सिचुएशन गोइंग ऑन एज वेल और नॉट बिग बॉस सीजन 20 इसके शूटिंग के या वीकेंड के वार के एपिसोड में सलमान खान हैड गॉन इन अ सिचुएशन जहां पर वो काफ़ी अपसेट हुए नाराज़ हुए अबाउट द फैक्ट कि कैसे लोग ऑनलाइन बैठे बैठे स्टार्स को सेलिब्रिटीज को ट्रोल करना शुरू कर देते हैं अगर वो वेट गेन करते हैं वेट लूज करते हैं बाल उनके डिफरेंट स्टाइल के होते हैं तो क्या कुछ करते हैं लोग इनफैक्ट बॉडी शेमिंग पर इन्होंने एज शेमिंग पर इन्होंने काफ़ी बातचीत जो है ये की एंड द होल कॉन्वर्सेशन जो है ये एक्चुअली आप अगर सीजन 2 का जो वीकेंड का वार सीजन 20 माफ़ कीजिएगा इसका लास्ट वीक का वीकेंड का वार देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा बट आई डोंट वॉच बिग बॉस तो मुझे ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट नहीं पता आई जस्ट सॉ ऑन रील्स एंड स्टफ और कुछ खबरें मैंने पढ़ी जहाँ पर कटरीना कैफ आपको पता है ना रिसेंटली उनको बहुत ट्रोल किया गया जब वो मुकेश अंबानी और अनीता अंबानी के जो गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशन में पहुंची तो उनके लुक को लेकर और कई लोगों ने तो उनको काफ़ी गंदे गंदे कमेंट्स किए सेइंग कि इनका करियर ख़त्म हो गया जस्ट बिकॉज शी इज़ गोइंग थ्रू पोस्टमार्टम और वेट गेन हुआ है आफ्टर द डिलीवरी ऑफ हर फर्स्ट चाइल्ड और वेट गेन इज़ विजिबल आई मीन आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स द बिग डील बट लोग उनको काफ़ी ट्रोल कर रहे हैं फॉर द वे शी स्टार्टेड लुकिंग नाउ तो उनके वजन के बढ़ने के बाद लोग उनको काफ़ी ट्रोल कर रहे थे इनके सेकंड अपीयरेंस जो है इसके बाद एंड काफ़ी हद तक लोगों ने यू नो अलग अलग तरह की चीज़ें जो है ये बोली उनके लुक्स को लेकर एंड अपेरेंटली वीकेंड का वार एपिसोड में सलमान खान जो है ही वॉज टॉकिंग अबाउट द सेम फैक्ट कि अगर कोई एक सेलिब्रिटी है जो यू नो इन्होंने अभी रिसेंटली शायद बच्चे को जन्म दिया हो माँ बनी है तो ऑफकोर्स इनका वज़न जो है ये बढ़ेगा और अगर उनको फिल्मों में आना है तो फिल्मों में आने से पहले वो अपना वज़न जो है ये घटा लेंगी वो उनकी चॉइस है एंड इट्स बेसिक अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट कि अगर कोई सेलिब्रिटी जो है जिसका वज़न कम हो रहा है उसको लेकर बोलना और ख़ुद के बारे में बातें की कि सोहेल खान जो है ये जब अलायंस में आए थे उसके बाद जब बाहर आए अलायंस जो रियलिटी शो के बाद जब बाहर आए तो उनका विजिबली काफ़ी एक्सट्रीम वेट लॉस जो है ये नोट किया गया और उनको लेकर भी काफ़ी बातें बोली गई सलमान खान ने अपने बारे में भी कहा कि लोग अज्यूम कर रहे भी वो एक नए लुक में ना जहाँ पर ही हैज़ बीन नॉट रिवीलिंग हिज हेड अलॉट हमेशा टोपी में दिखते हैं या बैंडानास में दिखते हैं तो लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया कि इन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है एंड स्टफ लाइक दैट सो ही एक्चुअली गॉट वेरी अपसेट और उन्होंने अपने शर्ट टी शर्ट सब उतार दिए शोड हिज बेयर बॉडी और टोपी भी उतार कर फेंक दी और बोला कि जिसको ट्रोल करना है कर लो ये देखो कि दिस इज़ मी दिस इज़ माई बॉडी दिस इज़ माई हेयर इट्स अ न्यू लुक फॉर द मूवी बट आपको तो लगता है कि हेयर ट्रांसप्लांट है एंड देन ही शेड द फैक्ट कि उनका कोई करीबी दोस्त जो है ये पास्ट हो गया था तो उनके लॉस के रिस्पेक्ट में उन्होंने अपने बाल जो है ये शेव कराए थे एंड ऑल बट ऑन द अदर हैंड ही हैज़ ओपन अप एंड एक्सप्रेस्ड ओपनली अबाउट द फैक्ट कि कैसे ट्रोलर्स को आज़ादी मिल जाती है टू ट्रोल हम आपको एंटरटेन करते हैं मूवीज आपके लिए मेहनत से बनाते हैं एंड व्हेन यू ट्रोल इट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग दैट पीपल डू दैट्स व्हाट ही हैज सेड एंड काफ़ी बातचीत जो इसके बारे में हो रही है तो अ लॉट ऑफ पीपल आर इन फेवर ऑफ हिम द वे ही इज रिस्पॉन्डेड टू द सिचुएशन उनको काफ़ी प्रेज भी किया जा रहा है आज हमने सोचा कि इनके बारे में ही आपसे एक सवाल पूछ लेते हैं एंड सवाल बहुत सिंपल है क्वेश्चन इज सलमान खान जिनका सबसे कॉमन नाम of a character that he has played agar main puchu to kaun sa naam hoga
3: prem
2: yes exactly lekin question is ki inhone kitne filmon mein prem kirdar jo hai ye play kiya matlab inke character ka naam prem tha
3: acha
2: to let's see if you know the answer or if you can figure out the answer bahut aasan sa question hai salman khan inka most common character name jo inhone play kiya would be prem lekin kitne filmon mein inke character ka naam prem raha hai agar aap se puche तो आपका जवाब क्या होगा बी एफ स्पेसी आंसर के नहीं 5599 पर आपको टेक्स्ट करना है अपने नाम के साथ हमारे पास
3: तो लेट्स सी आप में से कितने लोग हैं जो सही सही जवाब जो है ये हमें दे सकते हैं। इतना मुझे कहीं ना कहीं शायद अंदाज़ा था कि प्रेम नाम सबसे ज़्यादा उन्होंने इस्तेमाल किया है, लेकिन कितनी फिल्मों में किया है That's interesting.
2: Right, तो जवाब हम आपको देंगे थोड़ी देर बाद सही वाला, लेकिन फिलहाल आप कोशिश कर सकते हैं जैसे कि हमने कहा BF Space Yon से नहीं, just have to write the number. आपको हर एक फिल्म का नाम नहीं लिखना है। अगर आपको लगता है कि 10 फिल्मों में इन्होंने प्रेम किरदार जो ये प्ले किया तो आप बस BF10 अपना नाम लिखकर 5599 पर भेज सकते हैं।
1: Let's go.
0: Straight from the heart. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Chup ho ja, papi ho. Chup ho ja.
2: Sanatan World Cup Sports and Cultural Incorporated brings you Valentine's Buffet Restaurant, Lal's Transport in Ram's Group of Companies, 11th Sanatan World Cup 2026, hosted by NZ Sanatan Sports and Cultural Incorporated from September 30th. Auckland comes alive with soccer, netball, volleyball and golf teams from New Zealand, Fiji, Australia, Canada and America, competing across Bill McKinley Park and local venues. Unity through sport, culture and community. Contact Tunman Chairperson Jiten Lal on 021-452-503. Stay tuned to Hum, your official media partner.
3: Hum, accurate traffic.
4: Lose an hour's sleep, not your life.
5: Fine and cloudy today, southwesters, a high of 16. Coming in on the northern motorway, 20 minutes Constellation Drive to town, 38 Silverdale to the city. Slowing at Silverdale, heavy gravel to Constellation, slow to Milford and then slow again at Esmond. Northwestern, 25 minutes in from Massey, slow between Te Aratu and Point Chev, heavy on the causeway. Southern, 28 Manukau to town, slow Papakura to Papatoetoe and Penrose to Mount Wellington.
4: Install smoke alarms where you sleep, this daylight saving.
6: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With multiple branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare's 12th birthday offer, 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो जल्दी join करो और enjoy करो special offers. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.
7: There's a new kind of goodness in the pet aisle. Nature's Gift. Discover the new Nature's Gift grain-free range, now in convenient pouches and delicious kibble. Made with real meat, real vegetables and grain-free recipes, it's a natural choice for everyday feeding. So, looking for nature's goodness? You'll love Nature's Gift. All new look, same great nutrition in supermarkets now. The delicious dog food packed with real goodness. Give them the gift of Nature's Gift grain-free. Discover the range in-store today.
6: What if your next holiday wasn't just a holiday, but the adventure everyone's still talking about? This Easter, Bali and Bangkok. One epic trip. 5-star all-inclusive stays. Breakfast, lunch, dinner sorted. Return flights from Auckland to Bali to Bangkok and back. Sightseeing, activities, even dinner cruises in both cities all included. Come, explore with Sun Tours and a whole group of fellow travelers. Call 0800 Sun Tours for affordable prices. Spaces are limited. Your story starts here.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
8: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Manukau. Spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Manukau.
0: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
9: अभी देखिए तो 9 मिनट रह गए हैं 7:07 पर. न्यूज़ एंड स्पोर्ट्स अपडेट हम आपके लिए लेकर आएंगे. आज कई चीज़ें जो है ये मार्क की जा रही हैं और उनमें अगर देखें तो इट्स इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस, साथ में एप्पल साइडर विनेगर डे ये आज मार्क किया जा रहा है. इसके अलावा आज अगर देखें तो स्नैक स्टिक डे ये आज है और रेस्टलेस लेग्स अवेयरनेस डे ये आज मार्क किया जा रहा है. और बर्थडेज की ओर देखें तो आज कई लोग अपनी सालगिरह मना रहे हैं जो जाने माने लोग हैं. उनमें अगर देखें राहुल वैद्य ये आज अपना बर्थडे जो है ये सेलिब्रेट कर रहे हैं. राहुल वैद्य के साथ तनुजा अपने ज़माने की बहुत ही मशहूर और खूबसूरत एक्ट्रेस, प्रेम चोपड़ा उनका भी आज के दिन जन्म हुआ और उनके साथ कुमार सानू आज इनका भी जन्मदिन है.
10: तो काफ़ी लोग अपना अपना बर्थडे जो है ये आज सेलिब्रेट कर रहे हैं. इफ़ यू आर वन ऑफ देम एज वेल, आप हमारे पास 5599 पर अपने मैसेजेस जो है ये सेंड कर दीजिए और आपको अगले घंटे हम जरूर विश करेंगे. वैसे आपने कहा कि आज इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे है, राइट?
9: जी.
10: तो आपको पता है कि आउट ऑफ 195 कंट्रीज 84 ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने ऑफिशियली साइन लैंग्वेज को रिकोगनाइज किया है एज देयर नेशनल लैंग्वेज. और वहीं पर न्यूजीलैंड एक ऐसी कंट्री है जिनका नेशनल न्यूजीलैंड साइन लैंग्वेज यानी NZSL जो है ये एक ऑफिशियल लैंग्वेज है. न्यूजीलैंड साइन लैंग्वेज, न्यूजीलैंड में एक ऑफिशियल लैंग्वेज जो है ये मार्क किया गया है सिंस द ईयर 2006, अप्रैल 6 से इसकी शुरुआत जो है यहाँ न्यूजीलैंड में हुई है. सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डे और ये बहुत ज़रूरी लैंग्वेज है टू नो एंड टू यू नो नो हाउ टू कम्युनिकेट इन. तो अगर आपको भी कुछ आती है साइन लैंग्वेज में, इसे आप औरों तक भी पहुँचाएं, औरों को भी सिखाएं, अच्छी चीज़ होगी ना, बहुत हेल्पफुल भी है. और ऑन दी अदर हैंड हमने सवाल भी आपसे पूछा कि सलमान खान ने कितने फिल्मों में प्रेम किरदार ये प्ले किया, द कैरेक्टर प्रेम कितने फिल्मों में इनका नाम जो है ये रहा है. रोनल्ड हैज प्लेड सेफ, इन्होंने कहा मोर देन 12 मूवीज, वेरी सेफ रोनल्ड. हर मिलाप है, दिप्तेश प्रसाद है, विकास है, फिजा है, मनीषा है, नितिका है, सल्लू है, आप सबने भी अपने आंसर्स दिए, आप सभी ने कहा है 15. सो क्या आप सब सही है गलत ये जानेंगे थोड़ी देर बाद, लेकिन तब तक के लिए याद रहे आपको लिखना है BF स्पेस आंसर नहीं और बताना है सलमान खान ने कितने फिल्मों में जो कैरेक्टर प्ले किया है उसका नाम रहा है प्रेम.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: आज के मौसम के लिए याद रहे बताया जा रहा है बादल छाए रहेंगे, सुबह शाम के समय थोड़ी बहुत बारिश होगी। इस रह रहकर आज तेज रफ्तार से हवा भी चलती रहेगी। 6:19 PM पर होगा आज का सनसेट। राइट नाउ टेम्परेचर 12.9 डिग्रीज है, ओवरनाइट 4 डिग्रीज रहेगा आज।
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Monaco.

0: finance experience. Call 0800-634-234.
1: 3 मिनट हो रहे हैं 7 बजकर और मेगा फाइनेंस की ओर से मॉर्निंग मैडनेस में आपका स्वागत हम कर रहे हैं और हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स 104.2 एफएम और रोवर पर आप हमारा साथ दे रहे हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच।
2: और इस घंटे जहाँ पर हम शुरुआत कर रहे हैं आपके साथ ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा की मॉर्निंग मैडनेस की, तो वहीं पर पिछले घंटे हमने सवाल भी आपसे किया था ना कि सलमान खान ने कितनी फिल्मों में प्रेम के कैरेक्टर जो है ये प्ले किया है, आई मीन द कैरेक्टर्स नेम हैज बीन प्रेम। तो हमारे पास जितने लोगों ने अपने अपने आंसर्स भेजे थे, मेजोरिटी लोगों ने कहा था 15,

0: एंड इट इज एक्चुअली करेक्ट. शुरुआत इनकी हुई थी विद 1989 में आई फिल्म मैंने प्यार किया, जिसमें इन्होंने प्रेम कैरेक्टर जो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम प्ले किया था. एंड द लास्ट मूवी जिसमें इन्होंने जो कैरेक्टर प्ले किया था जिसका नाम प्रेम था वॉज इफ आई एम नॉट मिस्टेकन एक्चुअली तो जुड़वा 2, इसमें ये नजर आए थे. आई मीन ही प्लेड अ कैमियो.
1: जुड़वा 2
0: हाँ,
1: कैमियो. ये कब आई थी?
0: ये अभी 2017 में ना कैमियो प्ले किया था इन्होंने उसमें. जुड़वा 2 में तो वैसे वो थे वरुण धवन थे.
1: हाँ,
0: बट ये आए थे, ही रिक्रिएटेड हिज ओरिजिनल जुड़वा जो 97 में आई थी उनके कैरेक्टर्स को इन्होंने रिक्रिएट किया था. बट फुल फ्लेज्ड मूवी जिसमें इन्होंने प्रेम प्ले किया था आई थिंक बिफोर दैट वाज प्रेम रतन धन पायो. That was the movie जिसमें इनका एक पूरा का पूरा कैरेक्टर था, not a cameo, जिसमें इन्होंने ये कैरेक्टर नाम जो ही प्ले किया था. So yes, 15 movies and one name for one character जिसमें इन्होंने प्ले किया. फिलहाल चलिए इधर समय की ओर देखें. It's 5 minutes after 7 और न्यूजीलैंड में एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिसर्च जो है ये किया गया है. और इस रिसर्च में ये पता चला है कि द मोस्ट अट्रैक्टिव एम्प्लॉयज न्यूजीलैंड में कौन है. इसकी लिस्ट हर साल आती है. पिछले साल ए न्यूजीलैंड जो है ये नंबर 1 पोजीशन पर था मोस्ट अट्रैक्टिव एम्प्लॉयर, जहां पर लोग अगर किसी एक कंपनी के लिए काम करना चाहेंगे इट वुड बी ए न्यूजीलैंड. लेकिन इस साल ए न्यूजीलैंड की हार जो है ये हुई है. एंड द न्यू कंपनी दैट हैज टेकन ओवर इज ग्रीन क्रॉस हेल्थ. ये न्यूजीलैंड की नंबर 1 कंपनी है जिसमें इस रिसर्च के हिसाब से कहा जा रहा है कि ज्यादातर लोग इस कंपनी के लिए काम करना पसंद करेंगे. टॉप 10 लिस्ट इनफैक्ट ये रिलीज की गई है. 10 पर है मिनिस्ट्री ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्रीज और इसके साथ 9 पर है डेलॉइट, 8 पर है एक्सेस कम्युनिटी हेल्थ, 7 पर रॉयल न्यूजीलैंड एयरफोर्स, 6 पर डिपार्टमेंट ऑफ कंजर्वेशन, 5th पर न्यूजीलैंड कस्टम सर्विसेज, 4th पर है फिश एंड पाइकल हेल्थ केयर, 3rd पर है अश्योर क्वालिटी लिमिटेड, 2nd is Air New Zealand and 1st is Green Cross Health. Interesting चीज ये है कि recruitment firm Randstad जो है इन्होंने इस पूरे research को किया है. और according to them ये कहा जाता है कि जो research है इसमें सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि लोग किस company के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन leadership, career opportunities, workplace experiences, salaries, benefits, ये सारी चीजें देखी जाती हैं. और इसके हिसाब से ग्रीन क्रॉस हेल्थ हैज स्कोर्ड पर्टिकुलरली वेल फॉर मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, पे एंड बेनिफिट्स के मामले में भी. न्यूजीलैंड को रिकॉग्नाइज किया गया है फॉर इट्स टेक्नोलॉजी, लीडरशिप एंड रेपुटेशन एज वेल. जबकि अश्योर क्वालिटी और फिश एंड पाइकल हेल्थ केयर जो है दे हैव स्कोर्ड हाईली फॉर इनोवेशन एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयज. Randstad का कहना है कि वर्कर्स आर इंक्रीजिंगली लुकिंग फॉर एम्प्लॉयज जो अडेप्ट कर सके चेंजेस के साथ, जबकि अपने एम्प्लॉयज में इन्वेस्ट भी करें, स्पेशली AI के साथ जबकि इतने सारे चेंजेस आ रहे हैं तो इसको ध्यान में रखते हुए. इंटरेस्टिंग है ना?
1: वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. बट चलो इट्स गुड टू सी देयर आर सम चेंजेस अराउंड, बट एट द सेम टाइम जो लोग हैं ये हमेशा हम अपने लिए बेहतर चाहते हैं, ऑप्शंस जो है ये ढूंढते रहते हैं.
0: एब्सोल्युटली. बट अभी ये हमने जो लिस्ट शेयर की इसके हिसाब से मेरे जहन में भी एक ख्याल आया कि हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्चुअली वर्किंग फॉर आइदर ऑफ दीस कंपनीज जिसका नाम हमने मेंशन किया.
1: अच्छा,
0: हमारे जितने भी लिसनर्स फिलहाल हमें सुन रहे हैं, आप में से क्या कोई ऐसा है जितनी भी कंपनीज अभी हमने मेंशन की है जो इस पर्टिकुलर रिसर्च के हिसाब से टॉप 10 साबित हुई है न्यूजीलैंड में फॉर द कंपनीज जिसके लिए लोग ज्यादातर काम करना चाहते हैं. मिनिस्ट्री फॉर प्राइमरी इंडस्ट्रीज, डेलॉइट, एक्सेस कम्युनिटी हेल्थ, रॉयल न्यूजीलैंड एयरफोर्स, डिपार्टमेंट ऑफ कंजर्वेशन, न्यूजीलैंड कस्टम सर्विस, फिश एंड पाइकल हेल्थ केयर, अश्योर क्वालिटी लिमिटेड, ए न्यूजीलैंड एंड ग्रीन क्रॉस हेल्थ. क्या इन कंपनीज में से आप किसी एक कंपनी के लिए काम करते हैं, हाँ या ना? और अगर आपको मौका मिला, प्रोबेबली आप किसी डिफरेंट इंडस्ट्री में हैं, डिफरेंट फील्ड में हैं, तो आप किस कंपनी के लिए काम करना पसंद करेंगे? जैसे अभी हम वी बिलोंग टू द मीडिया इंडस्ट्री, हमारी कंपनी का नाम इस लिस्ट का हिस्सा है नहीं, अगर हमें मौका मिला तो हम किसके लिए काम करना चाहेंगे? व्हाट वुड यू चूज?
1: I'm not really sure. अभी पता करना पड़ेगा ना इन सभी कंपनीज के बारे में क्या करती हैं, क्या नहीं करती हैं.
0: हाँ, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है ये, ऐसा नहीं कि एकदम करना ही करना है. इट्स लाइक अगर चॉइस करने का मौका मिला तो एनीवेज BF स्पेस या आंसर योर नेम 5599 पर आप जरूर टेक्स्ट करें. थोड़ी देर बाद आपके मैसेजेस हम देखेंगे.
2: कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो. हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याल दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

0: 34234.
1: Rashi Vibes.
2: आज का दिन कैसा रहेगा आपके लिए? सबसे पहले मेष यानी एरिस, आज आफ्टर लंच कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। अगर बिजनेस आप करते हैं तो बिजनेस में कुछ तेजी आप नोटिस करेंगे, जिससे कोई बड़ा फायदा भी आपको हो सकता है। फाइनेंशियल पोजीशन आज आपका काफ़ी स्ट्रोंग रहेगा, रुका हुआ पैसा आपको वापस मिल सकता है और आज शाम का समय काफ़ी रोमांटिक हो सकता है।
3: ऋषि ने टॉरस, आज आपके लिए कहा गया है कि टॉकिंग अबाउट थिंग्स आज आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, बिकॉज यू आर समवन जिनको अपनी यू नो फीलिंग्स या ओपनली अपनी जो थॉट्स है ये डिस्कस करना अच्छा नहीं लगता है, सो इट विल बी अ बिट डिफिकल्ट फॉर यू टुडे। आज आपके लिए एक और एक चीज़ बताई गई है कि कोई भी फैसला लेने में कोई जल्दबाजी ना करे, स्पेशली कोई ऐसा फैसला जिसमें पैसे इन्वॉल्व हो। आपका काम कॉन्वर्सेशन करने का तरीका जो है बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आज क्लियर अप कर सकता है।
2: मिथुन यानी जेमिनी, आज ऑफिस में जो सिचुएशंस हैं आपके फेवर में होंगी, जिससे आप काफ़ी रिलीव्ड फील करेंगे। किस्मत का साथ मिलेगा, जिससे रुके हुए काम धीरे धीरे पूरे होंगे। लव लाइफ में आप कुछ सुधार जो है ये नोटिस करेंगे और मेंटली बाकी दिनों के मिलान में आज आप थोड़ा रिलीव्ड फील करेंगे।
3: और उसके अलावा आज कर्क यानी कैंसर, आपके लिए बताया जा रहा है कि आज का ये जो दिन है आप थोड़ा और ज़्यादा डीपली सोचेंगे, चीज़ों को थोड़ा शांत तरीके से एनालाइज करेंगे, ऐसा आपके लिए बताया गया है। दिस इज़ अ बिट अनयूजुअल फॉर योर कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि आप थोड़े ज़्यादा बोलने वाले शख्स हैं, ज़्यादा एक्सप्रेसिव पर्सन है, तो ये थोड़ा अनयूजुअल रहेगा, बट दिस इज समथिंग दैट विल वर्क इन योर फेवर। आज आपके लिए कहा गया है अपनी इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करें, लेकिन ओवर थिंकिंग को टेक ओवर करने ना दें।
2: सिंह यानी लियो, अगर पार्टनरशिप में आप काम करते हैं तो आज अच्छा फायदा हो सकता है। ऑफिस में टीम वर्क से बड़ा सक्सेस हासिल कर सकते हैं, कोई अच्छी खबर भी आज आपको मिल सकती है।
3: और उसके बाद कन्या यानी वर्गो, आपके लिए कहा गया है आपका प्रैक्टिकल अप्रोच काम में आपके ही हित में फायदा दिलाएगा। कुछ अनफिनिश्ड काम है, आपके टास्क है, इसीलिए ये सलाह दी जा रही है कि इससे पहले कि कोई और जिम्मेदारी आप ले, उन अनफिनिश्ड चीजों को फिनिश करें ताकि आप और ऑर्गेनाइज्ड हो बाय द एंड ऑफ द डे।
2: तुला यानी लिब्रा, आज आपके लिए कहा गया है कि आप थोड़े शरारती टाइप ऑफ पर्सन हैं, ऑफिस में मजाक वगैरह जो है ये करते रहते हैं, तो इसकी वजह से आज आप काम से थोड़े डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। बिजनेस डिसीशंस जल्दबाजी में ना करें, जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनसे कुछ एडवाइस ज़रूर लें और अपने खर्चों पर आज कंट्रोल करें।
3: इसके बाद आज वृश्चिक ने स्कॉर्पियो, आपके लिए कहा गया है कि यू माइट नोटिस कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद दूसरों ने ओवरलुक कर दी हो। आज अपने इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा रखें, ऐसा आपके लिए भी बताया गया है, लेकिन कोई भी डिसीजन बनाने से पहले, स्पेशली कोई बहुत बड़ा फैसला लेने से पहले फैक्ट्स चेक जरूर कर लें।
2: धन यानी सेजिटेरियस, सेल्फ कॉन्फिडेंस आज आपका बढ़ेगा, बिजनेस में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, भाइयों का, बहनों का और दोस्तों का अच्छा सपोर्ट आज आपको मिल सकता है।
3: और इसके बाद मकर यानी कैप्रिकॉर्न, आपके लिए कहा गया है कि आपका हार्ड वर्किंग नेचर जो है ये आज आपको डेफिनेटली फायदा दिलाएगा। पिछले वीक भर हमने इसके बारे में बातें की थी, जहां पर हमने कहा था कि आपकी मेहनत जो है ये रंग ला रही है, पीपल आर नोटिसिंग इट एंड फाइनली उसका पूरा पूरा फायदा जो है ये आज आपको मिलेगा। समवन मे नोटिस योर एफर्ट्स, और जो शायद ऐसे शख्स हैं जिन्होंने आज से पहले कभी आपको अप्रिशिएट नहीं किया है, रिकोगनाइज नहीं किया है, वो ज़रूर ये रिकोगनीशन आपको देने वाले हैं। इसके अलावा आज आपके लिए कहा गया है कि मेहनत करते रहे जैसे आप कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपर ब्रेक्स भी आपके लिए ज़रूरी है।
2: कुंभ यानी एक्वेरियस, आज काफ़ी एनर्जेटिक और एक्साइटेड आप फील करेंगे, और बिजनेस पर्सन अगर आप हैं जो आज आप सोच रहे हैं शायद वो रिजल्ट आप हासिल कर सके, नए आइडियाज आएंगे दिमाग में, फाइनेंशियली दिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा आपका।
3: और फाइनली मीन यानी पाइसेस, आपके लिए कहा गया है कि आपका इमोशनल इंट्यूशन पर्टिकुलरली आज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। एक ज़रूरी बात आपके लिए कही गई है कि अगर आप अच्छा नहीं फील कर रहे हैं, इसीलिए कुछ ऐसे लोगों के साथ आप समय बिताएं आज जो आपको पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। अपने समय की बर्बादी उनके पीछे ना करें जो आपके लिए नेगेटिव एनर्जी को जनरेट कराते हैं। तो ये थे आज के आपके राशि वाइब्स, उम्मीद करते हैं दिन आपका सभी का बहुत ही बढ़िया और कमाल का गुजरे, और इसी उम्मीद के साथ साथ ऑल द वेरी बेस्ट हमारी ओर से आज के इस सुबह के लिए। और याद रहे 20 मिनट हो रहे हैं जबकि इस समय हमारे स्टूडियोज में 7 बजकर, कमिंग अप नेक्स्ट सेलिब्रिटी अलार्म,
1: द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
4: चुप हो जाओ पापी, चुप हो जाओ।
5: मार्च 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
0: रुस्बे, टिकट्स बुक हो गए.
6: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है.
0: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी.
6: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती. बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन.
0: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी.
7: एक बार तो जाने चाहिए थाईलैंड.
8: हेलो एवरीबॉडी.
9: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा.
10: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी.
9: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस. क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी. बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्बे, ओनली ऑन हम.
11: कॉफी, द यूजुअल.
12: How about the unusual?
13: Can't wait for coffee? Then don't. Turn into Wild Bean Cafe at BP and try our new barista-made hojicha latte. Something a bit different at BP.
14: Spring savings are on now at Beds R Us. Save on selected sleepyhead beds like the Chiropractic Perform, half price, queen size, now from 2299. Step up your sleep with spring savings at Beds R Us Manukau and Pukekohe, where dreams begin.
15: Settle, win, escape. Finance World is about to take you further with a trip to Bali. Settle kijiye apna home loan of 500,000 ya usse zyada Finance World ke saath. And you're automatically in the draw to win a trip to Bali for 2, 5 days, 4 nights, 2 lucky winners. Har eligible home loan of 500,000 ya usse zyada automatically aapko draw mein enter karta hai. Terms and conditions apply. Visit financeworld.co.nz/Bali. Finance World Limited is a registered financial advice provider.
16: Auckland, it's time to sit back, relax and save big. The big sofa and recliner sale is on now at Lifestyle Furniture with up to 60% off. Stylish sofas, comfy lounge suites or the ultimate recliner. They've got something for every lifestyle. Recliner chairs start from just $399. Visit Lifestyle Furniture at Manukau, Mount Wellington or Westgate. Big style, big comfort, better prices. Hurry, up to 60% off on now.
17: Uber drivers, if you already have a claim with Not Your Fault services, it is moving forward and one of their claims managers will be in touch. If you have not applied, intake 4 is open. Not Your Fault services phone team is at capacity. So please don't call, apply online instead at nyfservices.com. That's nyfservices.com.
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
9: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Manukau. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Manukau.
1: Celebrity Alarm. Hit it.
3: आज का सेलिब्रिटी अलार्म जो है आपके लिए हम लेकर आए हैं, इसमें आई कैन से कि एक तीर से दो शिकार कर रहे हैं हम. रीजन बीइंग क्योंकि जिस सेलिब्रिटी की आवाज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो आपको कुछ स्पेशल चीज बताने वाली है, तो इनको ध्यान से सुने, हो सकता है इसमें आपका भी फायदा हो. तो ये आवाज आज आपको पहचाननी है, गौर से सुनिएगा. एंड वंस यू आइडेंटिफाई कि ये कौन है तो आपको बस हमारे पास अपना जवाब भेजना होगा.
2: BF अपना आंसर और नाम, ये 5599 पर आपको हमें टेक्स्ट करना होगा. लेकिन पहले आवाज जो है ये आप सुन ले.
18: It's actually a breakfast thing. Bomb. You cut the onion against moon, half moons, and then an oil, ginger garlic paste, and those onions. You put a few slit chilies, and then you let the onion become pinkish. Crack open the eggs and just lay them. Then you cover it, you put it on a low flame. Then you take your, that masala what I told you, it's called elipai karam, which is basically lassan and mirchi ka chutney that you put on top of it. And then you just...
3: तो ये है वो आवाज जो आज आपको पहचाननी है और हमारे पास अपना अपना आंसर जो है कि भेजना है. पूरी की पूरी रेसिपी दे दी इन्होंने ना.
2: हाँ, मुन मुन मुन मुन.
3: तो आज हमारी सेलिब्रिटी कौन है, आज के सेलिब्रिटी अलार्म में आपको अनुमान लगाना है.
2: तो शुरू हो जाएं. BF अपना आंसर और अपना नाम, ये आपको हमारे पास भेजना है. देखिए आज आप में से कितने लोग हैं जो सही सही बता पाते हैं कि कौन है सेलिब्रिटी. मुझे तो बिल्कुल पता है.
3: अच्छा, आप सच बोल रहे हैं, पता है कि ऐसे जो
2: नहीं, मैं
3: नॉर्मल वाला पता है आपका. अच्छा. नहीं पता है मतलब आपको ये कौन है. इंटरेस्टिंग. अच्छा एक आखिरी बार आपको सुना रहे हैं, अच्छे से सुन लीजिए ये आवाज़ और फिर आप हमारे पास अपना जवाब भेज सकते हैं. रिमेंबर BF लिखना है सबसे पहले, यानी ब्रेकफास्ट का शॉर्ट फॉर्म, फिर उसके बाद अपना आंसर, अपना नाम और 5599 पर आप सेंड कर सकते हैं.
18: It's actually a breakfast thing. Bomb. You cut the onion against moon, half moons, and then in oil, ginger garlic paste, and those onions. You put a few slit chilies, and then you let the onion become pinkish. Crack open the eggs and just lay them. Then you cover it. You put it on a low flame. Then you take your that masala, what I told you, it's called elipai karam, which is basically lassan and mirchi ka chutney that you put on top of it, and then you just.
3: एक चीज भूल गई है,
2: लहसुन और मिर्ची की चटनी.
3: आपने सुनी पूरी रेसिपी?
2: ना.
3: अच्छा नहीं सुनी, क्योंकि इन्होंने एक चीज डाला ही नहीं इसमें.
2: क्योंकि मेरा दिमाग मुन पे अटक गया जाके ना, जिस स्टाइल में उन्होंने बताया.
3: क्योंकि जब इन्होंने ये रेसिपी पहली बार शेयर की थी एक इंटरव्यू के दौरान, तो इस चीज के लिए इनको भी ट्रोल किया गया था कि मून क्या होता है, लाइक व्हाट आर यू ट्राइंग टू से, बट दिस लाइक अ शेप शी इज सेइंग ना, कि इस शेप में
2: ट्रोल करने की क्या बात है.
3: अरे भाई, लोगों को सिर्फ ट्रोल करने के लिए कुछ भी मिल जाए तो कर देते हैं. बट नेवरदलेस पहचानिए आज की हमारी सेलिब्रिटी को सेलिब्रिटी लैब में, और नाम इनका लिखकर 5599 पर आपको सेंड करना है हमारे पास. अभी तक देखा जाए विधि है, सोहेल है, चरीशा है, जिन्होंने हमारे पास अपने मैसेजेस भेजे हैं.
2: सही है या गलत थोड़ी देर बाद आपको जरूर बताएंगे, लेकिन अटेम्प्ट तो आपका करना बनता है भाई कि ये सेलिब्रिटी कौन है जिन्हें आप पहचानने की कोशिश करें. आई थिंक लास्ट आवर में आपने वो जो मोस्ट की इसी घंटे में मोस्ट अट्रैक्टिव एम्प्लॉयर्स के बारे
3: में
2: बातें की थी और पूछा था कि अगर आप इनमें से किसी एक के साथ काम करते हैं तो रश्मि ने कहा था कि वो फिश एंड पाइकल हेल्थ केयर के लिए काम करती हैं.
3: इंटरेस्टिंग. तो थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए.
19: Bollywood's most wanted.
20: Gundi khad rao. Ya seedha andar aao.
21: Main laun apna A game.
19: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: finance experience. Call 0800 634 234.
1: News headlines.
2: सुबह के मुख्य समाचारों में, ऑकलैंड के रेमुएरा में बर्गलरी कॉल का जवाब देने गई पुलिस को एक घर से लार्ज स्केल 5-room कैनविस ग्रोइंग ऑपरेशन मिला। ऑफिसर्स को देखकर 41 ईयर ओल्ड ऑक्यूपेंट खिड़की से भाग निकला, जिसे ईगल हेलीकॉप्टर की मदद से पुलिस डॉग यूनिट ने न्यू मार्केट पार्क में अरेस्ट कर लिया। लेबर एमपी कैमिला बेलिच ने मॉडर्न स्लेवरी बिल को इलेक्शन से पहले पास करवाने के लिए प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन और बिजनेस कमेटी को खत लिखा है। प्राइम मिनिस्टर लक्सन ने समय की कमी और अपोजिशन के फिलिबस्टरिंग का हवाला देते हुए कहा कि दोबारा चुनाव जीतने पर नेशनल पार्टी इस बिल को 2027 में जरूर पास करेगी। बेलिच का कहना है कि सप्लाई चेन्स में मॉडर्न स्लेवरी को रोकने के लिए इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ रहा है और सरकार चाहे तो पार्लियामेंट राइज होने से पहले इस बिल को जरूरी प्रायोरिटी दे सकती है। ऑल वाइट्स सॉकर टीम कल एक इंटरनेशनल फ्रेंडली में पैलेस्टाइन का सामना करेगी। इसके अलावा 28 सितंबर को ऑल वाइट्स का मुकाबला चाइना के खिलाफ होगा। ऑल वाइट्स जो बाकी के इंटरनेशनल मैचेस इस साल खेलने जा रही हैं, उनमें 1 अक्टूबर को पैनामा के खिलाफ मैच शामिल हैं और साथ ही में नवंबर में 2 इंटरनेशनल मैचेस ऑल वाइट्स यहां न्यूजीलैंड में होस्ट करेगी और इन मैचेस को खेलने के लिए इंडियन नेशनल सॉकर टीम जो है ये न्यूजीलैंड आएगी। पहला मैच जो है ये 12 नवंबर को गो मीडिया स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि 15 नवंबर को 1NZ स्टेडियम क्राइस्टचर्च में दूसरा मैच खेला जाएगा। ये रहे सुबह के मुख्य समाचार।
3: Brought to you by Lifestyle Furniture, Manukau, Mount Wellington and Westgate. Up to 60% off on now.

0: एवरीडे ड्राइविंग के लिए स्मार्टर चॉइस. विजिट विंगर मोटर्स वेस्ट ऑकलैंड ग्रीन लेन और पुकेकोई और winger.co.nz. ऑफर एंड सितंबर 30th.
1: Thinking of renovating or extending your home? Greystone Builders specializes in renovations and extensions of kitchen and bathrooms, decks and fences, and offer professional house painting. Licensed builders providing quality work at reasonable prices. Call Greystone Builders on 021-165-9362. That's 021-165-9362 for a free quote. Or visit greystonebuilders.co.nz.
2: Hey Neha, congratulations on your first home. तूने तो कहा था कि दो दो banks ने loan देने से और एक famous broker ने तो case लेने से ही मना कर दिया था. ये घर कैसे?
3: अरे ये तो Logic Finance के गुरु कैंडोला का कमाल है. एक real estate वाले ने उन्हें suggest किया. मैंने उन्हें Facebook पर ढूंढा और directly contact किया.
2: नेहा, अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ.
4: First home buyer बनना है या investment property लेनी है तो आज ही call करें Logic Finance के गुरु कैंडोला को on 0800 Logic Guru.
5: Auckland, it's time to sit back, relax and save big. The big sofa and recliner sale is on now at Lifestyle Furniture with up to 60% off. Stylish sofas, comfy lounge suites or the ultimate recliner. They've got something for every lifestyle. Recliner chairs start from just $399. Visit Lifestyle Furniture at Manukau, Mount Wellington or Westgate. Big style, big comfort, better prices. Hurry, up to 60% off on now.
6: The beat of Bollywood.
7: World's best. हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
6: Birthday greetings.
8: इसका बर्थडे भाई?
9: मेरा ही बर्थडे है. चलो लाइन में आ जाओ.
10: Happy birthday to you.
11: A very happy birthday, many many happy returns of the day. आज आपको विश कर रहे हैं सबसे पहले बलविंदर सिंह सेठी जी हैं तकनीनी में. अपने बर्थडे आप सेलिब्रेट कर रहे हैं. हैप्पी बर्थडे आपको. जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी पूरी की पूरी हम टीम की ओर से. आज 23rd of September को आप अपना स्पेशल डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और आपके साथ साथ जितने भी लोग जहाँ के भी आज अपना अपना बर्थडे मना रहे हैं आप सभी को भी अ वेरी हैप्पी बर्थडे. मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे जो है ये हम जरूर विश कर रहे हैं. आज जन्मदिन के खास मौके पर हैप्पी बर्थडे जो है ये हम विश करना चाहते हैं खासतौर पर दृष्टि आपको. अपना स्पेशल बर्थडे जो है ये आप सेलिब्रेट कर रही हैं और जन्मदिन के स्पेशल दिन पर आपके पापा हैं रेजी, मम्मी हैं रेशमा और जितने भी परिवार वाले हैं सभी की ओर से आपको ढेर सारा प्यार एंड ब्लेसिंग्स आपके जन्मदिन के मौके पर.
12: अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. अभी 20 मिनट रह गए हैं 7 बजने में. क्या आप ढूंढ रहे हैं एक हाई रिटर्न प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी विद जीरो टैक्स? आपको बताएं कि द बिगेस्ट दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो 26 ये न्यूजीलैंड में होने जा रहा है और ये इसी वीकेंड होगा 26th और 27th September को सुबह 10 से रात 8 बजे तक. मिलेनियम होटल जो कि सिटी में है यहाँ पर होने जा रहा है. जो डेवलपर प्रिंसिपल्स हैं यहाँ इन पर्सन रहेंगे अवेलेबल आपके लिए और एक्सक्लूसिव डील्स होंगी इंक्लूडिंग 0% अपफ्रंट DLD फीस ऑन क्वालिफाइंग यूनिट्स, deferred payment plans और projected returns of up to 20% ROI. चाहे आप शुरू कर रहे हैं या अपना property portfolio expand कर रहे हैं आप one-to-one consultation जो है ये book कर सकते हैं www.buildcaps.com पर. याद रहे www.buildcaps.com पर या मिलेनियम होटल पहुंच जाए इसी सैटरडे को और संडे को 10 AM टू 8 PM के बीच किसी भी टाइम पर और इस अपॉर्चुनिटी से ज़रूर फ़ायदा उठाएं क्योंकि इसमें आपका ही फ़ायदा है. और इसी सैटरडे को हम टीम जो है ये भी रहेगी मिलेनियम होटल में तो आप हमारी टीम से भी यहाँ पर ज़रूर मुलाकात कर सकते हैं.
6: Morning Madness
13: brought to you by Mega Finance, home loans made easy with 30 years of banking and finance experience. Call 0800 634 234.
14: Let's go
6: straight from the heart. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800 4NZPMI.
11: बस 18 मिनट बाकी है समय हमारी स्टूडियोज में 8 बजने में. आज जो सेलिब्रिटी लैब में आवाज हम लेकर आए हैं, ये बहुत यू नो इजी टू रिकॉग्नाइज वॉइस है क्योंकि इनका अंदाज भी काफी डिफरेंट है, बट बावजूद उसके बहुत कम लोगों ने हमारे पास आज अपने अपने आंसर्स जो है ये भेजे हैं. उसके साथ साथ आज याद कर लेते हैं अंकुर आपको, मोविन है साथ में, रेशमी आपका भी मैसेज आया है, दिव्या है, चरिशा है, सोहेल है, आपने भी अपना मैसेज भेजा है, ऐश अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. कुछ लोगों ने मैसेजेस भेजे हैं, नाम नहीं लिखा है. अनिश्मा इज ओनली वन ऑफ दोज पीपल जिन्होंने ये नोटिस किया है, क्योंकि मैंने भी कहा था कि आई थिंक शी फॉरगॉट समथिंग, तो अनिश्मा इज ऑल्सो नोटिस्ड इट, बट प्रोबेबली ये भूल ही नहीं है शायद वो पार्ट इन्होंने जिन किसी ने भी ये वीडियो अपलोड किया हो वो कट कर दिया और शायद अगर बोला भी हो ना, नेवर नो. और उसके अलावा कुछ और लोगों ने भी अपने आंसर्स भेजे हैं. अमित ने पापा ट्विटर से गुड मॉर्निंग मैसेज भेजा है, तो एक आखिरी बार सुना दी वॉइस फॉर पीपल टू,
12: हां हां, ताकि मुझे पता चले कि ये कौन है.
11: आपको अभी तक नहीं पता चला? इंटरेस्टिंग. चलो ये आवाज आपको सुननी है ध्यान से.
8: इट्स एक्चुअली अ ब्रेकफास्ट थिंग बॉम्ब. यू कट द अनियन अगेंस्ट मून मून मून मून हाफ मून्स एंड इन एन ऑयल जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड दोस अनियंस यू पुट अ फ्यू स्लिट चिलीज एंड देन यू लेट द अनियन बिकम पिंकिश. क्रैक ओपन द एग्स एंड जस्ट ले देम. Then you cover it, you put it on a low flame. Then you take your that masala, what I told you, it's called elipai karam, which is basically lassan and mirchi ka chutney that you put on top of it. And then you just...
11: तो ये जो रेसिपी इन्होंने बताई है ये आप ट्राई भी कर सकते हैं. इसे खागीना बोला जाता है मेरे ख्याल से.
12: खागीना,
11: खागीना, या दैट्स व्हाट इट्स कॉल्ड. और ऑन द अदर हैंड अगर इन पर्टिकुलर सेलिब्रिटी के लिए कुछ क्लूज भी अगर हम आपको दे सके,
12: हाँ.
11: तो कुछ सालों पहले इनका एक वेब सीरीज आया था जिसमें इनका आई थिंक गजगामिनी वोक जो है ये बहुत वायरल हुआ था. And people actually fell in love with that particular scene जहाँ पर डांस करते समय इन्होंने एक गजगामिनी वॉक किया था. और उसके अलावा रिसेंटली इनका एक और एक वेब सीरीज आया है नेटफ्लिक्स पर जिसमें ये अपने रियल लाइफ हस्बैंड के साथ दिखी है. तो अभी जितना क्लूज देना था आई थिंक आई हैव गिवन इट, बट लेट्स सी कि क्या आप अनुमान लगा पाते हैं. फाइनल 4 मिनट्स आपको दे रहे हैं आज की हमारी सेलिब्रिटी को पहचानने के लिए. बी एफ स्पेस से आंसर योर नेम 5599% करना है. थ्रोबैक के राउंड से ही जवाब आपको हम देंगे.

0: सुनो, आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया, घर बेचने को कह रहे थे।
1: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं, लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं। डेवलप करना बेहतर लगता है, पर पैसों का डर है।
0: इसीलिए NZPMI से बात कर लो, वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं।
2: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं, आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है। आज ही NZPMI के पॉल से बात कीजिए। NZPMI, टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस। कॉल पॉल ऑन 0800-4NZPMI. Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients. Free wins and ACC codes. Or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09277-6644. T's and C's apply.

0: Indian finance experience. Call 0800-634-234.
1: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
2: तो याद रहे कि आज का हमारा जो सेलिब्रिटी अलार्म का सवाल हमने आपसे किया था, अब उसका जवाब जो है ये देने का समय हुआ. इधर हमने आपसे कहा था कि आपको बताना है कि कौन सी ये सेलिब्रिटी है जिनकी आवाज़ हमने आपको सुनाई थी. कुछ और लोगों ने अपने मैसेजेस हमारे पास भेजे हैं. सेजल है, साथ में अंशु का मैसेज आया है. शेलवी नेंजेड पोस्ट, आपने भी अपना आंसर भेजा है. डेंसी है. और इसके अलावा कुछ लोगों ने मैसेजेस भेजे हैं, नाम नहीं लिखा है, पर शुक्रिया आपके भी मैसेज के लिए. और द करेक्ट आंसर वुड बी आदिति राव हैदरी. आदिति राव हैदरी इज द करेक्ट आंसर. आज की हमारी सेलिब्रिटी रही है सेलिब्रिटी अलार्म में. और दूसरी ओर बिफोर यू मूव ऑन, आपको याद दिला दें अगले घंटे हम लेकर आएंगे आपके लिए आज रश आवर, जिसमें आप हमारे साथ जरूर दे सकते हैं क्योंकि वट्स योर टेक टॉपिक जो है ये भी अगले घंटे आपके लिए हम लेकर आएंगे. बट डोंट फॉरगेट, टुमारो इज थर्सडे 24th of September और कल एट 5 PM नेशनल पार्टी कैंपेन मैनेजर नवतेज रंधावा जो है ये ज्वाइन करने वाले हैं सेनियन रूसबे को ऑन द ड्राइव शो फॉर इलेक्शन स्पेशल ऑन द ड्राइव शो जो एवरी थर्सडे 5 PM ये लेकर आते हैं. बट दिस थर्सडे गेट अ चांस टू फाइंड आउट नेशनल पार्टी कैंपेन मैनेजर नवतेज रंधावा की ओर से अबाउट द पॉलिसीज, प्रायोरिटीज और उनका विजन फॉर न्यूजीलैंड जो आपके लिए ये कल आंसर करेंगे. अगर आपके पास भी कोई सवाल है दैट यूड लाइक फॉर सेनियन रूसबे टू आस्क, तो आप 5599 पर ड्राइव कीवर्ड के साथ अपने क्वेश्चंस जरूर फॉरवर्ड कर सकते हैं. Hello!

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: तो सुपर सिटी ऑकलैंड में वेदर आज का जो है ज्यादातर क्लाउडी ही रहेगा और सुबह शाम के समय बारिश जो है होगी, रह रहकर तेज रफ्तार से हवा चलेगी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है। सनसेट तो 6:19 PM पर होगा। रिमेम्बर ओवरनाइट टेम्परेचर आज 4 डिग्रीज रहने वाला है।
2: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा
3: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस। फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरी विन, बिग और स्मॉल, ब्रिंग होम द फॉर्च्यून एट हैरिंगटन लिविंग मोनाको। बिग ऑन स्टाइल, ग्रेट ऑन प्राइस, परफेक्ट फॉर योर होम, हैरिंगटन Living Monaco.
2: The Rush Hour brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton. Trend Patrol.
1: सो व्हाट्स ट्रेंडिंग राइट नाउ इन न्यूजीलैंड, अगर देखा जाए ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो ट्रेंड कर रही है और इसके हिसाब से आपको बताएं। आज वेंसडे 23rd of September है और आज न्यूजीलैंड में फायर फाइटर स्ट्राइक जो है ये होने वाला है।
4: अच्छा,
1: ये दिन में 12 बजे से लेकर 1 बजे तक रहेगा। फायर इमरजेंसी न्यूजीलैंड ने कहा है कि जितने भी इमरजेंसी कॉल्स हैं इनके लिए 111 विल स्टिल बी अवेलेबल और वो आंसर किए जाएंगे, उन्हें टाइम पर रिस्पॉन्ड भी किया जाएगा। इट कुड बी कि कुछ मामलों में थोड़ा डिले हो, इसीलिए क्रूज जो है ये प्रायोरिटाइज करेंगी इमरजेंसीज को ओनली। सो अनलेस एंड अंटिल इट इज़ नॉट एन इमरजेंसी, आप 111 पर कॉल ना करें। इमरजेंसी कॉल्स को प्रायोरिटी जो है ये मिलेगी इस एक घंटे के दौरान पर्टिकुलरली। तो आज ये होने वाला है। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो ये भी कहा गया है कि एप्पल जो प्रोडक्ट है या ब्रांड है राधा,
4: हाँ,
1: इंडिया में बहुत पॉपुलर है। इट्स लाइक ह्यूज। रिपोर्टेडली एप्पल एनुअल सेल्स इंडिया में $10 billion से ज्यादा हो चुका है।
4: 10 billion?
1: यस।
4: अच्छा, ऐसा ऐसी क्या,
1: बहुत पॉपुलर है ना एप्पल प्रोडक्ट्स वहां पर, जैसे कि मैंने कहा। एंड दिस इज व्हाट समथिंग इज बीइंग सेड अबाउट दिस पर्टिकुलर ब्रांड, एप्पल ब्रांड और एप्पल प्रोडक्ट्स जो इंडिया में बहुत ही ज़्यादा हाइप्ड है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इसे। सो यस, देयर इज़ अ लॉट दैट्स हैपनिंग एज फार एज थिंग्स आर कंसर्नड। और आपके लिए और भी ऐसी बहुत सी अपडेट्स जो है ये ज़रूर हम लेकर आते रहेंगे, जहाँ पर कौन सी चीज़ें ट्रेंड कर रही है इस पर आपके साथ डिटेल्स जो है ये हम शेयर करते हैं।
4: तो ये जानकारियां आपके लिए हम पर हम जरूर लेकर आएंगे। आज व्हाट्स योर टेक का टॉपिक एक बार फिर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है।
1: ओके।
4: शायद कुछ ऐसा हो जो आपने भी एक्सपीरियंस किया हो,
1: और अगर ऐसा कुछ है जो आपने एक्सपीरियंस किया है तो आप हमारे साथ जुड़ते हुए

अपने व्यूज भी इस बारे में जरूर शेयर कर सकते हैं। बहुत आसान है, आपको बस हमारे पास कॉल करना होगा 0800 004866 पर, और ये आपके लिए हम लेकर आते हैं। जबकि इसके साथ साथ आप जब चाहे तो टेक्स्ट भी कर सकते हैं इफ यू कांट गिव अस अ कॉल ऑन 5599।

0: Get into New Zealand's greatest range of garden sheds online at Trade Tested. From classic steel sheds to fancy designer sheds to amazing tiny houses, Trade Tested is the best place to sort your shed out. Make your backyard great today.
1: Auckland, are you emergency ready? If the unexpected strikes, do you know what to do? Make an emergency plan this daylight saving weekend. Brought to you by Auckland Emergency Management. Make your plan at aem.govt.nz.
2: In business, relationships matter, respect matters, and so does keeping your word. So what do you do when customers don't pay your invoices? At Kedar Limited, they understand that in our Indian community, business is built on trust, respect, and keeping your word. With 20 years of debt recovery experience, they can help recover your B2B debts. Want your old invoices paid? Call Kedar Limited on 022-090-9845. Pehle baat, phir solution aur payment bhi. Visit kaydaar.co.nz.
3: Auckland, it's time to sit back, relax and save big. The big sofa and recliner sale is on now at Lifestyle Furniture with up to 60% off. Stylish sofas, comfy lounge suites or the ultimate recliner. They've got something for every lifestyle. Recliner chairs start from just $399. Visit Lifestyle Furniture at Manukau, Mount Wellington or Westgate. Big style, big comfort, better prices. Hurry, up to 60% off on now.
4: Uber drivers, if you already have a claim with Not Your Fault services, it is moving forward and one of their claims managers will be in touch. If you have not applied, intake 4 is open. Not Your Fault services phone team is at capacity. So please don't call, apply online instead at nyfservices.com. That's nyfservices.com.
5: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
6: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Manukau. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Manukau.
5: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
7: What's your take? What's your take ka waqt jab ki ho chuka hai ek aisi cheez jo shayad aapne kabhi na kabhi experience kiya ho ya phir dekha ho hote hue ye kafi tricky situation bhi ho sakta hai depending on how you have experienced this. तो मैं देख रहा था एक पर्सन जो है एक लेडी जो है शी इज़ फ्रॉम इंडिया और ये रहती हैं यूएस में 3 years हुए हैं उनको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में और इन 3 सालों में उन्हें ये बताया गया जो लोग इंडिया में रहते हैं उनके जानने वाले पहचानने वाले कि आप डिटैच्ड हो चुके हो आप अलग हो चुके हो
8: किससे
7: उन लोगों से ना जो जो बैक इन इंडिया है
8: हाँ.
7: आप उनको पूछते नहीं हो
8: हाँ.
7: उनका ख्याल नहीं रखते अपार्ट फ्रॉम हर फैमिली को छोड़ दो आप
8: हाँ.
7: बाकी के जो लोग हैं ये उनको शायद इनडायरेक्टली ताने देते हैं
8: हाँ.
7: कि ये तो इस लेडी ने एक वीडियो जो है ये शेयर किया और जहाँ पे उन्होंने बताया कि लोग ऐसा क्यों बोलते हैं
8: हाँ.
7: क्यों बोलते उनका कहना है कि वो 3 साल से अमेरिका में हैं और इन 3 सालों में उनकी फैमिली को छोड़कर 2 लोगों ने उन्हें कॉल किया
8: ओके
7: सिर्फ 2 पीपल कॉल्ड हाँ आप और एक ने उनसे शायद पूछा कि उनकी जिंदगी कैसी चल रही है फैमिली वगैरह कैसे वो सेटल हुई वहां पर और दूसरे ने उनको उन्होंने उनसे कहा कि आप बिना बताए क्यों चली गई
8: अच्छा
7: आप बिना बताए क्यों चली गई और वो सारी चीजें तो आई डोंट नो डिटेल कॉन्वर्सेशन के बारे में बट द थिंग इज कि अभी अब उनके मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्यों आई एम अटैच्ड टू दोज हु आई नीड टू बी अटैच्ड लेकिन द थिंग इज कि उन्होंने ये कहा कि जब तक मैं इंडिया में थी जिन लोगों को मुझसे काम था जिन लोगों को मुझसे मतलब था वो हमेशा कांटेक्ट में रहते थे और 3 साल हुए मुझे अमेरिका आए हुए 2 लोगों ने मुझे कॉल किया 2 लोगों ने कांटेक्ट किया और वो भी ऐसे नहीं कि जेन्युइनली हालचाल पूछने के लिए और मुझ पर आरोप लगाया जा रहा है कि मैं सबसे अलग हो गई हूँ
8: हाँ, कि आप भूल गए हो हाँ. आप पूछते नहीं हो ख्याल नहीं रखते हो
7: सो हमने सोचा आज आपसे पूछते हैं कि आपने क्या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है जहाँ पर लोग आपसे आपसे कहें यार आप तो बहुत बदल गए, जब से ओवरसीज गए हो, न्यूजीलैंड गए हो, आपका तो कुछ सुनने को ही नहीं मिल रहा है, देखने को ही नहीं मिल रहा है, क्या बात है, आप तो बड़े लोग हो गए हो, यू नो, छोटे लोगों को यू नो इनडायरेक्टली टॉन्ट करना।
8: तो अगर आपने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है आप हमारे साथ खोल करते हुए अगर शेयर करना चाहें, यू कैन डू दैट 0800-800-4866 पर। अगर आप कॉल नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू सम रीजंस, आप टेक्स्ट करना चाहें तो आप टेक्स्ट कर सकते हैं ऑन 5599। लेट्स सी आज के हमारे पहले कॉलर का क्या कहना है। गुड मॉर्निंग।
9: गुड मॉर्निंग। ये तो हर एक बंदा जो अपनी कंट्री से बाहर निकलता है उनको सुनना ही पड़ता है, दे ऑलवेज कम। सबसे पहली चीज है कि जो बंदे निकलते हैं प्लेन में बैठते हैं, जिन्होंने पहली बार प्लेन देखा है, पहली बार स्मॉल प्लेसेस, अनजाने कंट्री, अनजाने लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो इट्स अ लॉट बिग स्टेप। वो कई बार हम बंदों को दिखाता है कि जब शादी करके बीवी आती है अनजानों के बीच में तो क्या होता है
7: जी।
9: सो मेरे हिसाब से जो दोस्त है वो लोग तुम्हें पूछेंगे कि कैसे हो, कैसे नहीं, कुछ खा रहे हो, कुछ मिस कर रहे हो कि नहीं, लेकिन जिनको तुमसे मतलब है ना वो हमेशा कंप्लेन ही करेंगे। और थ्री इडियट्स में एक डायलॉग था कि अगर दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन वही दोस्त अगर जो नंबर वन हो जाए ना तो उससे ज्यादा दुख होता है।
7: अच्छा,
9: तो समथिंग लाइक दैट ऑल्सो वर्क्स कि भाई कोई हमसे ज्यादा कमा लेता है, कोई हमसे ज्यादा अच्छी लाइफ में है। रिसेंटली एक मैं नहीं बोल सकता रेडियो पे, लेकिन एक इंटरव्यू मैंने सुना था, उसमें सिंपल वर्ड था कि ना सर सॉरी मैं रेडियो पर नहीं बोल सकता।
8: चलो कोई नहीं, वाली होगी शायद। ओके यार,
7: कोई नहीं कोई नहीं, चलो
8: टोटली अंडरस्टैंड एंड थैंक यू फॉर यू नो कंसीडरिंग कि आप रेडियो पे नहीं बोल सकते।
7: बट
8: वी अंडरस्टूड व्हाट यू ट्राइड टू से, थैंक यू आपके कॉल के लिए। थैंक यू जी। तो वी रियली अप्रिशिएट कि इन्होंने शेयर करना चाहा, प्रोबेबली कुछ अल्टरनेट वर्ड्स ढूंढ रहे थे बट इवन
7: उनको नहीं मिला,
8: नहीं मिला,
7: कोई नहीं। हाँ चलो, आप जल्दी से हमें बता सकते हो कि आपकी राय क्या है, क्या ऐसा आपके साथ हुआ है जब तक अपनी होम कंट्री में आप थे, जिस भी कंट्री से आप आए हैं, लोग आपके आस पास यू नो यू वे लाइक द वर्ल्ड टू देम, आप उनकी दुनिया थे, आप रोज उनसे बातचीत, लोगों से बातचीत, लोग फोन कर, रोज फोन करना, साथ में उठना बैठना, और जैसे ही आप आए, क्योंकि उस समय पर शायद उन लोगों को आपसे काम था,
8: हाँ,
7: या आप आपसे मतलब था,
8: भाई, था, हाँ, या।
7: और जब आप निकले वहां से,
8: हाँ, तो मतलब नहीं तो इंसान थी कि क्या जरूरत, हाँ, की ना
7: कहीं गलती से अगर आप दिख गए तो
8: टॉन्ट कर देते आप,
7: हाँ, एक तो हाय हेलो कर लेते हैं, दूसरा क्या, हाँ, भाई आप तो भूल गए गरीबों को। आपने क्या ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है?
8: आपने किया ऐसा एक्सपीरियंस, आप बताइए जब तक हम अगर कॉल्स और मैसेजेस का इंतजार करें।
7: मैंने किया है,
8: किया है आपने?
7: या, मैंने किया है, एक्सपीरियंस किया है।
8: ओके, बस इतना ही बोलना है आपको?
7: हाँ भाई, और क्या बोलो, आपने बोला कि आपने पूछा जो मैंने उसका जवाब दे दिया।
8: गुड मॉर्निंग।
10: नमस्ते विजय जी, पूजा जी।
8: नमस्ते जी, नमस्ते।
10: ये विषय जो आपने बोला ये सही है एक्चुअली, ये अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ हुआ है कि जब हमने हिंदुस्तान छोड़ा यहाँ गए, और मतलब मैं उनको किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता उसके लिए, I don't know, maybe the circumstances, and because you don't see people, you don't see face and you don't meet every day now because of the reason.
8: हाँ,
10: मुझे लग रहा है कि उसकी वजह से होगा, लेकिन थोड़े से थोड़ा सा चेंज हो चुका है उसमें. Now you feel when you go, now you feel everything is changed and you can't undo that. Very honest.
7: Okay.
10: So. वो जो बॉन्ड था पहले, वो जो कुछ अलग था पहले,
8: हाँ,
10: वो अब नहीं रहा उस तरह से.
8: ओके,
7: चलो,
8: इंटरेस्टिंग.
7: थैंक यू सर
8: आपके कॉल के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू हमारे साथ शेयर करने के लिए. किसी ने मैसेज किया है, इन्होंने कहा है सिंपल फंडा, आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड.
7: या, सो ट्रू है,
8: आउट
7: ऑफ साइट. बट द थिंग इज, अगर आप प्रदेश में आकर रहने भी लगे हो,
8: हाँ,
7: अभी तो सोशल मीडिया का जमाना है
8: जी,
7: आप दिखते होंगे हाँ. जो लोग सोशल मीडिया पर है मेजोरिटी ऑफ पीपल आर ऑन सोशल मीडिया आप दिखते होंगे आप एंड द इंटरेस्टिंग बिट वुड बी कि आप दोनों सोशल मीडिया पर फ्रेंड्स हैं
8: हाँ.
7: लेकिन वैसे बोलचाल नहीं,
8: नहीं है,
7: है
8: okay.
7: हाँ, पहले एक टाइम हुआ करता था जब शायद एकदम जिगरी दोस्त या बेस्ट फ्रेंड्स थे एंड ऑल दोस थिंग्स अभी भी आप सोशल मीडिया पर एक दूसरे से कनेक्टेड हो देख रहे हो क्या हो रहा है एक दूसरे की जिंदगी में लेकिन
8: इंटरेक्शन उतना नहीं है
7: उतना नहीं इंटरेक्शन है ही नहीं
8: अच्छा
7: इंटरेक्शन है ही नहीं वो आप पर आरोप लगाते हैं कि भाई आप तो भूल गए हो हाँ. लेकिन खुद भी कभी एफर्ट नहीं करते हैं
8: हाँ.
7: अपनी ओर से
8: राइट
7: क्योंकि Someone अब who... आप उनके कोई काम के नहीं
8: है ओके समवन पॉइंट्स फिंगर्स एट यू लेकिन खुद नहीं रियलाइज करते या खुद नहीं एनालाइज करते कि वो भी कहाँ करते हैं एफर्ट्स उनकी ओर से भी नहीं होते ना एंड स्पेशली हैपेंस इन दिस केस जहाँ पर आप ओवरसीज मूव हो गए हो दैट्स द सिचुएशन वी आर टॉकिंग अबाउट इट्स नॉट लाइक कि आप उसी कंट्री में रहकर बोलचाल बंद है उसी शहर में रहकर बोलचाल बंद है इट्स लाइक कि लाइक वंस यू मूव ओवरसीज एंड देन द सिचुएशन चेंजेस गुड मॉर्निंग कैसे हो मंदीप
11: नमस्कार जी बढ़िया आप सुनाए
8: एकदम बढ़िया आप बताइए आज क्या कहना है आपका टॉपिक के बारे में
11: तो आई विल गो अ लिटिल बिट बैकवर्ड्स एज़ वेल क्योंकि जब अपना एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूंगा कि जब मैं स्कूल में था तो आई हैड द बिगेस्ट फ्रेंड ग्रुप तो जैसे फिर स्कूल पास किया वी वेंट टू कॉलेज में या यूनि में तो फिर एक और सिलेक्टेड सा ग्रुप बन गया तो इट वॉज ऑलवेज श्रिंकिंग तो आई थिंक उसके बाद फिर जब मैं अपनी हायर स्टडीज के लिए गया वी हैव टू मूव डाउन तो फिर वो जो ग्रुप था वो और श्रिंक हो गया सिर्फ जो प्रोफेशनल लोग थे उनके साथ के साथ ही लिमिटेड सा रह गया तो हर बारी जब व्हेनेवर आई यूज्ड टू गो बैक होम तो पुराने दोस्त मिलते थे आसपास के जो स्कूल वाले तो सबसे पहली बात शुरू ऐसी होती थी तू तो याद ही नहीं करता यार तो उस टाइम पे चलो सेल फोन वॉज नॉट सो मच इजिली प्रिवलेंट क्योंकि महंगा था हर के पास नहीं होता था बट जैसे जैसे व्हेन वी थिंग्स प्रोग्रेस व्हाट्सएप आ गया कम्युनिकेशन वेंट इजी है तो सहूलियत बड़ी है बट वो जो वही जैसे किसी शख्स ने भी कहा था पीछे कि आपके टेक्स्ट मैसेज पे कि आउट ऑफ साइड आउट ऑफ माइंड तो जब आप मिलते हैं हमेशा ये बात होती है तू तो याद ही नहीं करता उनको हमेशा यही बोलता हूँ भाई तुम्हारी लाइनें कौन सी फंसी हुई है तुम भी तो याद कर सकते हो तुम्हारी फोन लाइन भी उतनी ओपन है जितनी मेरी है तो बट नहीं नहीं हो पाता एक तो टाइम डिफरेंस आ जाता है क्योंकि इंडिया का टाइम यहाँ का टाइम फर्क है तो दैट ईज ऑफ कम्युनिकेशन जब आपके पास टाइम है आप सोचते हैं कि मैं बात कर लूँ बट फिर टाइम नहीं उस वक्त होता है बट एक एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है यस हमारी तरफ से भी और दूसरी तरफ से भी कनेक्शन मेंटेन करने के लिए बट वो आप जिंदगी की जद्दोजहद में ऐसे फंस जाते हैं कि नहीं निकल पाते आप बाहर वो कनेक्शन टूटते ही टूटते हैं
8: राइट
11: आई थिंक अगर आप ये इंडिया में भी रहेंगे यू विल ऑल्सो फील कि कुछ कनेक्शन बने रहते हैं और कुछ नहीं बन पाते तो आई थिंक इट्स अ नेचुरल प्रोग्रेशन तो वो स्टेज आती ही आती है प्लस आपकी फैमिली प्रायोरिटी हो जाती है इसमें यू नो जितना भी टाइम बचता है आप सोचते हैं कि फैमिली के साथ कुछ ना कुछ किया जाए फिर जो इमिडिएटली आपका नया सर्कल है आप लोकल जो है यहाँ पर आप उनके साथ वही जो आपकी नज़र के सामने रहते हैं उनके साथ ज़्यादा कनेक्शन बनाते हैं जो फिर दूर रहते हैं वो दूर रह जाते हैं
8: right.
11: और ये गिला शिकवा हमेशा रिश्तेदारों का भी रहा है जैसे मेरे मामा हैं चाची जो भी रिश्तेदार हैं वो सारे हमेशा ही कहते हैं कि बेटा फ़ोन कर लिया करो बट मुझे पता है मैं उनकी हालचाल खबर मिलती रहती है क्योंकि मेरे मदर या फिर कोई ना कोई रिश्तेदार बता देता है कि हाँ जी वो सब ठीक है अब उनके बारे में पता कर ले तो ऐसा नहीं है कि आपको उनके बारे में फिक्र नहीं है या फिर आप पूछते नहीं उनके बारे में बट ये है कि वो वन ऑन वन होना सबके साथ एक काइंड ऑफ चैलेंज बन जाता है
7: अंडरस्टैंडेबल थैंक यू सो मच भाई थैंक यू अपनी राय जो है ये शेयर करने के लिए ऑल द बेस्ट फॉर द डे
8: फाइनल कॉल एक हो जाए गुड मॉर्निंग
12: कैसे आप
8: बढ़िया जी आप सुनाइए आप कैसे हो
12: बिल्कुल ठीक एकदम और बड़ा अच्छा टॉपिक है आपका और मेरा ऐसा मानना है कि हमें अपने दोस्तों से ऐसे मिलना चाहिए एकदम बचपन की याद को ताजा करते हुए और बड़ा मजा आता है उसके अंदर जब मैं इंडिया जाता हूँ तो सब मेरे दोस्त बचपन के स्कूल के इवन आई वुड से 30-40 ईयर्स को पुराने दोस्त अभी भी हैं और बहुत अच्छे से मिलते हैं बहुत टाइम निकालते हैं मेरे लिए हम पुरानी बातों को याद करते हैं और हम एक हफ्ते के लिए सब छुट्टी लेके घूमने भी जाते हैं तो बिल्कुल एकदम फ्री होके जैसे बचपन में इंजॉय किया करते थे तो एक थोड़ी देर के लिए हम टीनेज टाइम में चले जाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है
7: वंडरफुल,
12: और सभी को ऐसा मेरे ख्याल से करना चाहिए क्योंकि वो अपने बचपनों की यादों में जाने से आप एक बार रीबूट हो जाते हो, दोबारा से फ्रेश हो जाते हो, रिफ्रेश।
7: चलो भाई,
12: और उसका मजा ही कुछ और है।
7: Wonderful. Thank you so much.
8: Thank you. Thank you. Liye.
7: Ek aur message aaya hai. I got tired of trying to maintain friendship as I was the only one reaching out all the time, especially in this social media age when keeping in touch is a click away.
8: Right. Interesting messages, interesting calls जो है ये आए हैं. Thank you so much आप सभी के contribution के लिए. अब आप चाहें तो आज के topic of the day के लिए आप हमारे पास अपने messages जरूर send कर सकते हैं. We've shared about this woman जिन्होंने कहा कि ये 3 साल हुए इनको US move हुए और इन 3 सालों में,
7: करिश्का नाम है इस lady का.
8: Okay. और इन 3 सालों में इन्होंने ये notice किया कि इनके जहाँ से ये move हुई है वो शहर, वो देश, वहाँ के कुछ लोग हैं इनके रिश्ते में हैं, जान पहचान के हैं, दोस्त हैं जो इन्हें काफ़ी टॉन्ट देते रहते हैं कि यार तुम तो बदल गए हो, भूल गए हो, पूछते नहीं, ख्याल नहीं रखते, ये सारी चीज़ें. और इन्होंने इस पूरे मामले का एक यू नो कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग बयां करते हुए एक वीडियो बनाया और फिर इंटरनेट पर डाला सेइंग कि ये ऐसा जो है ये होता है एंड द फैक्ट कि आजकल के ज़माने में कॉन्टैक्ट बनाए रखना किसी के लिए भी डिफ़िकल्ट नहीं है, तो बावजूद उसके क्यों हमेशा ऐसे जो सवाल है उन लोगों पर ही उठाए जाते हैं जो कहीं ना कहीं मूव हो जाते हैं, ना कि दोनों ओर से कोशिश जो ये की जाती है दोनों पर सवाल उठाए जाए.
7: दूसरी चीज, द अदर एस्पेक्ट ऑफ दिस टॉपिक इज मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं.
8: राइट. तो आप क्या इस बात से एग्री करते हैं या नहीं? इफ यस तो आप अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से बता सकते हैं, इफ नो तो भी आप हमें अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से बता सकते हैं. व्हाट इज योर टेक आज के हमारे टॉपिक के लिए?
7: बाय द वे इतना आपको बता दें, आज आपको हमारे साथ शामिल रहना है ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा, क्योंकि अराउंड 9:15 आपके फायदे की बहुत बड़ी बात होने वाली है.
8: और क्या होगा, कौन आपके लिए ये जानकारी लेकर आने वाले, ये भी आपको बताएंगे बस थोड़ी देर में.
5: Bollywood's most wanted.
13: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ.
14: मैं लाऊं अपना A game.
5: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Chubo jao, papi ho. Chubo jao.
2: Accurate traffic.
3: Flying overseas soon?
4: A high of 16, mainly fine, but lots of cloud too today. Into the city, heavy motorways, southern 50 minutes, Manukau to the city. We're slow from Manurewa, heavy most of the way Otahu to Green Lane. Northwestern, 46 minutes in from Massey, we're heavy on and off from Upper Harbour. Northern, 34 Constellation to Town Hour from Silverdale, very heavy Silverdale to Snow Planet, heavy Greville to the bridge. Southwestern, heavy northbound through Whitty.
3: International check-in is changing at Auckland Airport. Plan ahead and know your check-in zone.
5: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients. Free wins and ACC codes or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09277644. T's and C's apply.
6: 1% finance and $2,000 off exclusive to West City Auto Group. That's right. Get behind the wheel of JQ J7 SHS for just $47,990 plus on-road costs. With 1% finance and $2,000 off, experience premium style, advanced technology and super hybrid efficiency all in one impressive SUV. Hurry! Limited stock available at 1% finance. Speak with Jimmy Taylor and team at West City Omura JQ. For T's and C's, head to westcityautogroup.nz.
7: Have you heard the news? Powerball has changed. There are now 14 Powerballs, meaning bigger prizes plus more winners with a brand new Division 8 cash prize. Imagine winning $8 million this Wednesday. Get your Powerball ticket in-store or online.
5: Auckland, it's time to sit back, relax and save big. The big sofa and recliner sale is on now at Lifestyle Furniture with up to 60% off. Stylish sofas, comfy lounge suites or the ultimate recliner. They've got something for every lifestyle. Recliner chairs start from just $399. Visit Lifestyle Furniture at Manukau, Mount Wellington or Westgate. Big style, big comfort, better prices. Hurry, up to 60% off on now.
8: Few things sound better than logs crackling in a fire, rain on a tin roof, my voice, and the words you've won a pair of Bose headphones. Be in to win one of 50 pairs when you join Southern Cross Health Insurance by 11th of October. See website for details. T's and C's apply.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
9: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living Manukau. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Manukau.
0: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates. Barristers and solicitors. Papatoy and Hamilton.
10: जैसे अगर आज आप फ्यूल अप करने का सोच रहे हैं, सिंस यू नो कि ये भी काफ़ी एक्सपेंसिव है बहुत से जगह पर पेट्रोल प्राइसेस इन न्यूजीलैंड पर्टिकुलरली, तो आप देखें आज 15 सेंस ऑफ पर लीटर आपको मिलेगा मेजर फ्यूल स्टेशंस पर. बिफोर फिलिंग अप आप डिस्काउंटेड फ्यूल स्टेशंस चेकआउट कर सकते हैं एंड देन डेफिनेटली मेक योर डिसीजन कहाँ पर चीपेस्ट और फीजिबल पड़ता है आपको टू फिल अप. एंड दूसरी ओर आपको याद दिला दें कि आज फायर इमरजेंसी के जो कुछ यूनियन मेंबर्स हैं, न्यूजीलैंड प्रोफेशनल फायर फाइटर्स यूनियन के, ये स्ट्राइक करने वाले हैं दिन में 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच. एंड दिस इज द 62nd टाइम NZPFU के मेंबर्स जो है ये स्ट्राइक एक्शन जो है ये लेने वाले हैं. इस मामले में कहा जा रहा है कि आज विद इन दिस पर्टिकुलर आवर इमरजेंसी कॉल्स को प्रायोरिटी दी जाएगी. 111 नंबर पर अगर आप कॉल कर रहे हैं अनलेस एंड अनटिल इट्स नॉट एन इमरजेंसी, आपको एडवाइस किया जा रहा है कि आप इस नंबर पर कॉल ना करें ड्यूरिंग दैट 1 आवर ऑफ स्ट्राइक टाइम, क्योंकि प्रायोरिटीज़ जो है लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसीज को जो है ये दी जाएगी. नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट याद दिला रहे हैं आपको कि आज आप के लिए वेंसडे 23rd ऑफ सितंबर को द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा का प्रोग्राम हम लेकर आ रहे हैं. तो दिस फ्राइडे 25th ऑफ सितंबर को वैदिक सेंटर 32 ग्लासगो पापाटोई टोई पर होने जा रहा है हम कीर्तन संग्रह रिकॉर्डिंग.
11: और यहाँ पर अब सारी तैयारियाँ जो हैं पूरी हो चुकी हैं, कलाकारों को डिटेल्स वगैरह जो है ये दे दिए गए हैं एज टू व्हाट्स गोइंग टू हैपन. और अब आपका इंतज़ार रहेगा इसी फ्राइडे को, याद रहे इसी शुक्रवार को 7 बजे से रिकॉर्डिंग जो है ये शुरू हो जाएगी. तो उससे पहले आप आ सकते हैं और एक बहुत ही खूबसूरत शाम जो है ये गुजारने का मौका आपको यहाँ पर मिलेगा अपने कलाकारों को अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं, देर आर लॉट ऑफ यंग किड्स जो रजिस्टर हुए हैं रिकॉर्डिंग करवाने के लिए अमंगस्ट द एडल्ट्स.
10: यू नो वी ऑलवेज से कि वी शुड बी एक्टिवली प्रमोटिंग एंड एनकरेजिंग आजकल की जनरेशन को हमारे जो कल्चर है उसको आगे बढ़ाने में. एंड दीज आर दी अपॉर्चुनिटीज जहाँ पर यू कैन एक्चुअली डू दैट, जहाँ पर अगर यंग किड्स जो है ये एक इनिशिएटिव लेकर ऐसे प्रोग्राम्स का हिस्सा बन रहे हैं और यू नो लोगों तक अपनी कलाकारी जो है ये पहुँचाते हुए कल्चर को भी प्रमोट कर रहे हैं, देन एज एन अडल्ट अगर आप ये करना चाहते हैं, इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, प्लीज़ कीप इन माइंड एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री, डोंट नीड टू पे एनीथिंग टू अटेंड दिस हम फीजी कीर्तन संग्रह रिकॉर्डिंग जो फ्राइडे को होने वाला है वैदिक सेंटर रात 7 बजे से. तो आप यहाँ पर बिल्कुल मुफ्त में आ सकते हैं, इनकरेजमेंट जो है टुवर्ड्स दी आर्टिस्ट दिखा सकते हैं और साथ में देख सकते हैं कि एक रिकॉर्डिंग जो है ये कैसे की जाती है. एंड लेटर ऑन ये जो कीर्तन है आप हम फीजी कीर्तन संग्रह प्लेटफॉर्म पर ऑन रोवर ऐप यहाँ सुन भी सकते हैं.
11: बिल्कुल सुन सकेंगे और उस रात वहाँ पर वैदिक सेंटर में आपके लिए स्नैक्स, रिफ्रेशमेंट और कावा वगैरह जो है विल बी ऑन सेल, तो आप आकर जरूर इसमें हिस्सा ले सकते हैं.
2: Lock your property's true sale value with NZPMI, your local

0: डिस्को हो या रॉक एंड रोल। Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: Intaha ho gayi intezaar ki.
2: Accurate traffic.
3: Monarch, a finish worth celebrating.
4: A high of 16, fine today with plenty of cloud too. Into the city, Northern Motorway, 30 minutes Constellation Drive to town, 54 from Silverdale. Heavy at Snow Planet, very heavy from before Greville right to the bridge. Northwestern, 38 minutes in from Massey, easing but still heavy on and off from Upper Harbour. Southern, 46 Manukau to town, slow from Manukau, heavy Otahu to Green Lane. Southwestern, heavy northbound up to Puanui.
3: Save time without compromising quality. Monarch's premium paint tools deliver a finish worth celebrating.
5: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With multiple branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare's 12th birthday offer, 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो जल्दी join करो और enjoy करो special offers. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.
6: There's a new kind of goodness in the pet aisle. Nature's Gift. Discover the new Nature's Gift grain-free range, now in convenient pouches and delicious kibble. Made with real meat, real vegetables and grain-free recipes, it's a natural choice for everyday feeding. So, looking for nature's goodness? You'll love Nature's Gift. All new look, same great nutrition in supermarkets now. The delicious dog food packed with real goodness. Give them the gift of Nature's Gift grain-free. Discover the range in-store today.
7: It's normal to feel low sometimes. Just like how the weather changes, so can our moods. Pay attention to your feelings. Reach in and check how you're doing. Reach out and talk to someone you trust. If you need to talk with a trusted professional, Asian Family Services is here to support. Call the Asian Helpline on 0800 862 342 for free, confidential support. If you or someone you know is in immediate danger, please call 111 or emergency services.
8: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
9: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living Manukau. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Manukau.
8: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800 722462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
10: 9 मिनट रह गए हैं फिलहाल अब 9 बजे में ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स और हमने आपसे कहा था वेरी ब्रीफली इसके बारे में डिटेल्स दिए थे 7:30 न्यूज़ हेडलाइंस में कि जो इंडियन नेशनल सॉकर टीम है ये आ रही है न्यूजीलैंड और दो मैचेस जो है यहाँ पर टीम खेलने वाली है और ये नवंबर महीने में होने जा रहे हैं ये पहली बार है जब इंडियन फुटबॉल टीम जो है ये न्यूजीलैंड के टूर पर आएगी लास्ट आई थिंक वो आए थे वाज इन 2005
11: ओह वाओ
10: 2005 एंड उस समय पर उन्होंने फिजी में जो फिजी नेशनल सॉकर टीम है उनके साथ मैचेस जो है ये खेले So it's exciting times. एक और Indian cricket team जो है ये बस next month यहाँ पर रहेगी and in November following the Indian cricket team, the Indian national football team जो है ये दो international matches खेलने के लिए आ रही है जो in-depth story है ये Rova पर आपको मिल जाएगी तो आप जाकर checkout कर सकते हैं उसका link जो है ये हमारे Facebook page पर भी है
11: Right, और इसके अलावा आपके लिए याद रहे हमने कहा था अगले घंटे कुछ special होने वाला है आपके फायदे की बात
10: हाँ, you cannot afford to miss that
11: जानने के लिए क्या है ये हमारे साथ बनी रहेगा

0: to keep an eye out for any items of interest after a person reportedly jumped in. Police, search and rescue boats and a helicopter are assisting. Reports were received about a person entering the water around 1:30 this morning near Swarbrick Landing. Calls are growing for an independent inquiry into the finances of Fire and Emergency. The union is handing over a petition with more than 50,000 signatures today. Spokesperson Watty Watson says it shows how the public feels.
1: The 52,000 is strong, but I think it is a sample of all the support, given what people have said to us while the firefighters are out striking.
0: The scrapping of the RMA is being touted as the biggest overhaul of the country's planning system in 3 decades. Minister in charge Chris Bishop says it's a great moment.
2: We are restoring the freedom for New Zealanders to shape their own futures by using property as they choose.
0: Two countries have walked out during President Trump's UN address. The Cuban delegation left after he labelled the country a failed state, and Iran's reps got up after he threatened to annihilate them.
3: And do it quickly, never giving them a chance to kill and destroy people and countries again. Do I drive them into hell with no chance of survival?
0: In sport, Ryan Fox makes his President's Cup debut this week against the USA at the Medina Country Club in Chicago. The international team are massive underdogs to win, but captain Jeff Ogilvy is quietly confident.
4: We haven't cracked the code for 28 years, but we're working on it and we feel pretty good about this team, so they're all just excited to get going.
0: Into rugby with All Blacks Travel and Hospitality.com. Bledisloe Cup hospitality packages selling at Eden Park now. The Springboks have made 13 changes for Sunday night's test against the Wallabies in Perth.
5: Sports News.
6: Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
7: World's best. Hamari good brands nahi hai.
6: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
8: ऑकलैंड में आज मिला जुला मौसम रहेगा, कुछ बादल छाए रहेंगे, कभी कभार हल्की बारिश हो सकती है. अभी ऑलमोस्ट 14 डिग्रीज है और आज का हाई 16. ओवरनाइट चिली कंडीशन, कम से कम 4 डिग्रीज आज आप फील करने वाले हैं.
6: The Breakfast Show with Weejay and Pooja.
9: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Monaco.
5: What's going on? Kya bakte ho?
10: Are kehna kya chahte ho?
11: आज आपके लिए हम कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें लेकर आए हैं जिसके बारे में वी कैन से कि दीज थिंग्स आर व्यूड डिफरेंटली इन अ पर्टिकुलर कंट्री, लेकिन शायद जिस कंट्री में आप हैं वहाँ पर इसे डिफरेंटली व्यू किया जाता है. आई वॉज रीडिंग दिस, चाइना में हर बार एक मैरिज मार्केट जो है ये लगती है. यहाँ पर क्या होता है, पेरेंट्स जो है ये जाते हैं इस मार्केट में अपने बेटे या बेटी के लिए रिश्ता ढूंढने के लिए, और यहाँ पर अपने बच्चों को लेकर भी जाते हैं. कभी कभी सिर्फ पेरेंट्स जाते हैं. जो क्या करते हैं, जब यहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर बहुत से लोगों के प्रोफाइल्स लगे रहते हैं विद देयर फोटोज, एंड दे गो एंड हेल्प देयर किड्स पिक, या फिर पेरेंट्स जो है ऑलरेडी अपने बच्चों के प्रोफाइल लेकर ढूंढते रहते हैं, एंड वहाँ से दे गेट देम इन टच, और फिर उनकी शादी जो है अरेंज्ड यू नो तरीके से की जाती है. इट इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग टू हैपन, अ मैरिज मार्केट. It's happening here in New Zealand. I don't know कैसा होगा उसका reaction, but this is something जो China में आज भी होता है.
8: अच्छा.
11: Certain part of China में, not everywhere though. दूसरी ओर, I was reading about this very interesting thing जो note किया गया है as a professional life में, Japan में इनफैक्ट ये होता है. इसे Japanese में, if I'm saying it correctly, inemuri जो है ये कहा जाता है, और ये इसका मतलब होता है briefly dozing off या sleeping जब आप कहीं किसी पब्लिक अरेंजमेंट में हो, पब्लिक जगह पर हो, या फिर काम पर हो, प्रोफेशनल सेटिंग में हो. इट हैज़ हिस्टोरिकली बीन व्यूड डिफरेंटली फ्रॉम सिंपली स्लैकिंग ऑफ. इसे उस तरह से नहीं देखा जाता, इसे एज अ साइन ऑफ टायर्ड फ्रॉम वर्किंग हार्ड इस हिसाब से देखा जाता है.
8: अच्छा.
11: एंड इन सम जैपनीज वर्क प्लेसेस किसी एक शख्स का ब्रीफली सो जाना ड्यूरिंग अ मीटिंग या फिर अपने डेस्क पर सो जाना इज अ साइन ऑफ बीइंग टायर्ड because they were working hard. और इस सिचुएशन में उनको इंटरप्ट भी नहीं किया जाता, उनको डिस्टर्ब कर उठाया भी नहीं जाता. देयर इज आल्सो अ कल्चर आइडिया दैट समवन कैन बी फिजिकली asleep while still demonstrating कि वो उस पर्टिकुलर सोशल या वर्क एनवायरनमेंट में फुली engaged है. However, it does not mean कि कंपनीज officially encourage करते अपने employees को to sleep at work, या फिर ऐसा कोई एक you know arrangement है, but अगर वर्क प्लेस में ऐसा हो, एंड वर्क प्लेस एक्सपेक्टेशंस वेरी करते हैं जापान में नो डाउट, लेकिन अगर वर्क प्लेस में ऐसा हो जहाँ पर आप यू नो लंबे समय के लिए या फिर रेगुलरली जो है बीइंग अनएबल टू वर्क क्योंकि आप सोए रहते हैं, तो इसे अनएक्सेप्टेबल भी माना जाता है. बट ब्रीफ ब्रेक्स अगर लिए जाए

0: आते हैं किसी भी कर्मचारी द्वारा, दे जस्ट ट्राइंग टू कैच दैट पावर नैप ताकि उनमें वो वापस से एनर्जी आए, तो इसे डिस्टर्ब नहीं किया जाता. एंड इट टोटली डिपेंड्स आजकल क्या अरेंजमेंट्स जो है ये होते हैं विद योर एम्प्लॉयर. सो इंटरेस्टिंग है ना,
1: वेरी वेरी इंटरेस्टिंग.
0: आई एम नॉट श्योर कि ये हर जगह पर मौजूद है या नहीं. यहाँ हमारे ऑफिस में देयर इज अ वेलनेस रूम जिसे वेलनेस रूम के नाम से जाना जाता है. आई हार्डली सी पीपल गोइंग इन देयर एंड टेकिंग अ ब्रेक, पर कभी कभी किसी की तबीयत खराब होती है तो वो वहाँ पे जा सकते. आई थिंक वंस लास्ट ईयर बिफोर लास्ट ईयर सो समवन 2-3 पीपल इनफैक्ट वहाँ पर जाकर रेस्ट करने के लिए, या फिर यहाँ पर अगर कोई जनरल चेकअप वगैरह होता है जो ऐसे ऑर्गेनाइज की जाती है तो वहाँ पर उसी कमरे में वो चेकअप होता है. एंड मोस्ट ऑफ द पीपल जस्ट गो इन टू दैट रूम टू हैव सीक्रेट कन्वर्सेशंस ऑन देयर फोन ऑल्सो. दैट्स अ डिफरेंट केस. बट हाँ, एक रूम तो है. I've never been in the room.
1: मैं भी कभी नहीं गया हूँ. But the thing is कि जो environment है itself relaxing है लोगों के लिए. That's why maybe wellness room की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती. Relax तो कर सभी काम करते हैं.
0: Open work culture है, जैसे cubicles नहीं है यहाँ पे.
1: You're not confined to your desk. आप कहीं पर भी जाकर बैठ कर
0: वहाँ बैठो,
1: काम करो.
0: हालांकि हम अपनी जगह से हिलते नहीं है, वो अलग बात है.
1: गप्पे मारते हो. हाँ, आपको किसने मना किया है?
0: वही प्रॉब्लम वही है ना कि आप नहीं मूव कर सकते. We've got so much of work कि अगर अपने डेस्क से मूव होते हो तो आप कैसे करोगे? Hi Pooja and Vijay, Ram Ram. It's Neetu from Manurewa. My mom, dad and nephew are here with me from Fiji to visit us. Can you please play a nice Ganesha song for my parents since my dad is also a Pandit ji. अरे वाह
1: पंडित जी, स्वागत है न्यूजीलैंड में आपका.
0: उम्मीद है कि आप एंजॉय कर रहे हैं ना अपना ये ट्रिप टू न्यूजीलैंड. डॉट नो पहली बार आए हैं कि पहले भी आ चुके हैं. बट विल डेफिनेटली ट्राई एंड डू दैट नीतू. बट थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए. एंड ऑफ कोर्स वेलकमिंग योर मम डैड एंड नेफ्यू टू न्यूजीलैंड. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए.
1: हमने कहा था ना कि इस घंटे कुछ बहुत ही खास होने जा रहे हैं. आपके फायदे की बात जो है ये होने जा रही है
0: जी,
1: है ना
0: जी.
1: तो इसका पहला क्लू जो है ये हमारे फेसबुक पेज पर आ चुका है. वॉट यू नीड टू डू राइट नाउ इज You go to our Facebook page. आपको एक पोस्ट मिलेगा जहां पर आपको डिटेल्स मिलेंगे कि क्या है या व्हाटएवर. ऑल यू गॉट टू डू इज लाइक दैट पोस्ट और कमेंट सेक्शन में टैग एनीबॉडी इन न्यूजीलैंड. आपके जान पहचान का कोई भी न्यूजीलैंड में है तो उन्हें आप जाकर वहां पर टैग कर सकते हैं.
0: Okay.
1: लेकिन आपके पास टाइम बहुत कम है क्योंकि थोड़ी ही देर में ये होने जा रहा है जो कुछ भी आपके लिए है. तो अगर अभी आप वो कर सकते हैं देन इट वुड बी रियली नाइस. विजिट आवर फेसबुक पेज. आप जैसे बताती हैं हम
0: 104.2 FM विद द ब्लू टिक.
1: दैट वन हाँ.
0: वेरीफाइड पेज है, हमारा ऑफिशियल पेज है.
1: तो आप उस पेज पर जाएं, आपको एक टेक्स्ट क्या बोलते हैं टेक्स्ट पोस्ट मिलेगा. उस पोस्ट में आपको डिटेल्स मिल जाएंगे कि क्या है. एक हिंट जो है ये आपको मिल जाएगा. उसे आप लाइक करें और कमेंट सेक्शन में यू टैग एनीवन यू नो इन न्यूजीलैंड.
0: हाँ, इन न्यूजीलैंड ना प्लीज इस बात का ख्याल आप रखें. तो आप जाकर चेक तो करें सबसे पहले कि वो पोस्ट है क्या, क्योंकि उस पोस्ट में ही लिखा हुआ है कि व्हाट इज देयर फॉर यू, क्या बेनिफिट है आपका. राइट,
1: सो या ओह माय गॉड,
0: हो गए कमेंट्स ऑलरेडी. वेरी गुड
1: सलमा एंड पूजा, दे वेरी रियली फास्ट,
0: वेरी वेरी फास्ट. फिलहाल याद दिला दे, इफ यू आर एन उबर ड्राइवर, पे अटेंशन टू दिस, अटेंशन टू ऑल उबर ड्राइवर्स. इफ यू ऑलरेडी हैव अ क्लेम विद नॉट योर फॉल्ट सर्विसेज, इट इज मूविंग फॉरवर्ड एंड ए क्लेम्स मैनेजर जो है विल बी इन टच विद यू इन रिगार्ड्स विद दिस. इफ यू हैव नॉट अप्लाइड येट, इनटेक फॉर जो है ये अब ओपन है फॉर यू टू अप्लाई. Please note that the Not Your Fault Services phone team currently at capacity है. इसका मतलब कि अगर आप कॉल भी करोगे तो आपके कॉल्स नहीं आंसर किए जाएंगे शायद. It is why आपको encourage किया जाता है to apply online. nyfservices.com. Remember nyfservices.com. इसे विजिट करते हुए आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं.
2: Nothing na. Na na na na nothing na. Intrigued the thing, the thing, the thing, nothing enough.

0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Manuka. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Manuka.
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja. I'm Kelly Jari. And we're playing Bollywood's biggest hits. 17 minutes ho rahe hain. 9 bajkar. Aur humne aapse kaha tha ki aaj kuch bahut hi khas jo hai ye hum aapke liye lekar aane wale hain. Aur iski badi zabardast taiyariyan jo hai ye bhi chal rahi thi. So we've got some very special guests in the studio jinka aaj hum swagat karna chahenge. And they've been with us. Couple of months back, पीछे अगर हम जाएँ तो यही स्टूडियो था, यही माहौल था और इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट जो है ये हुआ था. हो हल्ला के साथ हमने अपना जो पार्टनरशिप है ये अनाउंस किया था विद फॉर्च्यून.
3: एब्सोल्युटली द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा जिनके मेजर स्पॉन्सर्स है फॉर्च्यून. और आज हमने आपको सुबह से ये बताया था कि अराउंड दिस आवर जहाँ पर कुछ स्पेशल आपके लिए हम लेकर आने वाले हैं. और क्या स्पेशल है, कौन आएंगे, क्या बताने वाले जिसमें आपका फायदा है.
2: तो सबसे पहले नीरव भाई वापस आ गए हैं और स्वागत हम कर रहे हैं आपका. नीरव भाई, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम. आप थोड़ा सामने आ जाइए. काशे का हाइट में थोड़ी छोटी है, वो देख नहीं पाएगी आपको ना.
4: मेरे से छोटा नहीं, छोटी नहीं होंगी.
2: उनका माइक ऑन करना पड़ेगा आपको.
3: हाँ जी, सॉरी. आदत नहीं है ना.
2: सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम, कैसे हैं आप?
4: थैंक यू, गुड मॉर्निंग. यप, नो, सब बढ़िया है, भगवान की दया है, चले जा रहा है.
2: किधर जा रहा है?
3: ऊपर ऊपर.
2: सो इट फील्स सो गुड टू वेलकम यू बैक इनटू द स्टूडियोस. एंड अ पार्टनरशिप जो जिसकी शुरुआत कुछ समय पहले हुई थी. मेरे को बड़ी अजीब सी आवाज एक आ रही है.
3: ये आई थिंक
2: हाँ, बाकी सब ठीक है दुनिया में. तो कुछ महीने पहले ये पार्टनरशिप जो है ये शुरू हुई थी. एंड समय के साथ ये और मजबूत होता जा रहा है और क्या बोलते हैं उसको, व्हाट्स द टर्म, घनिष्ठ होता जा रहा है.
3: या या घनिष्ठ, इतना भारी भरकम शब्द सुबह सुबह.
2: हाँ हाँ हाँ,
4: फॉर्च्यून के ब्रांड की तरह.
2: सो नीरव भाई, कैसी तैयारियां चल रही हैं अभी? देखिए जो क्या बोलते हैं त्योहारों का मौसम जो है ये अब आ चुका है. सावन और फिर उसके बाद अभी गणपति फेस्टिवल, इसके बाद
3: नवरात्रि, फिर दिवाली.
2: हाँ, तो ऐसे मौके पर हमें पता है कि आप लोग हमेशा कुछ ना कुछ खास तैयार जो है ये करते हैं. तो इस बार आज किस चीज का विमोचन हम करने वाले हैं? आज
3: माय गुडनेस, विमोचन. पहले तो नहीं नीरव जी, पहले बताइए विमोचन का मतलब.
4: यार आई थिंक कि किस चीज की क्या धमाका करने वाले
3: हैं आम भाषा में बोले तो.
4: हमारा देसी भाषा है ना अपना.
3: हाँ,
4: नहीं तो देखो फॉर्च्यून तो एवरी साल कुछ ना कुछ तो लेके आता ही है
2: जी.
4: हम थोड़ा सा इस बार दिवाली जल्दी प्लान कर रहे
3: हैं
4: तो कंज्यूमर्स के लिए जो है नमस्ते इंडियन सुपरमार्केट जो नोट शोर के अंदर है और अपने लोटसिस के जो स्टोर्स है वहाँ पे धमाकेदार प्रमोशन चलने वाला है जिसके अंदर 70 पीपल इन द 7 वीक्स एवरी वीक 10 लोगों को पर स्टोर $101 का वाउचर भी मिलेगा. वाउचर जितने का चांस मिलेगा. बेसिकली कुछ नहीं करना है आपको. दो राइस उठा रहे हो, फॉर्च्यून का राइस उठा लो, बढ़िया है ही, प्राइस भी अच्छा है. वो उठा लो, साथ में चक्की आटा तो फेमस ही है, सिंपली ऑयल है, कुछ भी उठा लो. हमारा बेसन है, टमाटो पेस्ट है, मैंगो पल्प आ गया है तो मैंगो पल्प है. उठाओ दो प्रोडक्ट्स, अपना रिसिप्ट डालो तो उसके अंदर आप ड्रो के अंदर चले जाओगे. तो एवरी वीक 10 people will get $101 voucher
3: for 7 weeks.
4: For 7 weeks.
3: Right.
2: So.
3: हाँ जोड़ लो आप. मेरी मैथ्स बहुत बेकार है.
2: मेरी मैथ्स 10 weeks 70 people.
4: हाँ.
2: $100.
4: 101.
2: हाँ. 7,000 होता है.
4: 7,000 होता है per store. तो 7,000 जीतने का मौका है.
3: क्या बात है.
2: Per store.
4: Per store. तो Lotus के banner, कोई भी Lotus के store के अंदर आप खरीदोगे.
2: हाँ.
4: तो आपको वहां से टोटल 7,000 जीतने का मौका मिलेगा.
2: हाँ.
4: और नमस्ते इंडियन सुपरमार्केट जो अपना नोट शोर के अंदर है.
2: हाँ.
4: उधर से अगर आप खरीदते हो तो वहां से भी टोटल ऑफ 7,000 डॉलर जीतने का मौका मिलता है। बट ये खत्म नहीं हुआ है, ये खत्म नहीं हुआ है।
3: मैं तो बोलने जा रही थी लाइन पर, चलो पहले आप ये बताओ फिर बताती हूँ मैं।
4: और ऊपर से $501 का ट्रॉली डैश मिलेगा।
3: ओह वाओ।
4: तो अगर आप जीत जाते हो तो टोटल पूल बनेगा, उसमें से आपको अनदर $501 जीतने का मौका मिलेगा।
3: सो वी टॉकिंग अबाउट 7 वीक्स।
5: ये भी पेस्टो होगा
4: पर बैनर। हाँ, तो एक लोटस से निकलेगा
3: और एक नमस्ते। सो बेसिकली ये 7 वीक्स में जितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे वो तो जीतेंगे 101 का जो वाउचर है, पर उसके अलावा 1% इन्हीं लोगों में से उनको मौका मिलेगा 501 का एक और एक ट्रॉली डैश जीतने का।
4: जी एकदम बढ़िया।
3: तो मतलब दो बार विनर बन सकता है।
4: आप चाहो आप बार बार विनर बन सकते हो।
3: आप ले सकते हैं।
4: मैं नहीं ले सकता, आप ले सकते हो।
3: अच्छा
5: तो एक वीक चावल खरीदो, एक वीक बेसन खरीदो, एक वीक सिंपली ऑयल खरीदो, मैंगो पाल पा गया है।
3: सी वीकली शॉपिंग तो लोग करते हैं वैसे भी, एंड इफ यू हैव यू नो योर लिस्ट रेडी एंड यू हैव गॉट आइटम्स जिसकी जरूरत है आपको, तो यू हैव टू गो एंड लुक फॉर फॉर्च्यून का आइटम, दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। और दो आइटम्स आपको लेने होंगे ताकि आपकी एक एंट्री जो है जाए। सो व्हेन यू बाय टू फॉर्च्यून आइटम्स आप रिसीट पे अपना नाम और पता,
4: नंबर नाम पता ईमेल एड्रेस डाल दो। हाँ। नंबर सही डालना, लोगों को नंबर नहीं लगते
3: क्योंकि गलत नंबर डाल देते हैं। और राइटिंग सही हो क्योंकि नंबर समझ में भी आना चाहिए।
4: मेरी तरह राइटिंग नहीं रखो।
5: आप इतनी अच्छी खबर दे रहे हो, एक एक एक हेल्प आप करो, थोड़ा सा और करीब आ जाओ,
3: थोड़ा नजदीक आके बताइए।
5: हाँ, ऐसे ऐसे जैसे मैं हूं। सो द थिंग इज,
3: दूरियां कम कीजिए, करीबियां बढ़ाइए।
5: नमस्ते नमस्ते इंडियन सुपरमार्केट नोट शो। लोटस मुझे पता है एक मेरे घर के बाजू में है जहाँ मैं घूमता रहता हूँ
3: बगैर मतलब के।
5: यहाँ
4: एक मैनेकाओ में है, एक बॉटनी के अंदर है,
3: तीन है मतलब।
5: अच्छा
3: वाह वाह वाह, क्या बात है।
5: अच्छा मैं फिर से आपसे कंफर्म कर लूँ, ये जो क्या वीकली ड्रो होगा $101 का वाउचर एक वीक में जो वीक में निकलने वाला है, एक निकलेगा नमस्ते इंडियन सुपरमार्केट नोट शो, और लोटस के अलग अलग निकलेंगे या एक
4: लोटस एक बॉटनी से निकलेगा पहले वीक में, दूसरे वीक में फिर मनकाउ से निकलेगा, रोटेट होता जाएगा
3: और फिर लास्ट वाला माउंट रोस्किल में।
5: सो 7000 पे ब्रांच, 7 वीक्स
3: के लिए
5: 7000 पे ब्रांच, ओवर 7000 पे ब्रांच, दैट मींस हां माय गॉड,
3: बहुत पैसे इनके पास देखा।
4: पैसे अपने अपने लोगों के लिए, तभी तो थोड़ा सा सेवा भी करने का मौका भी मिल जाता
5: है। आप आए हो, इतनी अच्छी खबर सुना रहे हो, इससे पहले कि और बातें हम करें और आगे लोगों को बताएं क्या करना कैसे करना व्हाटएवर, लोगों की सेवा में आप आए हो, तो जो लोग अभी आपको सुन रहे हैं उनके लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना।
4: तो देखो आप हमको कॉल कीजिए, अगर आज टाइम है उनके पास, अभी टाइम है तो फोन करें। और हम 251 का वाउचर विल गिव इट फॉर नमस्ते इन 251 फॉर लोटस राइट नाउ टुडे।
3: ये एक चीज मैं पूछ सकती हूँ, ये हर एक वाउचर में आप 1 एक्स्ट्रा क्यों डाल रहे पीछे?
4: देखो
5: 101 रुपए वाला वो होता है ना, कुछ
3: लकी है,
4: लकी फॉर्च्यून होता है ना, जब दिवाली अच्छी सीजन होती है, अच्छी फेस्टिवल होती है, तो जब मैं छोटा हुआ करता था तभी भी मेरे दादा परदादा जो थे विल गिव यू $101 का, तो चांदला बोलते ना चांदला, तो 1 रुपया जो है वो बहुत मायने रखता है। 100 रुपए के मायने नहीं है, 1 रुपए के, 1 रुपए से आप कहीं निकल सकते हो ना, दैट्स व्हाट द ओवरऑल मीनिंग ऑफ इट इज। तो 101 शकुन है, शकुन बोलते ना, तो शगुन हिंदी में शगुन है, सो दैट्स व्हाट वी ट्राइंग टू अचीव, वी वांट टू बी पार्ट ऑफ द कम्युनिटी।
5: तो ऐसा करते हैं, एक को हम कॉल करने का मौका देंगे, एक वाउचर जो है टेक्स्ट प्लेटफॉर्म पर आपको फॉर्च्यून लिखना होगा।
3: बोला नहीं कि कॉल आ गया, देखो
5: हाँ इनको रोक लो पहले, मैं बता दूं ना, जब तक आप हम कॉल ले रहे हैं आप टेक्स्ट कर सकते हैं, फॉर्च्यून लिखे, अपना नाम लिखे और क्या लिखे,
3: भेज दे 5599 पे, बिकॉज नाउ यू नो कि नमस्ते लंदन नमस्ते इंडियन सुपरमार्केट जो नोट शो में है उसके लिए एक आप एक वाउचर दोगे, और एक लोटस ब्रांच के लिए ना,
5: सो 251
3: दो वाउचर्स है राइट। तो लोकेशन आपको पता है, उस हिसाब से भी आप हमें बता सकते हैं कि कहाँ के लिए आपका ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा। तो टेक्स्ट प्लेटफॉर्म पर एक जाएगा वाउचर, यू जस्ट हैव टू राइट फॉर्च्यून इन योर नेम और 5599 पर भेजना है आपको।
5: इतना हम आपको बताएं, सुशील कुमार, सलमा, नीले रमेश, आपने फॉर्च्यून लिखा, अपना नाम लिखा, लेकिन कहां से मैसेज भेज रहे हैं वो आपने नहीं बताया. इट्स कंपलसरी आपको बताना होगा कि आप कहां से अपना मैसेज जो है.
3: नीतू ने लिखा कि वो मनीरवा से भेज रही है. नितेश अमित है पापा टोटो से. अरे रामा रामा से मूर्ति जी का भी मैसेज आ गया. देखो पहले चलो अब कॉल के लिए आपने बोला तो कॉल जा रहे.
5: आप ये पहनने की तकलीफ कर
3: And I'll start noting down the number. आप बात कीजिए, मैं नंबर वगैरह नोट कर लेती हूँ उनका ना.
5: गुड मॉर्निंग.
6: गुड मॉर्निंग.
5: कैसी हैं आप?
6: मैं ठीक हूँ. आप दोनों कैसे हैं?
5: हम दो नहीं हैं,
3: तीन है. नीरव जी भी है यहाँ पे.
6: तीन है, सॉरी तीन भी नहीं, चार है.
3: अच्छा
5: चार नहीं छह है.
6: सॉरी फिर उसका तो आई हैव नो आईडिया.
5: जी क्या नाम है आपका मैम?
6: पूजा.
3: अरे वाह.
5: अच्छा पूजा कैसी हैं आप?
6: मैं ठीक हूँ. अगेन आप कैसे हैं?
5: अच्छा नीरव जी आपसे कुछ बातें करना चाहते थे.
6: हाँ जी. आई वुड लव टू टॉक टू हिम.
3: अरे वाह बोलिए नीरव जी.
4: कैसे हो पूजा जी?
6: गुड गुड. आप कैसे हैं?
4: बस देखो आपकी आवाज सुन के मजा आ गया.
6: आपकी प्रमोशन सुन के मजा आ गया.
5: इससे बढ़िया और क्या फीडबैक चाहिए नीरव को?
6: हाँ जी.
4: कौन सा फेवरेट प्रोडक्ट रखता है आपका?
6: सॉरी
4: आपका फॉर्च्यून में सबसे फेवरेट प्रोडक्ट कौन सा रहेगा?
6: राइस एंड बेसन.
5: राइस एंड बेसन. चलो आपका नाम हम ड्रो में शामिल कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद फैसला करेंगे. थैंक यू सो मच आपके कॉल के लिए. फॉर्च्यून अपना नाम और कहां से आप सुन रहे हैं. कान मत लिखिएगा.
3: कुछ लोग मैं कान से सुन रहे हैं. जो आपके तरह है वो लिखेंगे, वही लिखेंगे.
5: जिस एरिया में आप हैं वहां का जो सबब का नाम वो लिखकर 5599 पर आप हमें टेक्स्ट करें. इन द मीनवाइल
3: क्या करना है?
5: क्या करना है? अच्छा किसी और का कॉल नहीं आया?
3: नहीं कॉल आ रहा था, आप बोल रहे थे तो उन्होंने रख दिया.
5: उनको लगा होगा कि मैं.
3: अच्छा ऐसा करते हैं आपको हम 2 मिनट का टाइम और दे रहे हैं. विद इन 2 मिनट्स देखते हैं कितने लोग हमारे पास कॉल कर पाते हैं.
5: ऐसा ही करना है. अपना नाम, कहां से आप सुन रहे हैं और आपका फेवरेट फॉर्च्यून प्रोडक्ट
3: इतना ही बताना है. अरे इतना सिंपल है यार ये. राइट. 0800 800 4866 ये हमारा टोल फ्री नंबर है जिस पर आप कॉल भी कर सकते हैं. बट राइट नाउ मैसेजेस हमारे पास काफी आ रहे हैं. बहुत से लोग हमारे पास अपने मैसेज भेज रहे हैं. रिमेम्बर आप जब अपना मैसेज सेंड कर रहे हैं फॉर्च्यून लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जो प्रमोशन है आपके लिए हम फॉर्च्यून की ओर से लेकर आ रहे हैं. स्पेशल प्रमोशन खास दिवाली के मौके पर.
5: कब से शुरू हो रहा है ये प्रमोशन? ये तो सबसे जरूरी बात है ना.
4: मंडे 28 सितंबर से.
3: कमिंग मंडे से.
5: नेक्स्ट वीक मंडे से. ऑल यू हैव टू डू इज व्हेनेवर यू गो टू शॉप नमस्ते इंडियन सुपरमार्केट या फिर लोटस के किसी एक आउटलेट में बाय एनी टू फॉर्च्यून या सिंपली प्रोडक्ट्स रिसीट के पीछे अपना नाम पता और मेरा फोन नंबर लिखें और उसे एंट्री बिन में डाल दें.
3: आपका फोन नंबर सबको पता है जैसे. चले गाना हो जाए इसके बाद विल चेक आउट की कितने लोगों ने हमारे पास अपने मैसेजेस जो है ये भेजे हैं.
5: सो फॉर्च्यून
3: कॉल आ रहा है. चलो पहले ये लेते हैं. ये जीने नहीं देंगे.
7: गुड मॉर्निंग.
3: जी किन से बात
7: कर रही हो?
3: क्या नाम है आपका?
5: संगीता.
7: कविता.
5: ओके कविता. मैं कहीं कभी ना बन जाऊं.
3: ओहो
5: सीरियस. और बताओ कविता जी आप किस इलाके में रहती हैं?
7: फ्लैटबुश.
5: तो वहाँ भी तो है ना उस एरिया में. हाँ लोटस है बॉटनी में. और आपका फेवरेट फॉर्च्यून प्रोडक्ट?
7: राइस.
3: आप सुनाइए.
8: बहुत बढ़िया जी.
3: नाम आपका?
8: पुनीत.
3: पुनीत.
8: हाँ जी.
5: बहुत पुनीत अवसर पर कॉल किया आपने.
8: हाँ जी. हाँ जी.
5: आप किस एरिया में रहते हैं भाई?
8: मैं मनुकाओ जी.
5: मनुकाओ में रहते हैं. और आपका फेवरेट फॉर्च्यून प्रोडक्ट?
8: वाइफ को पता है नॉर्मली तो वही लेती है जी. मैं आपको झूठ बोल दूं मेरे को पता है, मेरे को नहीं पता जी.
5: अच्छा चलो कोई नहीं. सो इट्स ऑनेस्ट. इतना ऑनेस्ट.
3: वी विल डेफिनेटली पुट योर नेम.
5: आपको आपको तो ट्रॉली को धक्का देने का काम है ना आपका.
3: पर आपका नाम हम डेफिनेटली ड्रॉ में कर रहे हैं पुनीत. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग. थैंक यू. तो चलिए अभी एक गाने का टाइम हो रहा है और याद रहे कि आप हमारे पास जरूर अपने मैसेजेस जो है 5599 पर सेंड कर सकते हैं. कॉल आ गया तो मैंने बोला ले लेते हैं. गुड मॉर्निंग.
9: गुड मॉर्निंग.
5: हाय, क्या नाम है आपका?
9: माय नेम इज शेरन. हाउ आर यू गाइस?
5: वी आर गुड शेरन. कहाँ से कॉल कर रही हैं आप?
9: कॉलिंग फ्रॉम ओनिहांगा.
5: हमारे लिए कि ओनिहांगा से कोई कॉल करता है. माउंट रोस्किल आप आ जाओ, वो लोटस में चाय वाय पियेंगे आराम से. लास्ट टाइम हम गए थे वहाँ पे हमको चाय मिली थी.
3: आएंगे आप, चाय पिलाना इनको.
5: हाँ, मैं पिला दूंगा.
3: शेरन, आपका फेवरेट फॉर्च्यून प्रोडक्ट? राइस एंड बेसन.
5: Nice. Okay. Yes. Very nice.
3: Top brand products लगते हैं ना फॉर्च्यून के, राइस एंड बेसन. अभी ज्यादातर लोगों ने
5: मुझे राइस यूज करना आता है, बेसन यूज करना नहीं आता, तो मुझे नहीं पता.
4: चाय के साथ पकौड़े बना के खिलाना
6: तो बना लेंगे ना.
3: अरे चेहरे पे भी लगा लो, डबल फायदा है उसका. थैंक यू शेरन, हैव अ वंडरफुल डे. थैंक यू,
6: यू टू. बाय बाय.
3: गुड मॉर्निंग.
5: अरे
3: अरे कौन आ रहे हैं भाई जी? क्या नाम है आपका?
6: मनीषा.
3: मनीषा,
5: सब ठीक है? मनीषा
6: अब ठीक है.
5: भात बनाए?
6: हाँ, रोज बनाते
5: हैं. कभी कभी चक्की आटा लगा के रोटी भी बनाओ. कहाँ से?
6: रोटी नहीं बना.
5: मैं रोटी नहीं बनाती.
3: मेरी बहन.
5: कहाँ कहाँ रहती हैं आप मनीषा?
6: वेटल डाउन.
5: अच्छा, बस ऐसे घर से निकलोगी, थोड़ा सा राइट थोड़ा सा लेफ्ट,
3: कहाँ पहुंचेगी फिर?
5: लोटस.
3: अच्छा, ओके
5: ओके. आपका फेवरेट प्रोडक्ट फॉर्च्यून का?
6: राइस.
3: राइस, ओके.
5: हर दिन
3: भात बनाती है. थैंक यू मनीषा, आपका नाम भी ड्रॉ में शामिल कर रहे हैं. थैंक यू.
6: थैंक यू. बाय
3: बाय.
5: अभी ऐसा करते हैं कि
3: गाना बजा ही देते.
5: गाना बजाना पड़ेगा, वरना कल से हमको घर पे रहना पड़ेगा.
3: मेरा तो कंफर्म्ड, आपका मुझे नहीं पता.
5: हाँ,
3: तो
5: इस दौरान आप क्या करें, फॉर्च्यून
3: टेक्स्ट कर सकते हैं.
5: अपना नाम और कहां से आप हमें सुन रहे हैं वो आप टेक्स्ट करें, एंड उसके बाद वील आस्क
3: नीरव जी टू डू दी ऑनर्स.
5: वो क्योंकि वो दे रहे हैं $251 का वाउचर. हाँ, नमस्ते इंडियन. बाय द वे मैं आपको बताऊं, तृप्ति रहती है सिल्वरडेल में.
3: हाँ,
5: वहां से उन्होंने मैसेज किया है. हैव यू बीन टू सिल्वरडेल?
3: हाँ, बहुत बार.
5: हाँ,
3: राइट.
5: सिल्वरडेल नॉर्थकोट से भी मैसेजेस वगैरह आए हैं. सो फाइनल गाना कितने मिनट का है?
3: दो गाने हैं, एक 4 मिनट का, एक 3 मिनट का.
5: सो बेसिकली 7 मिनट्स. गिव इट योर बेस्ट शॉट. फॉर्च्यून, अपना नाम और कहां से आप हमें सुन रहे हैं, 5599 ये नंबर है. जवाब में अगर आपको जो क्या बोलते हैं लिंक मिलेगा, gffoodservice.co.nz, गुडमैन फील्डा.
3: अच्छा,
5: इनका वेबसाइट है ना. अगर आपको ये लिंक मिलता है, दैट मींस आपका नाम ड्रॉ में गया है.
3: कंफर्म्ड एंट्री आपकी.
5: तब आपने सही तरह से, अब जैसे साइमन कुमार ने पहले अपना नाम लिखा, फिर फॉर्च्यून लिखा, फिर राइस लिखा,
3: तो मिस हो
5: फिर गया. कैल्स्टन लिखा, तो आपको आपका नाम जो है ये ड्रॉ में नहीं गया है.
3: यू हैव टू राइट फॉर्च्यून फर्स्ट. रिमेंबर दैट.
5: फर्स्ट थिंग यू राइट इज Fortune, name, और कहां से सुन रहे हैं?
3: Right. Hollywood's most wanted. गुंडी खड़ दो या सीधा अंदर आओ. मैं लाऊं अपना A game. Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: Culture.
1: Welcome to Kebabs Kitchen. I am Chef Alex और ये है मेरी guest Sarah.
2: क्या बनाते हैं इन कबाब को special, Chef Alex?
1: Perfect blend of spices, tender meat और fresh vegetables. हर कबाब बनता है with love and passion.
2: Wow, these kebabs are amazing. Spices एकदम right and meat is so juicy.
1: ये है अम्मा's kebabs promise, delivering happiness bite by bite. अम्मा's food at your nearest Indian grocery or halal butchery stores.
2: 100% authentic and pure as mother's love.
3: Reliance Ventilation System.
4: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
3: Moisture और ventilation का problem लगता है.
4: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
3: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
5: Contact Reliance Ventilation System on 0800-787-111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18
6: 4.95% finance on your next car. Exclusive to West City Auto Group. Right now, get into the Havel Jolion, Havel H6, Tank 300 or Canon Ute range with 4.95% per annum fixed finance for 48 months with just 20% deposit. Whether you're after something stylish, practical, rugged or ready for work, they've got something for everyone. But hurry, this exclusive offer won't last forever. Speak with Jimmy Taylor and team at West City GWM. For T's and C's, head to westcityautogroup.com. NZ.
7: Settle, win, escape. Finance World is about to take you further with a trip to Bali. Settle कीजिए अपना home loan of 500,000 या उससे ज्यादा Finance World के साथ. And you're automatically in the draw to win a trip to Bali for 2. 5 days, 4 nights, 2 lucky winners. Her eligible home loan of 500,000 या उससे ज्यादा automatically आपको draw में enter करता है. Terms and conditions apply. Visit financeworld.co.nz/Bali. Finance World Limited is a registered financial advice provider.
8: Clocks are about to go forward, which means you're about to lose an hour's sleep. That's better than losing your life. Install smoke alarms where you sleep this daylight saving. This message is brought to you by Fire and Emergency New Zealand.
9: Raz, romance, action aur supernatural power se bhari kahani. A thrilling fantasy adventure. The One, starring Siddharth Malhotra and Tamanna.
10: This one ki kali shakti. रात के साये से भी काले.
9: The One, releasing in cinemas on 25th September.
11: अब मुझे धीरे धीरे समझ आ रहा है, जो कुछ भी हो रहा है सब एक नंबर की बकवास.
9: Distribution partner Forum Films. Rating TBC.
12: हमें माता का बुलावा आया है.
13: At Woolworths, we're helping you get more value every day. Like Pix peanut butter, 380 gram, just $3.89 each. And loose avocados, just 99 cents each. That's the fresh food feeling. T's and C's apply.
14: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
15: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. At Harrington Living Manukau. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Manukau.
16: What's going on?
4: So, the breakfast show with Vijay and Pooja आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं और आज है वेंसडे 23rd of September. थोड़ी देर पहले यहाँ स्टूडियोज में हमने आपको बताया कि एक स्पेशल प्रमोशन जो है ये फॉर्च्यून की ओर से लॉन्च हो रहा है दिवाली के खास मौके पर फ्रॉम मंडे नाउ.
17: या
4: जिसमें आप पार्ट लेते हुए जीत सकते हैं यो शेयर ऑफ $14,000. वो तो
17: नहीं, उससे ज्यादा. हर वीक $101 का ग्रोसरी वाउचर.
4: 10 लोग जीत सकते हैं फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 7 वीक्स. कैलकुलेशन आप खुद कर लो, हमने आपको बस बेसिक्स बता दिए.
17: बहुत सारा इनाम दे रहे हैं. हाँ, हम लोग मैथ्स थोड़ा कम पढ़े उसको उस टाइम पर.
4: नहीं, मैं काफी पढ़ी लिखी हूँ लेकिन मैथ्स अच्छा नहीं मेरा. ऑन द अदर हैंड, देयर विल बी वन पर्सन जिनको $501 का ट्रॉली डैश जीतने का मौका मिलेगा.
17: नहीं, वन फ्रॉम ईच ब्रांड ना.
4: दो विनर्स होंगे. राइट, सो टू विनर्स होंगे. सो बेसिकली इफ यू टेक पार्ट इन द फर्स्ट कॉम्पिटिशन जहाँ पर 7 वीक्स के लिए जो ड्यूरेशन रहेगा इस कॉम्पिटिशन का, यू विन फ्रॉम देयर एंड यू हैव अ चांस, 100% चांस कि आप में से कोई ना कोई इधर $501 का जो ट्रॉली डैश है ये भी जीतेगा. सो दो बार जीतने का मौका.
17: उसके लिए आपको करना क्या है, यू हैव टू बाय टू फॉर्च्यून
4: प्रोडक्ट्स
17: या सिंपली का जो प्रोडक्ट है ना, सिंपली कैनोला ऑयल जो मैं हमेशा खरीद के लाता हूँ.
4: अच्छा, आपको मिलेगा नहीं वैसे, इट्स ओके, लीव इट. राइट, तो ये प्रोडक्ट्स आपको लेने हैं दो, और इनके लेने के बाद रिसीट के पीछे अपना नाम, नंबर, ईमेल एड्रेस और पता, ये लिखकर आप एंट्री बिन में ड्रॉप कर दीजिए इन पार्टिसिपेटिंग स्टोर्स विच इज बेसिकली नमस्ते इंडियन सुपरमार्केट इन नॉट शो देयर इज मेनिका में लोटस देयर इज माउंट रॉस्किल में लोटस एंड देयर इज बॉटनी डाउन्स में लोटस दीज आर द फोर प्लेसेस जहां पर आप पार्टिसिपेट करते हुए ये जीत सकते हैं एंड देन वंस यू विल बी द विनर यू विल बी कॉन्टेक्टेड आपको आपका $101 का वाउचर तो मिलेगा ही लेकिन प्लस यू विल बी इन अनदर ड्रॉ जहां पर आप जीत सकेंगे $501 का ट्रॉली डैश जो दो लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी राइट वी हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग एंड नाउ फाइनली इट्स टाइम टू अनाउंस आवर विनर्स जिन्होंने आज हमारे साथ राइट नाउ थोड़ी देर पहले पार्टिसिपेट किया था इन द प्रमोशन दैट वी लॉन्च्ड वी हैव गॉट सारा हियर विद अस फ्रॉम गुडमैन फिल्डर जो आज अनाउंसमेंट करने वाली है
17: शी स्पीक्स वेरी गुड हिंदी भी बता रही थी इंग्लिश इंग्लिश सॉरी हां
4: सो यस सारा डू द ऑनर्स राइट सारा डू द ऑनर्स प्लीज फर्स्ट अप सारा यू विल हैव टू पिक वन विनर फ्रॉम आवर टेक्स्ट प्लेटफॉर्म द पीपल हु हैव टेक्स्टेड टू अस So you go ahead and announce the name and the location from where they've texted. The number will reveal it. Last four digits only.
0: Sydney. So the first person to win a prize this morning is Tushar from Swanson. Phone number ending in 0103.
4: Amazing.
17: Yeah.
4: So Tushar, congratulations. And Swanson se message kiye inhone
17: $251 ka voucher jo hai grocery voucher bhai usse to I don't know kitne din ki shopping ho jayegi you sorted
18: bahut kono laula
17: hey school holiday ka kharcha nikal gaya uska ha
18: phir gaya
17: ha
4: okay and another winner guys how can we forget there's one more voucher to give away so Sharon I'm sorry
0: sorry we have a second winner Sharon from Onehunga phone number ending in 3302
4: thank you Sarah so sorry about that yeah congratulations Sharon
17: and Tushar बहुत सारी बताइयां विद इन यू नो से 10-20 मिनट्स आप दोनों ने $251 का वाउचर जो है ये जीत लिया है ऑल थैंक्स टू फॉर्च्यून और सिंपली प्रोडक्ट्स ये दिवाली आपके लिए और रंगीन होने वाली इस दिवाली में आपके घर में रंग भरेंगे ग्रोसरीज भरेंगे सब कुछ भरेंगे बट इट डज नॉट एंड हियर मंडे से कॉम्पिटिशन जो है ये शुरू हो रहा है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं आज हमने $502 का वाउचर जो है ये दे दिया है दो लोगों को ऐसा हो सकता है यू नो ऐसा लग रहा है कि इनको मैं बलि पे चढ़ा रहा हूँ ना आज हमने $502 का वाउचर दे दिया है अब आज वो है ना वेंसडे है
4: जी
17: एक एक एक सेट और तो बनता है इतनी बड़ी खुशखबरी आपने लोगों को दी है यू नो अब समुंदर में से एक बूंद जल निकालेंगे तो बहुत डिफरेंस नहीं करेगा
18: विजय और पूजा आपको कौन ना बोल सकता है सर
17: आप कशिका बोल देती है
18: कशिका जी सबको ना बोल देती
17: है ओके
18: बट ना नहीं बोल सकते आपको 100%
17: सो व्हाट वी विल डू इज कल ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा हम लोग एक और ड्रॉ करेंगे जिसमें यही प्राइस होगा ना ये वाला
4: वाउचर्स $251 के वाउचर्स
17: हाँ
4: तो एक या दो
17: दो ना आज दो की तो कल दो करेंगे
4: सेम सेम रखना है आपको
17: हाँ एकदम सेम टू सेम
4: राइट तो टू मोर विनर्स
17: एक नमस्ते का एक लोटस के लिए तो दो दिनों में $1,004 वैल्यूड का ग्रोसरी शॉपिंग वाउचर ये ऑल थैंक्स टू
4: फॉर्च्यून
17: एंड गुडमैन फील्डर की टीम थैंक यू सो मच यू नो आप आए एक तो पार्टनरशिप के लिए थैंक यू विद द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा एंड हम के साथ मीडिया वर्क्स के साथ एंड इतना शानदार इनाम देने के लिए लोगों को इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी देने के लिए थैंक यू सो मच एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बहुत एडवांस में हैप्पी दिवाली
18: थैंक यू कीप बाइंग फॉर्च्यून
4: क्या बात है की बाइंग फॉर्च्यून
17: तो आपको सुनते रहना है कि कल का जो इनाम है ये जीतने के चांसेस आज दिन भर हम आपको देंगे
4: हाँ और जीतने के लिए आपको एग्जैक्टली क्या करना है ये भी रिवील करेंगे बट थैंक यू सो मच गाइस वंस अगेन ऑल द वेरी बेस्ट

0: brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction. Do Baate.
1: आज की दो बातें कहते हैं कि जिम्मेदारियां आती हैं कुछ के हिस्से में, सबके हिस्से में खिलौने नहीं आते.
2: Ooh, that is really deep.
1: और दूसरी बात, जहर की आदत पड़ जाए तो सांप भी प्यारे लगते हैं.
2: Very nice. चले इन्हीं के साथ साथ अब आपसे चाहेंगे इजाजत जाने की. थैंक यू सो मच एवरीवन अपना साथ और समय हमारे नाम करने के लिए आज. टू द विनर्स शेरन एंड तुषार, हमारे हाथ जैसे वाउचर्स लगेंगे. वील डेफिनेटली हैंड इट ओवर टू यू, विल गेट इन टच कि कैसे आप इन्हें क्लेम कर सकते हैं. पर फिलहाल के लिए आज का ये थ्रोबैक आपके नाम किए जा रहे हैं. बाकी का सफर अपना एंजॉय कीजिएगा. कल मिलते एक बार फिर ठीक से बच्चे पर द ब्रेकफास्ट शो विद विजय पूजा लेकर.

0: सुनो, आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया, घर बेचने को कह रहे थे।
1: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं, लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं। डेवलप करना बेहतर लगता है, पर पैसों का डर है।
0: इसीलिए NZPMI से बात कर लो, वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं।
2: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं, आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है। आज ही NZPMI के पॉल से बात कीजिए। NZPMI, टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस। कॉल पॉल ऑन 0800-4NZPMI।
3: हे नेहा, कांग्रेचुलेशंस ऑन योर फर्स्ट होम। तूने तो कहा था कि दो दो बैंक्स ने लोन देने से और एक फेमस ब्रोकर ने तो केस लेने से ही मना कर दिया था, ये घर कैसे?
4: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है।
5: एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया, मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कॉन्टेक्ट किया।
3: नेहा, अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ।
6: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक गुरु।
7: थिंकिंग ऑफ एन EV? थिंक MG। थिंकिंग ऑफ फास्ट चार्जिंग? क्लेवर टेक, impressive range and electrifying performance. Think MG. Thinking of safety features like a 360 degree camera or a 10-year warranty? Think MG. If you're thinking of an EV, you know who to think. See your nearest MG dealer today. Terms and conditions apply.
8: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है।
9: हाँ। अच्छा
8: बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं।
9: मिसेस सिंह,
10: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने।
11: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन, फोकस किचन, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 0928130050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
12: Know someone who may need support to enroll or vote? Ask them what would make it easier. It might be helping to find the nearest voting place, providing a lift, or supporting with the paperwork. Find more accessible information at vote.nz. Choose from audio, braille, easy read, large print, and New Zealand Sign Language. Or call 0800 367656. Brought to you by the Electoral Commission.
13: Hum, Time Check.
14: Brought to you by Maan Tyres. For all kinds of tyres and mechanical services, open 7 days. Call Maan Tyres on 0800 00010.
13: Brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
15: Morning, I'm Glenn Stewart with the latest at 10. A person has died in a two-car crash in the far north this morning. It happened on State Highway 10 in Totara North. The road's closed between Otangaroa Road and Taratara Road with delays expected. Police are appealing for sightings of a 21-year-old man reported missing from Christchurch for over a week. Braden Hepworth was last seen on England Street in Lynwood on September 14th. There are concerns for his welfare.

0: से बैठिए क्योंकि आ रही है
1: माय टाइम विद काशिका।
2: नमस्कार एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू पीपल। हाउ आर यू? स्टूडियो की घड़ी में इस समय वक्त हो रहा है जहां पर आप और मैं मिलकर प्यार से इस खूबसूरत से मौसम में आपका और मेरा साथ जो होता है बिल्कुल शुरू हो जाता है। और ऐसे में आपके साथ सिर्फ एक ही बात शेयर करनी है, आज है हम्पवार। हम्पवार यानी कि बस आप देखो, अगर सामने सवेरा दिखता है, लेकिन सामने के साथ साथ हमें क्या दिखता है? दिखता है कि वीकेंड आ रहा है। अरे भाई, बहुत ज़्यादा हैपनिंग हो जाता है। अच्छा चलो, ये सब तो चलता ही चलता रहेगा, लेकिन आपको अपनी सेहत का ख्याल ज़रूर रखना है। आपको अच्छी अच्छी चीज़ें ज़रूर खानी, अच्छी अच्छी चीज़ें खाने से ज़्यादा मुझे यही याद आ रहा है कि आपको कशिश फूस के सौजन्य से माय टाइम लाने का मुझे मौका मिल जाता है 10 से 12 बजे तक, मंडे टू फ्राइडे। अरे मैं यानी काशिका आ चुकी हूँ स्टूडियोज़ में। 12 बजे तक हम दोनों का साथ बना रहेगा और आपस में हम बातचीत करते रहेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद हमारे एक्सपर्ट अड्डा में आ जाएंगे। आज क्योंकि हम्पवार है तो मैंने सोचा क्यों नहीं नितेश हीरा जी फ्रॉम अशोर वन से कुछ बात करें। कोई सवाल है तो मुझे ज़रूर बताइए, 5599 पे आप ज़रूर टेक्स्ट करिए।
3: बचाओ क्या,

0: एक्सपर्ट्स अड्डा।
1: एक्सपर्ट अड्डा में आपका साथ जरूर निभाते हैं नितेश हीरा जी, एंड ही इज वेरी मच ऑनलाइन विद मी। और मेरा सवाल भी तड़कता भड़कता सा एकदम तैयार हो चुका है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू नितेश हीरा जी, हाउ आर यू?
2: वेरी गुड कशिका जी, एक्सीलेंट। आई लुक फॉरवर्ड टू योर कॉल एवरी अदर वीकेंड, सो आई एम वेरी गुड।
1: ओह थैंक यू सो मच। आई थिंक हमें हर हफ्ते बात करनी चाहिए, इसका मतलब तो ये होता है। ओके, मेरे पास सवाल आया है दैट कैन यू प्लीज आस्क नितेश हीरा जी, कैन आई गेट लाइफ इंश्योरेंस इफ आई हैव अ टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज और एनी मेजर इलनेस लाइक स्ट्रोक, हार्ट कंडीशंस इन द पास्ट?
2: राइट, ओके। सो देखिए, लाइफ इंश्योरेंस it does depends on all the health conditions that have happened in the past. However, with diabetes, how well the diabetes is managed, that is very important. Heart condition, it makes it harder to get any health insurance or trauma insurance when these conditions have happened. However, at Assure One, we do work with a whole lot of variety of providers. When I say providers, means insurance companies. जिनमें से एक दो इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो गारंटीड एक्सेप्टेंस देती हैं। सो आपके लिसनर जो सुन रहे हैं, अगर उनकी मान लीजिए प्रीवियसली इंश्योरेंस डिक्लाइन कर दी गई है बिकॉज ऑफ डायबिटीज, हार्ट कंडीशन, कोलेस्ट्रॉल एटसेट्रा, बिकॉज उनका कंडीशन बहुत ज्यादा अक्यूट था, उस केस में गारंटीड एक्सेप्टेंस का मतलब है कुछ इंश्योरेंस हैं जो कि उनको विदाउट एनी मेडिकल क्वेश्चंस दे विल प्रोवाइड कवर। हाउ दैट वर्क्स इज दे already will inbuilt extra cost in their premium. Means, वो आपको ये बोल रहे हैं कि हम आपको कवर करेंगे लेकिन हाँ एक्स्ट्रा कॉस्ट पे है। बट देर आर सम क्राइटेरिया, सम टीज एंड सीज ऑफ कोर्स, ये सबके लिए नहीं होता लागू। सो वो समझने के लिए अगर कोई लिसनर सुन रहा है जिनको इंश्योरेंस नहीं मिली है, डायबिटीज, हार्ट अटैक, यू नो प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एनी सीरियस कंडीशन एंड दे आर लुकिंग ओनली फॉर लाइफ कवर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रॉमा कवर और हेल्थ प्रोडक्ट्स, but purely life cover, yes, we have the solution for that. So to answer your question, yes, we can get cover. Agar aapko cover nahi mil raha, no karaye sab insurers ne, we can try and get your life insurance. But again, T's and C's, obviously.
1: Yeah. And I think this has really answered the question very well. और जितने भी लोग अगर चाहते हैं नितेश हीरा जी से बात करना है, स्पेशली द पर्सन हु हैज जस्ट टेक्स्टेड अस, आप कॉल कर सकते हैं नितेश हीरा जी को ऑन द हिज टोल फ्री नंबर 0800 77 हीरा, 0800 77 HIRA हीरा। और assurevan.co.nz की वेबसाइट पर भी जाकर आप अपॉइंटमेंट बना सकते हैं फॉर अ फ्री कंसल्टेशन, वी कैन से
2: Absolutely, it's all free. So just to let the listeners know, हम लोग कोई फीस कभी भी अपने किसी भी क्लाइंट से ना सर्विस के ऑनबोर्डिंग पे चार्ज करते हैं, ना ही फ्यूचर में कभी भी चार्ज करते हैं, बिकॉज इंश्योरेंस कंपनीज पे अस फीस फॉर मैनेजिंग देयर पॉलिसी। सो जस्ट फॉर द क्लाइंट्स, सो दैट दे हैव पीस ऑफ माइंड, इट्स ऑल ऑब्लिगेशन फ्री, नो कॉस्ट अटैच, दे कैन टेक ऑल द इन्फॉर्मेशन, गो थिंक, discuss with their families, and then if they want to proceed, they can always reach out to us for help.
1: Wow, fantastic. So 0800 77 HIRA is the magic number. Thank you so much, Nitesh ji. Agle next week ke baad, next week main aapse phir baat hogi. Thank you so much.
2: Thank you, Kashika ji. Always lovely talking to you. Thank you.
1: Have a great day. Bye. Likewise. Bye.
2: Bye.
0: My time with Kashika.
3: Aajkal chal raha hai bahut news mein. Aap hi to nahi.
1: ऑफिस शाउट आउट का वक्त आ रहा है, 5599 पे आप टेक्स्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी ऐसे एरिया से सुन रहे हैं और आपको लगता है आपको मेरी बातें अच्छी लग रही हैं।
4: सनातन वर्ल्ड कप स्पोर्ट्स इन कल्चरल इनकॉर्पोरेटेड ब्रिंग्स यू वैलेंटाइन्स बफे रेस्टोरेंट, लाल ट्रांसपोर्ट इन राम्स ग्रुप ऑफ कंपनीज, 11th सनातन वर्ल्ड कप 2026 होस्टेड बाय एनजेड सनातन स्पोर्ट्स इन कल्चरल इनकॉर्पोरेटेड फ्रॉम सितंबर 30th, ओकलैंड कम्स अलाइव विद सोका, नेटबॉल, वॉलीबॉल एंड गोल्फ टीम्स फ्रॉम न्यूजीलैंड, फिजी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड अमेरिका कॉम्पीटिंग अक्रॉस बिल मैकिनली पार्क एंड लोकल वेन्यूज, यूनिटी थ्रू स्पोर्ट कल्चर एंड कम्युनिटी। कॉन्टेक्ट Tunman Chairperson Jiten Lal on 021-452-503. Stay tuned to Hub, your official media partner.
5: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे।
6: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
5: सोना संसार पापा टोटो, जहां था था वहाँ अभी भी है। शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स पापा टोयटोय।
4: सोना संसार 138 ग्रेट साउथ रोड पापा टोयटोय। सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर गोल्ड। वेलकम टू कबाब्स किचन। आई एम शेफ एलेक्स और ये है मेरी गेस्ट सेरा।
7: बनाते हैं कबाब को स्पेशल शेफ एलेक्स।
4: परफेक्ट ब्लेंड ऑफ स्पाइसेस, टेंडर मीट और फ्रेश वेजिटेबल्स। हर कबाब बनता है विद लव एंड पैशन।
7: वाओ, दीस कबाब्स आर अमेजिंग। स्पाइसेस एकदम राइट एंड मीट इज सो ज्यूसी।
4: ये है अम्मास कबाब्स प्रॉमिस, डिलीवरिंग हैप्पीनेस बाइट बाय बाइट। अम्मास फूड एट योर नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी और हलाल बुचरी स्टोर्स।
7: 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव।
8: It's normal to feel low sometimes. Just like how the weather changes, so can our moods. Pay attention to your feelings. Reach in and check how you're doing. Reach out and talk to someone you trust. If you need to talk with a trusted professional, Asian Family Services is here to support. Call the Asian Helpline on 0800-862-342 for free, confidential support. If you or someone you know is in immediate danger, please call 111 or Emergency Services.
9: Coffee? The usual?
10: How about the unusual?
11: Can't wait for coffee? Then don't! Turn into Wild Bean Cafe at BP and try our new barista-made hojicha latte. Something a bit different at BP.
12: Get the bold new flavors of Subway rice bowls, like chicken teriyaki or green goddess falafel, packed with protein, fiber, warm brown rice and your choice of salads from just $11. Eat fresh with new Subway rice bowls.
13: Hey, City Rail Link's now open, and our first trip's going to the game.
14: Now I can go east-west on just one train. So my first trip seeing an old friend in Swanson.
15: Our first train ride. We're surprising the kids with Te Waihoretu Station and a movie.
16: CRL first trip, coffee with friends, maybe K Road, maybe Pukekohe.
17: Oh, it'll be our millionth time going to the art gallery, but our first time taking the train.
18: Those all sound great. The City Rail Link's now open, so all aboard with Auckland Transport.
0: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
4: Office Shoutout.
1: So, Office Shoutout में आज मेरे पास मेरे दोस्त Ash from Wellington, आपका टेक्स्ट आ चुका है. What a beautiful one. Very happy and take care करने वाली. अच्छा अच्छा खाना याद करवा के मुंह में पानी लाने वाली. Healthy tips देने वाली. मगी वेदर में आपका बहुत बहुत स्वागत है काशिका जी. Ash from Wellington, क्या आपका वहाँ पे वेदर मगी मगी हो रहा है? वैसे यहाँ पे भी थोड़ा मगी मगी हो रहा है वेदर, मतलब बादल नज़र आ रहे हैं और आज का तो मौसम भी इतना ठंडा होने वाला है ना कि देख के ही डर लगता है कि ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है. वैसे थैंक यू सो मच, आप इतने प्यार से जब ये मैसेज इतने सोच समझ के आप बारीकी के साथ लिखते हैं ना, इट टचेज माई हार्ट. थैंक यू वंस अगेन फॉर दिस. And now I would like to call out for all the Uber drivers. अगर आप इस समय मुझे सुन रहे हैं, if you already have a claim with Not Your Fault Services, it is moving forward as a claim manager will be in touch with you. And if you have not applied as yet, FOR is now open. यानी कि आपको बता देते हैं that आप नोट कीजिए Not Your Fault Services की फ़ोन की जो टीम है currently बहुत बिजी चल रही है, so do not call them. Instead, apply कीजिए online on nyfservices.com. Okay? So अभी intake 4 जो है, it is now open if you have not applied as yet. लेकिन हाँ, अगर आपको कोई फ़ोन टीम आपको पता है कि बिजी है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, इन्हें फ़ोन मत करिए. तो आप nyfservices.com के ज़रिए जाकर आप register कर सकते हैं अपना claim.
0: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: बॉलीवुड
1: वर्ल्ड्स बेस्ट हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
2: वैसे हमारी कोई ब्रांच है तो नहीं, लेकिन एक बात बता देती हूँ आपको, हम बहुत कुछ आपके लिए ऐसा करते हैं जिससे ज़रिए आपको बहुत सारी अपडेट्स मिल जाती हैं। साउथ आइलैंड के मोटर्स से कहा जा रहा है कि यू हैव टू टेक एक्सट्रीम केयर, क्योंकि एक चिली साउथ वेस्ट की जो हवा है वो अब कंट्री में आ रही है, जहाँ टेम्परेचर्स ड्रॉप होने वाली है, जहाँ पे एल्पाइंस में स्नो फिर से पड़ने वाली है। एंड दिस इज़ क्वाइट एन अनसेटल्ड स्काई राइट नाउ, जहाँ पे एक फनल क्लाउड जो है इट हैज़ बीन सीन टूवर्ड्स सदर्न तारानाकी। अब न्यूजीलैंड ट्रांसपोर्ट एजेंसी ने भी बताया है कि स्टेट हाईवे 73 में क्राइस्टचर्च से वेस्ट कोस्ट के बीच में आज बंद कर दिया गया वो एरिया, क्योंकि वहाँ पर स्नो पड़ चुकी थी। सो बी वेरी केयरफुल।

ईट बेटर लिव बेटर. एक बात बता दूं, दृश्यम फिल्म एक ऐसी फिल्म है जिसको हम सब देखने के लिए बेकरार हैं. एंड 2nd अक्टूबर के दिन ये फिल्म जो है रिलीज होने वाली है. अब इसमें ढेर सारे इमोशन सबके जुड़े हुए हैं. इसका पहला गाना जो है उसका मीनिंग है रिवेंज या वेंजेंस. और इन गोवा कुछ पोर्चुगीज में किस तरह से विजय इज़ नॉट अलोन और पूरी आइज जो मूव करी हैं. नाउ मेकर्स ने अनवेल किया है एक और सोलफुल ट्रैक जिसका नाम है मुस्कुरा दो, जहां ऑडियंस को वो सलगांवकर के इमोशनल वर्ल्ड में लेकर जाने वाला है. इस गाने को गाया है लेजेंडरी लकी अली जी ने और इसको कैप्चर किया है जहां पर इसमें फिल्म में इस पर्टिकुलर सॉन्ग में द एसेंस ऑफ द फैमिली, किस तरह से फैमिली एक दूसरे के साथ खड़ी होती है. ये सॉन्ग है लकी अली का एक ब्रिंग बैक. काफ़ी दिनों के बाद यू विल बी हियरिंग हिम यू नो सिंग फॉर एनी काइंड ऑफ अ बॉलीवुड सॉन्ग, बहुत दिनों के बाद. सो ये गाना हार्टफेल्ट लिरिक्स इसमें किसके होंगे इमेजिन करिए, मनोज मुंतशिर के, और कंपोज किसने किया है, रोचक कोहली ने. तो वी विल वेट टुगेदर टू वॉच एंड हियर द सॉन्ग आज ये फिल्म के गाना रिलीज करने वाले हैं.

0: Supermarket Newlyn, Namaste New Zealand Immigration Services, Indelible Homes, Gem Entertainment, TradeWorks Group, Classic Automotive Solutions Limited, Malolo Rentals and Tours, or IIIE Science. Jankariyon ke liye hum sunte rahein.
1: There's a new kind of goodness in the pet aisle. Nature's Gift. Discover the new Nature's Gift grain-free range, now in convenient pouches and delicious kibble. Made with real meat, real vegetables and grain-free recipes, it's a natural choice for everyday feeding. So, looking for nature's goodness? You'll love Nature's Gift. All new look, same great nutrition in supermarkets now. The delicious dog food packed with real goodness. Give them the gift of Nature's Gift grain-free. Discover the range in-store today.
2: चूज कीजिए कैसे आप सेव करते हैं विंगर मोटर्स में 3.9% फाइनेंस या $2,000 कैशबैक सिलेक्टेड न्यू ओमुडा या जेकू मॉडल्स पर सुपर हाइब्रिड सिस्टम से मिलते हैं इलेक्ट्रिक डेली ट्रिप्स और पेट्रोल के कॉन्फिडेंस के साथ लॉन्गर जर्नीज अप टू 1,100 किलोमीटर कंबाइंड रेंज प्लस एंजॉय 7 ईयर अनलिमिटेड किलोमीटर व्हीकल वारंटी मोर वेज टू सेव एट विंगर मोटर्स ईस्ट ऑकलैंड नॉर्थ शोर एंड पुकेकुई और winger.co.nz ऑन नाउ टिल 30th सितंबर क्रेडिट क्राइटेरिया फीस टीज एंड सीज अप्लाई.
3: The shelves are filling up at Bunnings with brand new Bunnings Rewards. Whether you're just popping in or stocking up for a project, a trip to Bunnings can make you feel more rewarded. Every tap, tape, bolt, barbecue, shrub, drill, door, paint or mop can all earn you Bunnings Rewards. It's easy to keep track of. Simply download the Bunnings app, scan your Bunnings card and see your points stack. T's and C's and exclusion supply. Join Bunnings Rewards today. Bunnings Warehouse.
4: MediaWorks complaints. How can I help?
5: Yeah. Hello.
4: Hi.
5: Hi. Yeah. Can you guys take a radio jingle out of my brain?
4: Oh, you mean like a jingle extraction? It's our job to put advertising in there.
5: Well, okay. Well, what about something like a brain surgeon?
4: They'll probably just explain how repeat hearing puts things deep in your emotional memory, and I really don't think it's necessary. But yes, if you must, I do have the name of one.
5: Great. Sing it to me.
6: Advertise with MediaWorks.
7: New Zealand listens to us.
8: In business, relationships matter, respect matters, and so does keeping your word. So what do you do when customers don't pay your invoices? At Kedar Limited, they understand that in our Indian community, business is built on trust, respect, and keeping your word. With 20 years of debt recovery experience, they can help recover your B2B debts. Want your old invoices paid? Call Kedar Limited on 022-090-9845. Pehle baat, phir solution aur payment bhi. Visit kaydaar.co.nz.
9: Hey, City Rail Link's now open, and our first trip's going to the game.
10: Now I can go east-west on just one train. So my first trip seeing an old friend in Swanson.
11: Our first train ride. We're surprising the kids with Te Waihoretu Station and a movie.
12: See our first trip? Coffee with friends, maybe K Road, maybe Pukekohe.
13: Oh, it'll be our millionth time going to the art gallery, but our first time taking the train.
14: Those all sound great. The City Rail Link's now open, so all aboard with Auckland Transport.
15: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. Dream Diary.
16: ड्रीम डायरी में हम बात कर रहे थे अबाउट बेबीज़, न्यूबॉर्न बेबीज़, और आपने कहा कि यू डोंट ड्रीम अबाउट वन बच्चा, बट यू ड्रीम अबाउट लॉट ऑफ बच्चा, मल्टीपल बेबीज़. अब इस ये एक साइन है जहाँ पे इट्स अ सेंस ऑफ बीइंग ओवरवेल्म्ड, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मल्टीपल क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स आर इन योर लाइफ अबाउट टू टच इट, यू कैन से दैट, या आ चुके हैं और आपको लगता है कि ओ माई गॉड ये क्या फीलिंग है. सो ये फीलिंग एक्चुअली वेरी ओवरवेल्म्ड, एंड आप पहले तो यू नो एक बच्चे को जब हैंडल करते हैं ना, कहते हैं तो ठीक है लगता है, लेकिन जब रियल लाइफ में अगर बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे डायरेक्शंस आपको मिलने लग जाते हैं, एक डिमांड आपकी बढ़ जाती है, और ऐसे में उस डिमांड को आपको मल्टीपल वेज में किस तरह से बिना अपने माइंड को स्ट्रेस किए हुए, वो एक डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, या यू नो अगर ट्विंस देखे हैं, मल्टीपल बच्चे देखे हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग चॉइसेस हैं उसमें, तो ये आपको जज करना पड़ेगा, ये सही है, ये गलत है कि नहीं है. और ये भी हो सकता है कि आपके फैमिली में कोई रिफ्लेक्ट कर रहा है, कोई डीप सबकॉन्शियस माइंड में, एंड दे वॉन्ट अ बेबी टू कम वेरी सून इन योर लाइफ, हो सकता है टू बिल्ड अ होम. सो आप मतलब कहते हैं ना फैमिली पूरी करने के लिए, हो सकता है ये भी हो. All right. And so many possibilities can be there.
15: Dil se dil tak. On
8: unlock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800 4NZPMI.

0: to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
1: तो जब हम बात कर रहे हैं कि कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिस नहीं करनी चाहिए, तो परसों कुछ खास होने वाला है। हम कीर्तन संग्रह की रिकॉर्डिंग इसी फ्राइडे के दिन वैदिक सेंटर में 32 ग्लासगो एवेन्यू पापाटोई में शाम 7 बजे से होने वाला है। आप हमारी टीम के साथ जुड़ जाइए और एंट्री बिल्कुल फ्री है सबके लिए। वहाँ रिफ्रेशमेंट्स होंगे, कावा होंगे जो आप खरीद सकते हैं। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली हैं जहाँ पर आपको गिव अवे प्राइजेस भी मिल सकते हैं, तो पहुँचिएगा ज़रूर।

0: चंद्रकांता राजू के पति, वो तो अलेवू हाई स्कूल तथा संगम कॉलेज नांदी के भूतपूर्व अध्यापक चंगल राजू की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार आज 1 बजे ऑकलैंड इंडियन फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस में किया जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप 02730070034 पर संपर्क करें।
1: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे, शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: मौसम की तरफ अगर हम देखें तो भाई किस तरह से मौसम जो है बदलता चला जा रहा है. वैसे दी हाइज ऑफ 16 ओवर आई टेम्परेचर 4 आज का फोरकास्ट बताया जा रहा है. कुछ आवर्स एक्सपेक्टेड है, सदलीज बढ़ती चली जाएंगी. 619 पर सनसेट है. इट फील्स लाइक 14 डिग्रीज राइट नाउ.
0: माय टाइम विद कशिका ब्रॉट टू यू बाय कशिश फूड्स. ईट बेटर लिव बेटर.

0: नमस्कार एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू पीपल. हाउ आर यू? स्टूडियो की घड़ी में इस समय 11:04 हो रहे हैं. आपका बर्थडे, आपकी एनिवर्सरी है, तो आप वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू. क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो भाई? एक तो याद रखो, 6-word story तैयार कर देना, और 6-word story हैज टू बी अराउंड अ टेलीफोन और अ मोबाइल. जो भी कुछ है, आपकी 6 words की कहानी क्या हो सकती है वो. इसके साथ साथ कुछ रिसाइकल भी करने वाले हैं चीज़ें. और एक इम्पॉर्टेंट बात है, मैं जहाँ कहीं पे भी जाती हूँ ना, एक चीज़ जो है, एक यू नो चीज़ जो हमेशा हम लोग कुछ सिम्टम्स जो होते हैं हेल्थ के, और यू नो हम कोशिश करते हैं उन्हें गूगल करने के लिए, तो उसके बारे में कुछ बातचीत करेंगे जस्ट इन अ बिट. ज़रा सा तबीयत ख़राब होने लगती है, सबसे पहले गूगल के पास जाते हैं, भाई बताओ गूगल राजा, ये मुझे ऐसा हो रहा है, इसमें क्या हो सकता है. ठीक है, चलो उसकी मिथ्स के बारे में कुछ हम बातें करेंगे इन अ बिट. लेकिन कशिश फूड्स को बिग थैंक यू टू यू, क्योंकि आपके सौजन्य से मेरा और आपका ये मौका जो होता है ना, बातचीत करने का, ज्ञान बांटने का, एक दूसरे की दुख में साथ देने का, सुख में साथ देने का, ये मौका कशिश फूड्स के सौजन्य से आ जाता है मंडे टू फ्राइडे 10 से 12 के दरमियान. मैं काशिका, आपकी रिमाइंडर क्लॉक हम्प बार में आप सभी का स्वागत करना चाहती हूँ. चलिए गाना बजा रही हूँ.
1: जाओ क्या

0: ईट बेटर लिव बेटर. एंड जैसे मैं आपको बता रही थी कि कभी कभी एक हेडेक जो लगता है ना लोगों को, ओ माय गॉड ये कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्रेन ट्यूमर है, अरे फीवर हुआ है तो खाली डेंगू तो नहीं हो गया है, टायर्डनेस होगी कि विटामिन की डिफिशेंसी तो नहीं हुई है. अब इस तरह की चीज़ें जो होती हैं इंटरनेट पे, आपके हेल्थ की अवेयरनेस तो ज़रूर होती है, बट एक सेल्फ डायग्नोसिस जो होता है ना वो इंसान को बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है. Perhaps एक बहुत बड़ी मिथ जो डॉक्टर्स जो इनकाउंटर करते हैं ना, फीवर है, डिजीनेस है, फटीग है, पेट में दर्द हो रहा है, हेडेक हो रहा है, ऐसी कुछ कंडीशंस को आप इकट्ठा कर देते हैं. मानसून के टाइम्स पर फीवर आ जाता है तो लगता है अरे मलेरिया हो गया, फ्लू हो गया, डेंगू हो गया, इस तरह के इन्फेक्शन. ये डिफरेंट पीसेस जो आप इकट्ठे करके अपनी मेडिकल हिस्ट्री खुद बना लेते हैं ना, दैट इज़ वेरी बैड. एक सर्च इंजन पॉसिबली पेशेंट को एग्जामिन नहीं कर सकता, लेकिन ऑफर कर सकता है कुछ पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं, और उससे लोगों की हाइपरटेंशन बढ़नी शुरू हो जाती है. क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है? और कभी कभी सेल्फ डायग्नोस करते करते अपने आप को आप कुछ गलत मेडिसिन भी ले लेते हैं, तो कभी आपको लगता है ये फ्लू व्लू ये सब कुछ है, मेरे घर पर ना एंटीबायोटिक पड़ी है, मैं इसका इस्तेमाल कर लेती हूँ. डू नॉट डू दैट. This is antibiotics act against the bacteria, not virus. और ये illness कुछ शायद common cold या कुछ flu हो रहा होता है, ये एक different तरीका होता है जहाँ antibiotic को कभी कुछ खाना होता है. एक और shortcut जो होता है हम लोगों का, कभी कभी एक short term के लिए हम medicine ले लेते हैं जो एक long term की medicine लिखी होती है. यानी कि अगर वो दिन में 5 बार बोला है खाओ, तो आप दिन में उसको कट के 3 टाइम कर देते हो या दिन में 2 टाइम कर देते हो. ये हेल्थ एडवाइस लेना इम्पॉर्टेंट होता है. सो परहैप्स द मोस्ट ओवरलुक्ड मिथ इज़ दैट हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हैं आप खुद अनाउंस कर देते हैं, मुझे लगता है मुझे ये हो गया होगा. डोंट डू दैट. अप्रोप्रिएट आपको रूटीन हेल्थ चेकअप ज़रूर कराना है, अपने जीपी के पास ज़रूर जाना है. इंटरनेट कैन बी यूजफुल एट अ स्टार्टिंग पॉइंट ओनली, इट कैन नॉट बी योर फाइनल रिकमेंडेशन, रिमेंबर दैट. और ये खास तौर पे ये मेडिकल गाइडेंस जो है आपको, जो ख़ास तौर पे एक मैं कह सकती हूँ एक्सपर्ट होता है वही दे सकता है. चलो, मैंने ये मिथ्स कोशिश करी है आपके माइंड में से हटाने के लिए, बट अभी 6 वर्ड स्टोरी कोई अच्छी सी प्यारी सी बता डालो, चलेगा? 5599 पे मुझे टेक्स्ट करो.
1: The Drive Show with Sandy and Rusby.
2: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हो.
3: ये गलत बोल दिया यार.
2: और पहनता भी नहीं उसको.
3: बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूँ मैं अभी, बेचने के लिए कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
2: इंटरेस्ट
4: ब्रांड हो गया अभी वो.
3: अभी ब्रांड हो गया ना.
2: रुस्बे के बाल लगे उस.
1: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe. Massive home show deals available in store now. Only at Beds R Us Manukau and Pukekohe and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
5: What if your next holiday wasn't just a holiday, but the adventure everyone's still talking about? This is to Bali and Bangkok. One epic trip. 5-star all-inclusive stays. Breakfast, lunch, dinner sorted. Return flights from Auckland to Bali to Bangkok and back. Sightseeing, activities, even dinner cruises in both cities all included. Come, explore with Sun Tours and a whole group of fellow travelers. Call 0800 Sun Tours for affordable prices. Spaces are limited. Your story starts here.
6: The kids depend on us for everything. Meals, rides, band-aids, bedtime stories. But who do we depend on?
7: Hi, I'm Nitesh Hira from Assure One. School holidays remind us how much our families rely on us. My job is making sure reliance never becomes a risk. Helping you understand your options so your family is covered whatever happens. Call Assure One on 0800-77-HIRA or visit assureone.co.nz. North and Vale Advisory Limited. Trading as Assure One is a licensed financial advice provider.
8: Get the bold new flavors of Subway rice bowls, like chicken teriyaki or green goddess falafel, packed with protein, fiber, warm brown rice and your choice of salads from just $11. Eat fresh with new Subway rice bowls.
9: It's normal to feel low sometimes. Just like how the weather changes, so can our moods. Pay attention to your feelings. Reach in and check how you're doing. Reach out and talk to someone you trust. If you need to talk with a trusted professional, Asian Family Services is here to support. Call the Asian Helpline on 0800-862-342 for free, confidential support. If you or someone you know is in immediate danger, please call 111 or emergency services.
10: Does your floor need a makeover? Adore your floor for less with Flooring Extra's Affordable Floor Makeover Sale. For a limited time, you can save on their best-selling range of carpet and hard flooring, including 15% off all Quickstep laminate and timber. Plus, enjoy 36 months interest-free with QCard. To get your flooring makeover underway, visit your locally owned Flooring Extra showroom today. TC's fees and credit criteria apply.
11: Flooring Extra. Adore your floor.
12: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट squirrel.co.in से।
13: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. Six word story.
0: मैं सिक्स वर्ड स्टोरी पर पहुंच तो गई हूं, लेकिन मैं चाहती हूं कि आपको भी कुछ अगर स्टोरी पता हो तो बहुत अच्छा है. एक स्टोरी आई है बहुत अच्छी आपकी, एंड ये मैं कह सकती हूं नीरव आपने भेजी है. अब ये वो नीरव नहीं है जो अभी थोड़ी देर पहले ब्रेकफास्ट में आए थे. इन्होंने लिखा, टू स्क्रीन्स डिम्ड देयर आइज मेट. टू स्क्रीन्स डिम्ड देयर आइज मेट. क्या बात है, रोमांटिक एकदम परफेक्ट, बहुत बहुत अच्छा है. अच्छा, एक चीज़ जो है मुझे आपके साथ शेयर करनी है, बहुत ही बढ़िया चीज़ होने वाली है. द बिगेस्ट दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो. अगर आप एक हाई रिटर्न प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट जीरो टैक्स के साथ ढूंढ रहे हैं, सो इस बिगेस्ट दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो को आप बिल्कुल मत भूलिएगा, जो 26 एंड 27 को 10 AM to 8 PM होने वाला है एट द JW Marriott होटल इन द सिटी. और आपको ये भी बताना चाहती हूँ, बहुत सारे डेवलपर्स प्रिंसिपल्स जो है उनसे आप मिल सकते हैं, एक्सक्लूसिव डील्स ले सकते हैं, इंक्लूडिंग 0% अप फ्रंट DLD फीस क्वालिफाइंग यूनिट्स के ऊपर, डिफर्ड पेमेंट प्लान, और जो प्रोजेक्ट रिटर्न है अप टू 20% ROI. आप अगर अपना पोर्टफोलियो एक्सपैंड करना चाहते हैं, बुक कीजिए एक 1-on-1 कंसल्टेशन विद buildcaps.com या ड्रॉप इन हो जाइए एट द मैरियट होटल, और वहाँ पर आपके साथ मैरियट होटल में हमारी हम की टीम भी सुबह 10 बजे से आपको मिलने वाली है. तो डेफिनेटली कोशिश कीजिएगा आप वहाँ पहुँचने की, मैं तो वहाँ हूँ ही हूँ.
13: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

वैसे एक बात तो है कि बॉलीवुड के बिगेस्ट हिट्स तो आप सुनते ही चले जाते हैं, लेकिन कुछ प्रॉमिसेस ऐसे होते हैं जो आने वाली सरकार जो है वो बात करना चाहती है। तो इस थर्सडे के दिन बताएं आपको क्या होने वाला है न्यूजीलैंड स्पीक्स में, इलेक्शन स्पेशल में, ड्राइव शो में आपके लिए क्वेश्चन जो है वो आ रहा है। दरअसल ये कह सकते हैं नेशनल पार्टी कैंपेन मैनेजर नवतेज रंधावा जो हैं ये हमारे साथ साथ डिस्कस करने वाले हैं पॉलिसीज, प्रायोरिटीज एंड हिज विजन फॉर न्यूजीलैंड। कोई क्वेश्चन है 5599 पे आप जरूर टेक्स्ट कर सकते हैं, ड्राइव इज द कीवर्ड। और ये थर्सडे को शाम 5 बजे होने वाला है। दिस इलेक्शन ईयर इज गोइंग टू कट थ्रू द पॉलिटिकल नॉइज और स्ट्रेट आंसर्स आपको डेफिनेटली मिल सकते हैं।

0: Kashika.
1: Wow.
2: How?
1: Adbhut.
3: वैसे वेद प्रचार वीक जो है ये 28th ऑफ सितंबर से शुरू हो रहा है, 4 अक्टूबर तक रहेगा, 32 ग्लासगो एवेन्यू पापा टोटो 6:20 पर। और 30th एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस जो हैं ये आर्य समाज न्यूजीलैंड जो आपके लिए लेकर आ रहे हैं, श्री राम मंदिर जो है, श्री राम कथा जो है पूज्य राजन जी के साथ 30 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर तक, इसको भी आपके लिए करने वाले हैं। भाई बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमें लगता है कि कभी कभी हमें अपडेट्स मिलनी ही चाहिए। और एक चीज़ और है, एक स्कैम, अब नई रिसर्च के जरिए पता चला है कि काफ़ी कीवीज जो है काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि दे कैन स्पॉट एन AI जनरेटेड फेक पोस्ट या फेक कॉल या समथिंग, और उनका ऑनलाइन बिहेवियर भी आपको पता चल जाता है। साइबर सिक्योरिटी कंपनी ने बताया कि 66% जो न्यूजीलैंड के अडल्ट हैं दे बिलीव दैट दे कैन रिकोगनाइज AI फेक, बट 40% एडमिट करते हैं कि शायद वो कैरिड अवे भी हो जाते हैं। एक रिपोर्ट आई जिसके जरिए जिसे कहते हैं AI कॉन्फिडेंस ट्रैप, इट इज़ ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द क्लासिक रेड फ्लैग्स जो आपको एक स्कैम के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। और AI के जो कुछ पोटेंशियल जेनरेटेड फेक्स होते हैं उसमें आप ट्रैप हो जाते हैं। बट देन वी गो एज पर अ कन्वीनियंस ऑल्सो, कभी कभी हम AI के टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, कुछ चीज़ें ऐसे करते हैं, जैसे अभी मैंने एक AI टूल को इस्तेमाल करके अपनी एक फ़ोटो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे डाली है। आप बताइए आपको वो फ़ोटो, मतलब उसमें मैंने क्या किया, मेरी फ़ोटो ओरिजिनल थी बट उसमें मैंने एक अपनी सेइंग जो होती है आई एम वेरी लव दोज काइंड ऑफ सोल, यू नो, जैसे इनर सोल के लिए कुछ मोटिवेशनल बातें करने के लिए, तो मैंने एक उस पर स्टोरी में एक AI बनाया है एक इंस्टा पे या फेसबुक पे। आइए वहाँ कमेंट कीजिए और बताइए कि क्या आपको लगता है कि वो जेन्युइनली मैंने टाइप करा था या AI, ऑफ कोर्स आई डिड यूज़, आई एम बीइंग ऑनेस्ट, आई डिड यूज़ इट। बट इन्होंने ये बताया है कि कुछ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है, ऑफ कोर्स वी डू नॉट गिव आउट पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है हम डेफिनेटली नहीं देते हैं। सो द आइडिया इज़ दैट इफ़ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट कि आपको कौन हैंडल कर रहा है और आपको लगता है कि दूसरे साइड पर कौन है, तो डू नॉट डिस्क्लोज थिंग्स, यू आर नॉट ऑब्लिगेटेड टू देम बिकॉज इट्स ऑल इंटरनेट रिलेटेड जहाँ आपसे चैट की जा रही है। मेक श्योर कि ये हैक जो है, लोग हैकर्स होते हैं ना, वो इस तरह से आपको पकड़ लेते हैं, आपके आपसे बातें निकलवा लेते हैं।
4: वो दिन जब मोहब्बत खत्म में होती थी,
5: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना हो,
4: और गानों में जैसे

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: 800 रचना इधर उधर जाने से बचना कॉल करो 0800 रचना दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स इन्वेस्टर्स बिजनेस लोन कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन
1: तो चलिए बस इसी के साथ साथ कीजिए स्वीकार काशिका का नमस्कार बट बिफोर आई डू माय नमस्कार आई हैव टू टेल यू समथिंग एल्स जहाँ पे आप सोच रहे हैं हमारी फैमिलीज को लगता है कि यू नो कोई विल है हमारे पास या नहीं है तो अनफिल्टर्ड मिस एंडी और रुजबे ने तान्या पिंटू सीनियर ट्रस्टी एट पब्लिक ट्रस्ट इनसे बातचीत की कि अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आपकी लाइफ के लिए आपकी फैमिली के लिए लाइफ ईजी हो जाए किस तरह से इफ यू आर नो लॉन्गर देयर हाउ कैन इट हैपन टेक्स्ट कीजिए ड्राइव ऑन 5599 पूरा एपिसोड जानने के लिए कि उन्होंने किस तरह से इस्टेट प्लानिंग कॉन्वर्सेशंस के जहाँ पे काफ़ी फैमिलीज में फ्यूड्स होने लग जाते हैं अननेसेसरी स्ट्रेस होने लग जाती है दूसरी तरफ ब्रेकफास्ट का कैचअप जो है अगर आप सुनना चाहते हैं तो What success actually means to you? Are you fully settled? इसके बारे में भी बातचीत की उन्होंने बी एफ लिख के भेजा उन्हें 5599 पे तो चलिए अभी के लिए मैं यहाँ से चलती हूँ कल सुबह 10 बजे आपसे फिर मुलाकात करती हूँ बट जाने से पहले कीजिए स्वीकार कशिका का नमस्कार आज का दिन कहलाता है बुधवार या हम्पवार जिसका नाम मैंने निकाला है और मुलाकात होगी दिन कहलाएगा बृहस्पतिवार गुरुवार या वीरवार अभी के लिए चलती हूँ सुबह 10 बजे आपसे फिर मुलाकात करती हूँ दिस इज काशिका साइनिंग ऑफ हैव अ ग्रेट ग्रेट डे अहेड स्टे वार्म स्टे हेल्थी और कोसा कोसा पानी पीते रहिए

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
3: That is very that is a very acceleration.
2: That's a very acceleration. Yeah.
3: Amazing acceleration.
2: This is my fancy English. That's a very.
3: अरे होता है, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.